ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 सितंबर सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को है। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता की में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV कैप डाओ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दो

0: या तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फीडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन इरेगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिसे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी 7 मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। हार केवल तब होती है जब कोशिश करना हम छोड़ देते हैं। गिरकर फिर उठना ही असली जीत की शुरुआत है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

0: इधर भी ईश्वर उधर भी ईश्वर, अरे इधर भी ईश्वर उधर भी ईश्वर, जिधर भी देखो तिधर है ईश्वर।
1: ये कार्यक्रम वंदनवार की भक्ति रचनाएं थी। लीजिए अब सुनिए देशगान।

लीजिए प्रस्तुत है झरोखा। आपको सुनवाते हैं आज प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा के अंतर्गत। 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान में लंका कांड, आज भाग 321 प्रसारित होगा। सुबह 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं, आज भाग 9 प्रसारित होगा। कलाकार गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। सुबह 7 बजे सुनिएगा भूली बिसरे गीत और 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2 बजे त्रिवेणी का प्रसारण किया जाएगा, आलेख एवं स्वर सविता सिंह के, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनते हैं सुबह 8:30 पर और रात में 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा फिल्मकार फिरोज खान पर। आलेख एवं स्वर अशोक सोनावणे का है, प्रस्तुति रमेश गोखले की और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में संगीतकार संगीत संयोजक अप्पा बड़ावकर से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, प्रस्तुतकर्ता जुबीर खान। सुबह 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम, 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर सुनिएगा यादों की महफिल। सुरीला सफर दिन में 1 बजे, 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार, 2:30 पर सदा बहार नगमे। दोपहर 3 बजे सखी सहेली के अंतर्गत आप सुनेंगे समुद्र यात्राओं का रोचक संसार, कहानी पद्मश्री की उषा बारली पंडवानी लोक गायिका के बारे में बात, मुझे कुछ कहना है कब किससे रूठें, उपयोगी टिप्स फ्रिज में सामान कैसे रखें। मंजरी वर्मा और आरती श्रीवास्तव संवादक रहेंगी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। हेलो फरमाइश ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 4 बजे, यूनुस खान संवादक हैं, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। शाम 5 बजे सुनिएगा छाया गीत, 5:30

20 मिनट पर तराने नए पुराने कार्यक्रम। शाम 6 बजे हिंदी में समाचार आप सुनेंगे और 6:05 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम जारी रहेगा। 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा, 6:35 पर संध्या रंजन। शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए में आप टेलीविजन और फिल्म लेखक पुनर्वसु मालवीय से ममता सिंह की बातचीत सुनेंगे, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा प्रहसन टपकते सितारे, लेखन है सोमनाथ नागर का, निर्देशन कुमुद नागर का। 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या, 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 बजे छाया गीत सुनिएगा, आलेख एवं स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे से रंग तरंग का पुनः प्रसारण आप सुन पाएंगे। ये था झरोखा आज के कार्यक्रमों का। आप सुन रहे हैं विविध भारती। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे लंकाकांड में 321 भाग।

नल, नील, द्विध, सुग्रीव, अंगद, हनुमान तथा राम लक्ष्मण को खोजता ललकारता रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में आन उतरा है। उसके वाणों से वानर सेना की टुकड़ियां कट कट कर गिरने लगी हैं। मेघनाद का उद्घोष है कि आज वो भाई से द्रोह करने वाले विभीषण का वध अवश्य करेगा। क्रोध में कांपता धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींच वो कठिन से कठिनतम वाण छोड़ने लगता है। उन्हें देख ऐसा लगता है जैसे पंखों वाले सर्पों का समूह उड़ता चला जा रहा हो। मेघनाद के प्रहार से त्रस्त वानर और रीच जहां तहां भागने लगते हैं। ऐसा दृश्य आ उपस्थित होता है जैसे युद्ध भूमि में एक भी वानर या रीच जीवित नहीं बचेगा। चारों ओर मेघनाद का सिंह गर्जन सुनाई देने लगता है। ये देख हनुमान ने एक पर्वत खंड उठाकर मेघनाद पर दे मारा। पर्वत को अपनी ओर आता देख मेघनाद उछलकर आकाश में उड़ जाता है और हनुमान के बार बार ललकारने पर भी नीचे नहीं आता। वो श्री राम के ऊपर तरह तरह के अस्त्रों के साथ गालियों की बौछार करने लगता है। श्री राम उसके अस्त्रों को बड़ी सहजता से काट कर गिरा देते हैं। मेघनाद लज्जित होता है किंतु फिर माया रचाकर आसमान से अंगारों की वर्षा करने लगता है। साथ ही रक्त, पीप, हड्डियां तथा अन्य दुर्गंधमय पदार्थ बरसने लगते हैं। युद्ध भूमि में ऐसा अंधकार छा जाता है कि हाथों को हाथ नहीं सूझता। वानरों को भयभीत देख श्री राम एक ही वाण से इस माया दृश्य को छिन्न भिन्न कर देते हैं।

0: संगीत सरिता में आजकल आप प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला सुन रहे हैं, ख्याल और तराने की विशेषताएं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज प्रस्तुत कर रहे हैं इसकी नवी कड़ी।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। तराना एक रहस्य विद्या है जिसमें अनेक महत्वपूर्ण मंत्र की बीजाक्षरों का प्रयोग हुआ है। तराने पर यह मेरी अपनी ही खोज है। तराना हमारी शास्त्रीय संगीत की एक ऐसी प्राचीन गायकी है जिसमें रहस्यमय प्राच्य विद्याओं का सार छिपा हुआ है। जिस समय धर्म पर आपत्ति के बादल मंडरा रहे थे, मंत्रोच्चारण सुनकर दुष्ट लोग साधना को भंग कर देते थे, उस समय सुनने में तो अर्थहीन स्तोभाक्षरों के माध्यम से नाद ब्रह्म द्वारा परम ब्रह्म की आराधना की जाती थी। यह सांकेतिक भाषा है। तंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र, भक्ति शास्त्र, छंद शास्त्र, वेद वेदांत का सार तराने में छिपा हुआ है। प्रत्येक वेद मंत्र के पूर्व प्रणव ओंकार का प्रयोग करते हैं। ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्मा, यह ओम एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप है जिसमें अ उ म के साथ साथ तीनों व्याहृतियों की व्यापकता विशाल दृष्टिकोण की द्योतक हैं। वह ओंकार कितनी बड़ी विशालता देने वाला है, अर्थात ओदानी है। इसी प्रकार हे परमात्मन तू दानी है, यानी तो दानी है। यदि स्वर के द्वारा ईश्वर की उपासना प्रभु की प्रसन्नता में हेतु बनती है तो स्वर ही ईश्वर की स्नेह साधना का सेतु बन जाता है। तदीम का मतलब है उस समृद्धि को देने वाला। ईम बीज जो क्लीम में काम बीज के रूप में प्रयुक्त हुआ है, सभी में ईम काम बीज लगा है। यह तो प्राण बीज है। यदि प्राण ही नहीं रहेगा तो शरीर मृत कहलाएगा। शिव में से ई निकाल दिया जाए तो शिव का शव हो जाएगा। दीम द यानी देने वाला, उसमें ईम लगा है तो दीम बना है, यानी प्रत्येक कामना के अनुसार फल देने वाला यह काम बीज है। दिर दिर अर्थात दिव्यता को देने वाला परमात्मा, दी अर्थात दिव्यता, र जो है दिर का, वो र अग्नि बीज है अर्थात राती ददाती, दिव्यता का दान देने वाला। दानी दानी का अर्थ है तू दाता है, तू कृपालु है। दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युतिस्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु। इसके अनुसार दिर दिर तदेरे का मतलब है स्वर से ईश्वर के साथ सखा भाव से क्रीड़ा करना अर्थात लीला करना, उसके साथ रहना अथवा कांत भाव स्थापित करना। यलम में य का मतलब है गति, लम अर्थात जीवन में गति देने वाला, गति लाने वाला यलम है। गति देने वाली शक्ति का संचार यलली में ई काम बीज से होता है। यललोम लोम जड़ता को कहते हैं, उसे निष्कासित करना अर्थात जाड यानी जड़ता को दूर करना है। द्री द्रेम आदर सूचक है, यह शुक्र मंत्र भी है। इसका विवरण वेदोक्त सबीज नवग्रह स्तोत्र व भाष्य में उपलब्ध होता है। दरतन का तात्पर्य तनु यानी शरीर, तन शरीर रूपी हृदय की गुफा को दर यानी दरा संस्कृत में कहा जाता है, जिसमें परमात्मा का वास हो, हृदय गुहा का अंधकार दूर हो और उस प्रियतम का सदा मिलन बना रहे। यह एक प्रामाणिक खोज मैंने की है। तो आइए सुनिए मेरी संस्कृत में तराने की रचना, प्रस्तुत है राग भैरव में।

0: तराने में बहुत कुछ छिपा हुआ है। तराना केवल तरन्नुम नहीं है, तरन्नुम का अर्थ तो है केवल गुनगुनाना, और तराने का मतलब है पूरा गाना, जिसमें एक ऐसे इम्प्लिकेशंस छिपे हुए हैं, ऐसे संकेत छिपे हुए हैं कि अगर हम वेद शास्त्र और हमारी संस्कृति की धरोहर से हम खोजें तो पता लगता है। यह गायकी अपने आप में बड़ा अहम रखती है और बहुत सी विशेषताएं लिए हुए हैं, किंतु हम अपनी समझ से नहीं, शास्त्रों की समझ से इसे समझें तो पता लगेगा कि तराना अर्थ ही नहीं है, वह सार्थक है जिसमें बड़ी गहराई, रानाई और गंभीरता छिपी हुई है। तो मैं तराने के रहस्य को इस क्रम में आगे बढ़ाते हुए और कुछ विशेष बातें कहूँगा जो अगले कार्यक्रम में आप सुनेंगे। नमस्कार।
1: ख्याल और तराने की विशेषताएं, इस विषय पर श्रृंखला का नवा भाग अभी आपने सुना। प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने संगति की थी। इस श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम कल फिर उपस्थित होंगे। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: अभियान का हिस्सा है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। इनमें से 1,170 महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाओं और ट्रांसजेंडर को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों का अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारत नाविकों की जल्द स्वदेशी वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी नाओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमनिंग तियास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को हराया, जबकि महिलाओं ने जर्मनी को करारी शिकस्त दी। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन एरिगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर। समय है कार्यक्रम विवरण का। पहले आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 7:00
2: Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experiences from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. 10 groups are undertaking the Varanagar to Varanasi journey. The two-way motorcycle yatras between Varanagar and Varanasi involve young participants travelling across multiple states, districts and villages. Delhi government has approved the Durga scheme aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women and transgender persons in the capital. This decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi yesterday. Under the scheme, 1,300 pink electric autos will be allocated in the first phase of these. 1,170 will be reserved for women and 130 for transgender beneficiaries. The Chief Minister said the scheme will give women and transgender persons an opportunity to become owners and drivers of electric autos. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has launched Bharat Taxi and the Mukhyamantri Krishak Samit Yojana aimed at supporting taxi drivers and farmers. Under Bharat Taxi, two-wheeler, taxi and three-wheeler drivers can register without paying any commission. They will also get social security cover of 5 lakh rupees. Under the Mukhyamantri Krishak Samit Yojana, the interest rate on loans provided to farmers through the Uttar Pradesh Cooperative Gram Vikas Bank has been reduced from 11% to 6%. The Enforcement Directorate, ED, has initiated search operations at 26 places across Delhi, Mohali, Chandigarh, Panchkula and Ludhiana in a case related to Tirupati Infra Projects Private Limited. The operations are being carried out under the Prevention of Money Laundering Act. The agency said that the action has been taken against the promoters, directors and other associates of likewise private firms under bank fraud cases. According to ED, Tirupati Infra Projects Private Limited has been involved in a bank fraud worth 290 crore rupees in relation to a project. The Ministry of Finance has informed that all public sector banks and regional rural banks will remain open on Sunday, 27 September. The ministry said that this step has been taken in view of the proposed three-day nationwide bank strike called by the United Forum of Bank Unions, UFPU, from 28th to 30th of this month, coinciding with the preceding weekend holidays of 26th and 27th September. It said that the Reserve Bank of India has granted approval for all bank branches, offices, ATM link branches and currency chests to remain fully operational on Sunday. India has condemned the attack on the commercial vessel MV Cape Deo off the east coast of Oman yesterday. Ministry of External Affairs said of the 20 Indian seafarers on board, 19 have been rescued, while one Indian national tragically lost his life. It offered deepest condolences to the family of the deceased. It said the Indian Embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities for early repatriation of the Indian seafarers. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar chaired the L69 Consultative Ministerial Interaction on UNSC Reform along with his St. Lucia counterpart Alva Baptist. Addressing the meeting, Dr. Jayashankar noted that the Global South is at the receiving end of the unprecedented changes that the world is undergoing. Reigning world champion D. Kukesh and R. Raghunanda registered victories as India defeated England 2.5 to 1.5 in round 7 of FIDE Chess Olympiad in Samarkand yesterday. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। वाराणसी से पटनगर जा रही सेवा संकल्प बाइक यात्रा आज देवास के पुंजापुरा पहुंचेगी। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बाइक राइडर से संवाद। सेहत 2028 के लिए 15,000 से ज्यादा प्रशिक्षित स्वयंसेवक संभालेंगे सेवा और भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी। प्रदेश में 25 सितंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों का होगा संचालन। और प्रदेश में फिर तेज होगा बारिश का दौर, 25 और 26 सितंबर को पूर्वी हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी से वडनगर के लिए निकाली जा रही सेवा संकल्प बाइक यात्रा आज देवास जिले के पुंजापुरा पहुंचेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा में शामिल बाइक राइडर्स से वर्चुअली संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर को वाराणसी से यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा में 250 बाइकों पर 500 सेवा यात्री शामिल हैं और ये विभिन्न राज्यों से होते हुए वडनगर पहुंचेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सामाजिक सुरक्षा पेंशन के करीब 35 लाख हितग्राहियों के खातों में करीब 212 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ 2028 विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला होगा और इसे भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी को पूरी क्षमता से तैयार होना होगा। डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में भारत स्काउट एंड गाइड के पदाधिकारियों तथा स्वयं सेवकों के साथ संगोष्ठी में ये बात कही। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ में सेवा कार्यों और भीड़ प्रबंधन के लिए भोपाल में अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। सिंहस्थ 2028 में 15,000 से अधिक प्रशिक्षित स्वयंसेवक 20 से ज्यादा कैंपों के जरिए सेवा का मोर्चा संभालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल वडोदरा में ब्रह्मकुमारी संस्था के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें आध्यात्मिक जागरण भी शामिल होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की करीब 65% आबादी युवा है और युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रदेश में 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भोपाल के दशहरा मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सार्वजनिक यात्री बसों के संचालन की शुरुआत करेंगे। इस सेवा के तहत प्रदेश में इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसें चलाई जाएंगी, जिनमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए GPS और पैनिंग बटन की सुविधा होगी। सरकार ने वर्ष 2031 तक सार्वजनिक परिवहन में बसों की संख्या बढ़ाकर 15,000 करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हर साल 2500 से 3000 नई बसें जोड़ने की योजना है और चालकों को आधुनिक बसों के संचालन और सुरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के 8 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस योजना के तहत देश के करीब 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक बताया। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में 11वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने आयुष वेलनेस पर्यटन केंद्र का नया नाम आरोग्यम धाम जारी किया और स्वास्थ्य तथा आयुष क्षेत्र से जुड़ी कई जनकल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा,
1: 2002-03 की तुलना में अपने राज्य का बजट आयुष डिपार्टमेंट का 16 गुना बड़ा करके दिखाया कि हाँ, हमारे लिए अगर प्राथमिकता की बात आएगी तो हमारे लिए इससे बढ़ के कुछ नहीं। और आने वाले समय में, अब तो जिस प्रकार का समय चल रहा है, अपने यहाँ टूरिज्म जबरदस्त बढ़ रहा है, ऐसे में टूरिज्म को लेकर के हमने अपने प्रत्येक टूरिज्म के सेक्टर में, खास करके टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट जहां जहां है या हमारे धार्मिक पर्यटन के जहां केंद्र है, प्रत्येक स्थान पर वेलनेस सेंटर के लिए भी हम बात कर रहे हैं।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में मातृ और शिशु मृत्यु दर को शून्य स्तर तक लाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। भोपाल में आयोजित मोदी 25 विकसित भारत बढ़ता मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव में कल उन्होंने ये बात कही। श्री शुक्ल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर और टेलीमेडिसिन के जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 4.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है और अब तक करीब 14,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर तक नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
4: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है।
3: जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: और अब बात मौसम की। प्रदेश में बारिश का दौर एक बार फिर तेज होने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब के असर से 25 और 26 सितंबर को प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक आज छतरपुर, पन्ना, सतना, उमरिया, शहडोल, इंदौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा में भारी बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल समेत कई जिलों में हल्की से तेज बारिश का अनुमान है। आपको समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले की छैगांव देवी में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 50 विस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सालय के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। मंदसौर में सेवा संकल्प अभियान के तहत नमो सेवा और अनकही कहानियां थीम पर कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। धार में आयुर्वेद दिवस पर जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और आयुर्वेद प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आगर मालवा पहुंची जनसेवा संकल्प यात्रा का विभिन्न स्थानों पर जनप्रतिनिधियों और नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। झाबुआ में कल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 27 सितंबर को ऑफलाइन पद्धति से एक सत्र में राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का आयोजन करेगा। डिंडौरी में बैगा, बाहुल्य, वनग्राम, पोंडी, ईश्वरपुर, बंगवार और वकीली डोला झामूल में स्वास्थ्य जांच और पोषण परामर्श शिविर आयोजित किए गए। मंडला के पीएमश्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर में उमंग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। पन्ना जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत मेरे सपनों का भारत गतिविधि संचालित की जा रही है। गुना कलेक्टर ने कल ईवीएम वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। छतरपुर के खजुराहो में जन जल सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ननौरा तालाब में सांसद खजुराहो विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। नीमच में सेवा संकल्प अभियान के तहत समन्वित कृषि विकास कार्यशाला में किसानों को खेती की जानकारी दी गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी भोपाल से लीजिए प्रस्तुत।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार

0: एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला गीत आपको सुनवाते हैं रोशन के संगीत से सजा। साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा है, मोहम्मद रफी ने गाया और फिल्म का नाम है बाबर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं तिकड़म बाज इस फिल्म से। शमशाद बेगम ने इसे गाया है, बीएन बाली ने लिखा है, मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम थोड़ी ही देर में लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

विविध बातें सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। हम लेकर आ गए हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

दूसरा आदमी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। अगला गीत हम किसी से कम नहीं फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। लिखा इसे भी मजनू सुल्तानपुरी ने है और संगीत पर किया है आर.डी. बर्मन ने।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज भी।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम हम है राही प्यार के। अगला गीत अदालत फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। रचना की है गुलशन बावरा ने, संगीत पर किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं आनंद आश्रम फिल्म से, यशुदास और प्रीति सागर की आवाजों में। इंडीवर के बोल हैं, धुन बनाइए श्यामलाल मित्रा।

0: एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जई हो तू वृंदावन
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है संगीत की गहराई है भावों में मिठास है
1: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम
0: वो है संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहली बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह।

0: प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाऊं
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम है राही प्यार की ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज में पहली फिल्म का गीत सुनिए, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम हम है राही प्यार के अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: नमस्कार नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गाँवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
2: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
3: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
2: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
4: बहुत अच्छी बात जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
2: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
5: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
6: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एक मुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
7: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल

0: बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रोशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओई से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रोशिबिना का तीसरा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझो एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
0: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नव भारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है शहीद बूटा सिंह। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली से राजकुमार और छिंदवाड़ा से मोहन साहू। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसे कलम के सिपाही की, जिनकी जीवन यात्रा एक दीपक की तरह थी, जिसने आंधियों से रोशनी का अर्थ सीखा, जिनके लिए पत्रकारिता केवल घटनाओं की खबर पहुंचाना भर नहीं था, बल्कि उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ था समय की आंखों में आंखें डालकर सच कहने का साहस। वो महान और प्रखर पत्रकार थे तुषार कांति घोष, जिनकी कलम ने गुलामी की रात में भी स्वतंत्रता का स्वप्न देखा और आजादी के बाद लोकतंत्र की चौकसी को अपना जीवन धर्म बनाया। तुषार कांति घोष का जन्म 21 सितंबर सन 1898 को अविभाजित बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। उनका परिवार बंगाल का एक सम्मानित परिवार था। भारतीय पत्रकारिता और स्वाधीनता संग्राम से इसका गहरा संबंध था। उनके पिता शिशिर कुमार घोष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन पुरोधाओं में से थे जिन्होंने अपने भाइयों मोतीलाल घोष और वसंत कुमार घोष के साथ मिलकर अंग्रेजी दैनिक अमृत बाजार की शुरुआत की थी। अमृत बाजार केवल एक समाचार पत्र भर नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विचारों का एक सशक्त और निर्भीक मंच बन चुका था। इस तरह बचपन से ही तुषार कांति घोष ने देश, समाज और स्वाधीनता की बातें सुनी, अन्याय के विरुद्ध उठती आवाजें सुनी। इसीलिए पत्रकारिता उनके लिए केवल पेशा नहीं, पारिवारिक संस्कार और राष्ट्रीय दायित्व था। उनकी आरंभिक शिक्षा कोलकाता के प्रतिष्ठित हिंदू स्कूल में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी मेधा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध बंगवासी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अध्ययन के साथ साथ अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य ने उनके भीतर भाषा की शक्ति जगाई तथा देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उनके भीतर प्रश्न करने की बेचैनी पैदा की।

शिक्षा पूर्ण करने के बाद तुषार कांति घोष के समक्ष कई विकल्प थे, लेकिन उन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों और राष्ट्रीय दायित्व को सर्वोपरि मानते हुए पत्रकारिता के कठिन और जोखिम भरे मार्ग को चुना। सन 1930 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका के संपादक का दायित्व संभाला। उस दौर में किसी पत्र का संपादन करना केवल सुंदर और प्रभावकारी लेख लिखना भर नहीं था, ब्रिटिश सरकार की कड़ी निगरानी, क्षेत्रीय सेंसरशिप और वित्तीय अनिश्चितताओं के बीच समाचार पत्र निकालना एक युद्ध की तरह था। प्रेस चलाने के लिए कागज चाहिए, मशीन चाहिए, श्रम चाहिए और वितरण का जाल चाहिए। तुषार कांति घोष ने पत्रकारिता को केवल संपादकीय कक्ष में बैठकर नहीं समझा, वो मुद्रण कक्षों में जाते, तकनीक समझते और संकट के समय स्वयं समाधान ढूंढ निकालते। जब जेसोर क्षेत्र में कागज की कमी हुई तो कागज निर्माण और प्रसंस्करण की तकनीक समझने के लिए वो पांडुआ तक गए। तुषार कांति घोष ने भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में सन 1937 में अमृत बाजार पत्रिका समूह ने बंगाली दैनिक समाचार पत्र जुगांतर का प्रकाशन शुरू किया। कुछ ही समय में जुगांतर बंगाल और पूर्वी भारत का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली बंगाली समाचार पत्र बन गया। ये अरविंद घोष के साप्ताहिक पत्र जुगांतर से अलग पत्र था। इसके माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में निर्भीक पत्रकारिता और राष्ट्रवादी चेतना की एक नई लहर पैदा हुई। तुषार कांति घोष के भीतर ब्रिटिश सत्ता के समक्ष न झुकने का अटूट संकल्प था। यही कारण है कि उनके संपादन काल में अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेज अधिकारियों और औपनिवेशिक न्यायपालिका की आंखों की किरकिरी बनी रही। तुषार कांति घोष के जीवन की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक था सन 1935 का वो प्रसिद्ध अवमानना का मुकदमा, जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। दरअसल 21 मार्च सन 1935 को बंगाल विधान परिषद में एनके बसु ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की आलोचना की थी। इसके बाद अमृत बाजार पत्रिका में कलकत्ता हाई कोर्ट शीर्षक से संपादकीय प्रकाशित हुई। इसमें अदालत के न्यायाधीशों पर कार्यपालिका के साथ निकटता के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होने जैसी गंभीर टिप्पणी की गई थी। इसे अदालत की अवमानना मानते हुए तुषार कांति घोष और तारिक कांति विश्वास के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अदालत में तुषार कांति घोष ने बताया कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान ये लेख छपा था, लेकिन वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। साथ ही उन्होंने अपने पक्ष में तर्क भी रखा। अदालत ने उन्हें माफी मांगने का अवसर दिया, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं हुए। परिणाम स्वरूप उन्हें 3 माह कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन वो जिंदगी भर न कभी झुके न रुके, वो निर्भीक निडर बस चलते रहे।

तुषार कांति घोष अपनी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और हास्य व्यंग के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। अंग्रेजों के साथ उनकी संवाद शैली अत्यंत रोचक रहा करती थी। इसी तरह का एक किस्सा पत्रकारिता जगत में प्रचलित है। बताया जाता है कि एक बार बंगाल प्रांत के तत्कालीन गवर्नर ने चुटकी लेते हुए कहा, श्रीमान घोष, मैं आपकी अमृत बाजार पत्रिका नियमित रूप से पढ़ता हूँ। अखबार तो अच्छा है, लेकिन इसमें कई बार अंग्रेजी व्याकरण सही नहीं होता है और आपकी पत्रिका अंग्रेजी भाषा के साथ काफी हिंसा करती है। इस पर बिना एक क्षण गवाए तुषार कांति घोष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।

महोदय, अंग्रेजी भाषा के साथ हिंसा करना ही तो भारत के स्वाधीनता संग्राम में मेरा और मेरी पत्रिका का सबसे छोटा सा योगदान है। जवाब सुनकर गवर्नर महोदय चुप रह गए। इस तरह तुषार कांति घोष ने कलम के सहारे ऐसा युद्ध घोष किया कि ब्रिटिश सत्ता कभी चैन से नहीं बैठ सकी। अमृत बाजार पत्रिका और जुगांतर, मानो उनकी कलम ने दो भाषाओं में एक ही संदेश लिखा, जनता को जागना होगा। तुषार कांति घोष ने कभी शब्दों से तो कभी अपने मौन से भी जागरण का ये मंत्र फूंका। 16 अगस्त सन 1946 को अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया और कलकत्ता की सड़कों पर भयानक नरसंहार, सांप्रदायिक दंगे और आगजनी के दृश्य थे। पूरा शहर हिंसा की आग में जल रहा था। अनेक समाचार पत्र भड़काऊ खबरें छाप रहे थे, एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे थे। ऐसे समय में अमृत बाजार पत्रिका का संपादकीय कॉलम खाली छोड़ दिया गया। ऐसा 3 दिनों तक किया गया। 3 दिनों का ये मौन संपादकीय ब्रिटिश हुकूमत की विफलता और राजनीतिक उन्माद के विरुद्ध तुषार कांति घोष का तीखा और मौन प्रतिरोध था। स्वाधीनता के बाद भारत में कई बार ऐसी स्थितियां आईं जब केंद्र या राज्य सरकार ने मीडिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रयास किया। तुषार कांति घोष ने सदा इसका कड़ा विरोध किया। वो इस बात के पक्षधर थे कि समाचार पत्रों को किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या कॉरपोरेट घराने का मोहरा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका को एक ऐसा मंच बनाया जहां प्रशासनिक भ्रष्टाचार, नीतिगत कमियों और सत्ता के अहंकार पर बिना किसी डर के कड़ा प्रहार किया जाता था। तुषार कांति घोष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और द इंडियन न्यूज सोसाइटी के सर्वोच्च पदों पर रहे। उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन का पुरजोर समर्थन किया ताकि पत्रकारिता सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहे। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट और कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रकार होने के साथ साथ उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद पुस्तकें भी लिखीं। उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका में भी बच्चों के लिए विशेष कॉलम शुरू किए थे ताकि बच्चों में पढ़ने की आदत और नैतिक मूल्यों का विकास हो। राष्ट्र निर्माण, साहित्य, शिक्षा और स्वतंत्र पत्रकारिता में उनके योगदान को देखते हुए सन 1964 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। एक समृद्ध और प्रेरणादायक जीवन जीते हुए 29 अगस्त सन 1994 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि तुषार कांति घोष का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन ले, तुषार कांति घोष का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर को वाराणसी से वडनगर के लिए निकाली जा रही सेवा संकल्प पद यात्रा आज देवास जिले के पुंजापुरा पहुंचेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा में शामिल बाइक राइडर्स से वर्चुअली संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल भोपाल में हुई एक संगोष्ठी में बताया कि हस्तियों में सेवा कार्यों और भीड़ प्रबंधन

0: भोपाल में अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। सीहस 2028 में 15,000 से अधिक प्रशिक्षित स्वयंसेवक 20 से ज्यादा कैंपों के जरिए सेवा का मोर्चा संभालेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में मातृ और शिशु मृत्यु दर को शून्य तक लाने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर और टेलीमेडिसिन के जरिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश में 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत होगी। सेवा के तहत प्रदेश में इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसें चलाई जाएंगी। सरकार ने वर्ष 2031 तक सार्वजनिक परिवहन में बसों की संख्या बढ़ाकर 15,000 करने का लक्ष्य रखा है और प्रदेश में बारिश का दौर एक बार फिर तेज होने वाला है। 26 सितंबर को प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक आज छतरपुर, पन्ना, सतना सहित 10 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल समेत कई जिलों में भी बारिश का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेब OTT ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।
2: देखा नहीं देखा है, तू जाना नहीं जाना है, तू माना नहीं मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

परम सुंदरी इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। सचिन जिगर ने इसे संगीतबद्ध किया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। सचिन जिगर, विशाल मिश्रा और अमिताभ भट्टाचार्य गायक कलाकार।

कौसर मुनि का लिखा गीत और सचेत परंपरा ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। रेड टू फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इससे पहले जो गीत आपने सुना था उसे आवाज दी थी विशाल मिश्रा ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं अरमान खान का गाया स्नेहा शंकर के साथ में। ये गीत कौशल किशोर ने इसे लिखा है, विशाल मिश्रा ने संगीतबद्ध किया है। फिल्म का नाम हक।

कबूल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अरमान खान की आवाज में। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं एक चतुर नार फिल्म का गीत। सचेत टंडन और शिल्पा राव की आवाजें, शायरा अपूर्वा ने इसे लिखा है, धुन बनाई है अभिजीत श्रीवास्तव ने।

0: रेट्रो फिल्म का गीत हृदय गट्टानी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। रकीब आलम ने इसे लिखा था और संतोष नारायणन ने धुन बनाई थी। और ये गीत था कार्यक्रम चित्रलोक का, लोक की आखिरी प्रस्तुति।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: बोलो बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
0: बस इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत, पूजा नारायणिया को नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते थे, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोठे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 में हुआ है, आज के शहर बेंगलुरु में। उनका परिवार अफगानिस्तान के गजनी शहर से आके हिंदुस्तान में बसा हुआ है। ये परिवार पठान वंश से ताल्लुक रखता है। उनकी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु में हुई और वो जब मुंबई घूमने आए तो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री से काफी मुतासर हुए और उन्हें भाग्यवश फिल्म दीदी में सेकंड लीड रोल करने का मौका मिला। फिरोज खान ने शुरुआत में कई छोटी मोटी फिल्मों में किरदार किए। एक अंग्रेजी फिल्म टार्जन कम्स टू इंडिया, इसमें भी उन्होंने काम किया था, जिसमें उनकी नायिका थी सिमी ग्रेवाल। 1965 में उन्हें फणी मजूमदार साहब ने ऊंचे लोग इस फिल्म में हीरो का रोल दिया। इस फिल्म में दादा मुनी और जानी राजकुमार थे। इनके होते हुए भी फिरोज खान ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। ये फिल्म हिट हुई और इस फिल्म का चित्रगुप्त साहब का संगीत भी बड़ा ही सुमधुर बन पड़ा है। इसका जादू आज भी चाहने वालों के सर चढ़ के बोलता है।

दोस्तों, इस फिल्म के हिट होने के बाद भी फिरोज खान ने छोटे बजट की फिल्मों में काम करना जारी रखा। सैमसन, चार दरवेश, एक सपेरा एक लुटेरा ऐसी ही कुछ फिल्में थी।

1965 में रामानंद सागर की सागर आर्ट के बैनर तले फिल्म आई आरजू। इसमें भी फिरोज खान ने सेकंड लीड रोल किया था और इस फिल्म ने भी सफलता के झंडे गाड़े और फिर एक बार फिरोज खान ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया था। 1969 में बीआर फिल्म्स का बड़ा शाहकार पर्दे पर आया आदमी और इंसान। सायरा बानो, धर्मेंद्र, मुमताज और फिरोज खान की इसमें मुख्य भूमिकाएं थी।

0: आदमी और इंसान फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए फिरोज खान को अपनी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल। फिरोज खान ने अपना फिल्मी करियर 1960 से शुरू किया फिल्म दीदी के साथ। 1975 तक कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, नाम किया। मैं शादी करने चला ये फिल्म आई थी 1962 में। इसी साल यानी 1962 में आई थी रिपोर्टर राजू।
1: रात झूमती, दिल को झूमती, दिल को झूमती।

1966 में आई थी फिल्म मैं वही हूँ। इस फिल्म का जो रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना है, जो फिरोज खान पर फिल्माया गया है, बड़ा ही हसीन बन पड़ा है।

फिल्म सफर का निर्माण किया था मुशीर रियाज ने। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर इसमें मुख्य भूमिकाओं में थे। फिरोज खान ने भी इस फिल्म में शेखर का बड़ा ही अहम रोल किया था। उन पर फिल्माया गया ये गाना भी आज तक सुनने वालों की पसंद में शामिल है। उनके साथ पर्दे पर थी शर्मिला टैगोर। गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और आवाज मुकेश।

सन 1971 में आई थी फिल्म उपासना। संजय खान अर्थात अब्बास अली खान जो कि उनके भाई हैं और मुमताज की इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थी। इस फिल्म का मुकेश का गाया उन्हीं पर फिल्माया गया ये गाना भी आज तक उतना ही पॉपुलर है। उनके साथ नजर आती हैं मुमताज।

0: दोस्तों, फिल्मी दुनिया का एक अलिखित नियम है, जिस रोल में शुरुआती फिल्म में आप नजर आते हैं वैसे ही रोल आपको मिलते चले जाते हैं। फिरोज खान के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर फिरोज खान ने अपने को लीड रोल में लाने के लिए कड़ी मशक्कत मेहनत की और एक दिन उनकी ये मेहनत रंग लाई। सफर, शंकर शंभू, प्यासी शाम, गीता मेरा नाम और खूटे सिक्के जैसी छोटी बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के रंग भरे और अपनी किस्मत का सिक्का चमकाया। इस दौरान अपने छोटे भाई संजय खान के साथ भी उन्होंने 3 फिल्में की, उपासना, मेला और नागिन। 1972 में फिरोज खान ने अपना एक बैनर बनवाया, FK इंटरनेशनल। इसी के बैनर तले फिल्म बनाई अपराध। अपनी मन मर्जी से इस फिल्म की कहानी, लोकेशन का चुनाव उन्होंने किया और बड़ी ही उम्दा फिल्म बनाई जिसके गाने आज भी हिट।
1: हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दिवा।

इस दौरान वो और बैनरों में भी नजर आए। रविकांत नगाइश द्वारा निर्देशित फिल्म काला सोना में भी उन्होंने बड़ा ही उम्दा रोल निभाया है। 1975 में फिरोज खान ने एक जबरदस्त शाहकार दिया धर्मात्मा। ये पहली ऐसी फिल्म है जो अफगानिस्तान में शूट हुई। इस शानदार फिल्म ने उन्हें बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अदाकार जबरदस्त सफलता दिलाई।

दोस्तों, फिरोज खान सही मायनों में एक अजीम फनकार थे। रोल चाहे कोई भी हो, उसमें वो जान फूंकते थे। वो एक स्टाइलिश अदाकार थे। काउबॉय वाले किरदार उन्होंने ही हिंदी सिनेमा को दिए हैं। कई फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया, जैसे कि धर्मात्मा, जांबाज, यलगार, कुर्बानी, दयावान जैसी फिल्में उन्होंने अपने प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाई। प्रेमगन, जानशीन ऐसी भी कुछ फिल्में उन्होंने बनाई हैं। वो एक उच्च कोटि के निर्माता निर्देशक साबित हुए हैं। लगभग 5 दशकों तक का उनका फिल्मी सफर रहा।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के स्टाइलिश अभिनेता फिरोज खान पर। आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन
1: एनसीईआरटी का पर।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शिवपुरी जिले की चिट्ठी, आलेख रंजीत गुप्ता, वाचन स्वर दीपा सिंह। शिवपुरी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात गणेश महोत्सव की। शहर में 100 से ज्यादा स्थानों पर गणेश पंडाल सजाए गए हैं। 25 सितंबर को गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन धूमधाम से किया जाएगा। त्योहारों के इस माहौल के बीच शिवपुरी में विश्व साइन लैंग्वेज डे भी मनाया गया। फतेहपुर स्थित CWSN छात्रावास में हुए कार्यक्रम में मूक बधिर और दिव्यांग बच्चों को साइन लैंग्वेज के जरिए इस दिवस के महत्व की जानकारी दी गई। कार्यक्रम सामाजिक न्याय विभाग और DDRC ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। बच्चों की बात चली है तो स्कूलों में उनके पोषण का भी जिक्र जरूरी है। जिला पोषण समिति की बैठक में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने मध्याह्न भोजन की समीक्षा की और लापरवाही करने वाले समूहों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। आंगनबाड़ियों में भी भोजन की नियमित निगरानी पर जोर दिया गया। बच्चों से जुड़ी एक और अच्छी पहल शिवपुरी के जिला उत्कृष्ट विद्यालय में देखने को मिली है। यहाँ उमंग है तो जिंदगी में रंग है थीम पर उमंग दिवस मनाया गया। विद्यार्थियों ने कई रोचक गतिविधियों में हिस्सा लिया और चुनौतियों से लड़कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया।

बात करते हैं प्रशासन की, जो गांव तक पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहा है। कोहरे जनपद के ग्राम छर्ज में लगाया गया विशेष जनसुनवाई शिविर में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया। इसी कड़ी में मगरौनी में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत जनसंवाद शिविर भी लगाया गया। विधायक रमेश प्रसाद खट्टी को कलेक्टर अर्पित वर्मा ने लोगों की समस्याएं सुनी। अब बात जिले के विकास की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में दिशा समिति की बैठक की। उन्होंने सिंचाई, पेयजल, सड़क और दूसरी बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की और काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि दो सिंचाई परियोजनाएं पूरी होने पर जिले में 1,10,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा। शिवपुरी में नए हवाई अड्डे के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। वहीं बाईपास और रिंग रोड के लिए बजट मंजूर कराने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। विकास के साथ खेती की बात हो तो प्राकृतिक खेती पर भी जिले में काम चल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र में हुई कार्यशाला में किसानों को पराली प्रबंधन, डी कम्पोजर और आधुनिक कृषि यंत्रों से फसल अवशेष के बेहतर उपयोग की जानकारी दी गई। इन्हें करीब 80 कृषि विशेषज्ञों, किसानों, विभागीय कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बारिश के बाद फसलों में कीट और रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। इसे देखते हुए कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र की टीमें गांव-गांव पहुंच रही हैं। सोयाबीन में पीला मोज़ैक सहित खरीफ फसलों में कीट प्रकोप से बचाव के लिए किसानों को मौके पर तकनीकी सलाह दी जा रही है। खेती के लिए पानी की जरूरत को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी राहत दी है। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। शिवपुरी में बेरोजगार युवाओं के लिए सुरक्षा गार्ड भर्ती शिविर भी लगाए गए। 225 आवेदकों में से 166 युवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ है। चयनित युवाओं को एक महीने का प्रशिक्षण देने के बाद सुरक्षा क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। और अब बात शहर की सेहत की। बारिश के बाद डेंगू और मलेरिया के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लार्वा सर्वे शुरू किया है। करीब 5,000 घरों की जांच में 489 घरों में लार्वा मिला है। 39 वार्डो में 134 टीमें घर घर जाकर जांच और लोगों को जागरूक कर रही है। स्वास्थ्य के साथ त्योहारों में खाने पीने की चीजों की शुद्धता भी जरूरी है। इसे देखते हुए खाद्य और औषधि प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पिछले 15 दिनों में 30 से ज्यादा खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, जबकि पहले के 10 फेल नमूनों के मामले अदालत में पेश किए गए हैं। और आखिर में बात किसानों के उत्सव की। शिवपुरी की पिपर सभा कृषि उपज मंडी में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने किसानों से संवाद किया और किसानों ने कृषि और पशुपालन में सरकारी योजनाओं से मिले लाभ के अपने अनुभव साझा किए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे शिवपुरी जिले की चिट्ठी। आलेख रंजीत गुप्ता का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
1: अनुभव हुए कुछ कुछ उन्होंने आपको बताया?
2: बाद में एक अल्लाद चित्र का नाम की एक संस्था थी
1: जी,
2: दत्ता धर्म अधिकारी
1: जी
2: नाम के प्रोड्यूसर थे जिनको हम दत्ता मामा कहते थे। तो उनके जो बहुत सारे पिक्चर का म्यूजिक डायरेक्शन मेरे पिताजी ने वसंत पवार के साथ किया था।
1: अच्छा, अच्छा।
2: वसंत पवार राम वड़ावकर ऐसा वो जोड़ी आती
1: जोड़ी
2: थी। जैसे कि पुराना चिमनी पाखर है, अबोली है,
1: हाँ।
2: और कुछ दो तीन हिंदी भी थे लेकिन ज्यादा से ज्यादा मराठी 9-10 पिक्चर्स किए हैं
1: जी, जी।
2: फिर बाद में मेरे याद में जो है जो रिकॉर्डिंग में गया था मैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: आशा भाई के दो तीन गाने थे, फकीरा नाम का चित्रपट था
1: जी,
2: में वो 62-63 में आया था।
1: ये हिंदी फकीरा की बात नहीं हो रही है?
2: नहीं, मराठी फकीरा। मराठी फकीरा वो 62-63 का आया और बाद में एक 64 में आया चित्रपट आया था मराठी शोधा मंजे सापड़ेल, जिसमें सुमन कल्याणपुर ने दो तीन गाने गाए थे।
1: आपने आशा भाई और सुमन जी को देखा?
2: देखा है, बिल्कुल देखा है। उस टाइम मुझे इतना मालूम नहीं था, इतने बड़े कलाकार है मुझे नहीं मालूम था।
1: आप तो छोटे थे,
2: 12-14 साल का था
1: जी।
2: तो उनके साथ मैंने बजाया भी है, सुमन ताई के साथ।
1: हाँ।
2: उनके जो रिहर्सल चलती थी
1: जी,
2: तो रिहर्सल्स में मुझे बजाने को बोलते थे। जिस चित्रपट में सुमनताई गाई थी वो चित्रपट का संगीत संयोजन अनिल मोहिली जी ने किया था। तो अनिल जी मुझे बोलते थे रिहर्सल में तुम बजाओ। तो उस हिसाब से मैंने उनसे साथ बजाया।
1: अच्छा, आपके हाथ में वायलिन किस बरस की उम्र में दे दिया गया था?
2: मैं शायद 12-13 बरस का था
1: तब से बजा रहे हैं।
2: हाँ, क्योंकि जो मेरे मास्टर जी थे वायलिन के वो मेरे पिताजी के असिस्टेंट थे, प्रभाकर
1: जी।
2: तो

0: मेरे पिताजी ने उनको बोला, अरे इसको हारमोनियम में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा वायलिन भी सीखना चाहिए उसने, और कुछ सीखना चाहिए। तो उनके साथ मैंने वायलिन उनके पास मैंने सिखा।
1: कितने साल तक सीखते रहे?
0: 7-8 बरस तक मैंने सिखाया। 70-71 तक मैंने वायलिन का रियाज चालू रखा था।
1: और पिताजी हारमोनियम सिखा रहे थे?
0: हाँ, तो ये पहले गुरु जी मेरे पिताजी।
1: कितने सख्त थे वो?
0: नहीं, बहुत प्यारे थे
1: जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये तो हो गया हारमोनियम का जिक्र, वायलिन का जिक्र, पर आप तो अकॉर्डियन भी बजाते हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ?
0: ये एक्चुअली क्या हो गया, मैं 72 में बीएड जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया।
1: ओ।
0: और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए, तो फिर पूछा घर में कि ये क्या करता है। तो मेरे मास्टर जी थे, वो बोले हारमोनियम बजा लेता है, मेरे पास वायलिन सीखता है। तो फिर वसंत देसाई बोले कि हाँ हारमोनियम बजा लेता है, तो उसको फलाना फलाना डेट को मेरे पास भेजो। और फिर उधर गया, मैं पास हो गया, उनके हिसाब से पास हो गया। फिर 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: गजब।
0: हाँ, तो उधर क्या हुआ कि लोग आते थे, यानी जयवल कुलकर्णी है या तो शरद जांबेकर, प्रमिला दाता, रुफैया जी, वाणी जयराम, तो जयवंत कुलकर्णी, उनके साथ जयवंत जी के साथ मैंने हारमोनियम बजाना शुरू किया। और उनके साथ जो अकॉर्डियन बजाता था, सूरज साठे नाम का,
1: सूरज साठे बहुत
0: बढ़िया बजाने वाला
1: जी, जी।
0: तो जब मैंने उसको देखा तो बोली ये साज बढ़िया है, उसमें क्या इफेक्ट मिलता है प्रोग्राम में ये वो, तो मन में कुछ ले लिया। तो फिर मैं 74 को अकॉर्डियन खरीद लिया।
1: अरे बाबा।
0: तो फिर 78 से मैं बार बजाने लगा सीख के।
1: अच्छा।
0: पहले मैंने ऑडिशन भी दी थी रेडियो की।
1: अरे बाबा।
0: 78 में मैं ऑडिशन पास हो गया रेडियो की।
1: जी जी।
0: हाँ, तो वहां से फिर अकॉर्डियन शुरू किया। तो शायद 80-82 तक, जब तक मैं कीबोर्ड नहीं मेरे पास आया तब तक अकॉर्डियन बजा रहा था।
1: मैंने एक और चीज जो पढ़ी है आपके बारे में कि कॉलेज रुइया में पढ़े आप, और पढ़ाई करने तक आपके मन में ये तय नहीं था कि जीवन में आगे क्या करना है।
0: बिल्कुल, जब मैं 72 में वसंत देसाई के आ गया,
1: हाँ,
0: तब मेरा फाइनल हो गया कि मैं करियर करूंगा तो इसमें करूंगा।
1: और ये बैंक वाला मामला क्या था?
0: बैंक की परीक्षा देनी पड़ती थी ना।
1: हाँ, तो आपने बहुत मेहनत की, तैयारी की उसकी?
0: तैयारी की थी, लेकिन बिकॉज मेडिकली अनफिट हो गया मैं।
1: जी जी।
0: मेडिकली तो 2-3 बैंक में ट्राई किया तो बोले ये तो गड़बड़ है, कुछ होने वाला नहीं इधर। और ये मौका मिल गया वसंत देसाई जी के उधर जाने का, तो वहां से फिर हो गया कि मैं म्यूजिक करूंगा।
1: वाह, वसंत देसाई का जिक्र हो रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ 2 आंखें 12 हाथ फिल्म का एक गाना अपने सुनने वालों को सुनवा दिया जाए।
0: बिल्कुल,
1: वसंत देसाई की याद के नाम।
0: बिल्कुल।
1: ए मालिक तेरे बंदे हम।
0: ठीक है।

0: अप्पा वढ़ावकर जी से बातें हो रही हैं और अप्पा आप बता रहे हैं कि वसंत देसाई जी ने आपको अपनी निगेबानी में ले लिया और आप कुछ साल तक वहां बजाते रहे। वसंत देसाई से जुड़ी कुछ यादें हमें बताइए, क्योंकि आपकी उम्र तो कम थी उस वक्त और वो बहुत बड़े संगीतकार थे।
1: तो मैं एक कैंपेन था गवर्नमेंट का, एक सुर एक ताल नाम।
0: हाँ,
1: ये उसका ये तो मोटो ऐसा था कि समझो कि पाठ्य पुस्तक के जब मराठी पाठ्य पुस्तक है ये तो समझो एक कविता है, देवा तुझे कितनी सुंदर आकाश। तो ये जो कविता है तो उस टाइम क्या होता था कि समझो कि बालमोहन स्कूल का म्यूजिक टीचर है, वो अपने हिसाब से उसकी ट्यून बनाता था। पार्ला का एक आधा स्कूल है तो उसके हिसाब से वो मास्टर ट्यून बनाएगा। छाना पूना ऐसा जो अलग अलग ट्यून बनते थे, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी कुछ। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वो गाने में गवर्नमेंट ने ये स्कीम चालू की, कैंपेन चालू किया कि एक सुर एक ताल, यानी कि किधर का बच्चा भी एक साथ आए और एक कविता गाने को बोले। तो एक ही ट्यून में गाए, एक ही ताल में गाए।
0: क्या बात है।
1: तो ये कैंपेन में मैंने 8 बरस काम किया उसमें।
0: और वसंत देसाई के साथ फिर महाराष्ट्र के गांव गांव
1: जिले जिले में गांव गांव में हम लोग घूमते थे
0: जी।
1: और उधर क्या होता था कि वो क्या बोलते हैं शिविर कैंप जो होता था वो समझो कि सोलापुर में गए हम लोग, तो उस एरिया के म्यूजिक टीचर्स उधर बुलाते थे
0: जी।
1: समझो 200-250 लोग होंगे, वो गाने सीखेंगे 3 दिन में, जो कुछ होगा 3-4-5 गाने जो होगा वो आप अपने स्कूल में जाके सिखाएंगे अपने बच्चे को। और फिर एक बड़ा सेमिनार लेके वो गाने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और कैसा क्या हो रहा है। और ये बहुत अच्छा कैंपेन था एक्चुअली, मास सिंगिंग बोलते हैं उसको।
0: वाह वाह। और
1: समूह गान
0: पूरे देश में सिर्फ महाराष्ट्र में ये एक
1: मेरे ख्याल से मेरे इसमें वही मालूम है कि महाराष्ट्र में ये हुआ था।
0: उसी दौरान क्या वसंत देसाई ने महात्मा गांधी का एक भजन कंपोज किया था, हे नम्रता के सागर, आपको कुछ याद है?
1: वो एक्चुअली भजन नहीं है
0: जी,
1: वो एक्चुअली कहावत है ऐसे कि वो गांधी जी ने जेल में एक पत्र लिखा था।
0: यस।
1: और पत्र को वसंत देसाई जी ने वो ट्यून बना के जैसा लगता है गाना ही है,
0: मन्ना डे ने गाया
1: था। बहुत अच्छा तर्ज उसका हुआ था।
0: तो आप उस वक्त वसंत देसाई के साथ थे?
1: नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं था, मैं जाने के पहले वो रिकॉर्ड हुआ था।
0: अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि वसंत देसाई के साथ इतना ज्यादा अनुभव आपका है और वो एक बहुत ही अप्रतिम संगीतकारों में से रहे हैं, उनसे जुड़ी कुछ घटनाएं याद आती हैं जिनका जिक्र आप करना चाहें?
1: एक्चुअली एक बात मेरे बारे में, इतना मैं लकी हूँ
0: जी
1: कि मेरे जो चित्रपट के जो पहला गाना, यानी समझो कि हिंदी का पहला गाना जो मैंने बजाया
0: जी
1: एज अ म्यूजिशियन
0: जी,
1: वो वसंत देसाई का म्यूजिक।
0: वाह।
1: शक नाम का चित्रपट था।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: शबनाज भी, विनोद खन्ना वगैरह काम करते।
0: वो गाना कौन सा था?
1: वो अभी ना पर्दा गिराओ करके।
0: वाह वाह वाह। जेके बनर्जी ने गाया था।
1: यस, काका जी हम लोग उसके बोलते थे
0: जी।
1: तो वो गाना बजाने का मुझे मौका मिल गया, वो वसंत देसाई का था।
0: गुलजार साहब के बोलते अभी ना पर्दा गिराओ ठहरो की दास्तां अभी और भी है।
1: क्या बात है, मराठी का पहला चित्रपट गाना मैंने वसंत देसाई साहब का बजाया।
0: क्या बात है।
1: और वो गायक कौन था? तो पंडित भीमसेन जोशी जी।
0: ओ
1: भारत रत्न।
0: वाह वाह वाह।
1: इतना अभी ये आते कांटा रोंचे आते मुझे
0: जी। तो जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी तनाव था?
1: तनाव तो था, क्योंकि इधर का भी पहला रिकॉर्डिंग उधर। अच्छा, पहले हिंदी का इतना तनाव ना था क्योंकि हमें रिहर्सल बहुत किए थे वो काका जी के साथ।

0: जी जी
1: कम से कम 15 रिहर्सल किए थे।
0: वाह।
1: लेकिन और क्या वो रिकॉर्डिंग ऐसा हेडफोन लगा के मैंने बजाया था
0: जी
1: काका जी का, पर लेकिन पंडित जी का जो गाना बजाया मराठी का वो ऐसा सामने पंडित जी बैठे मैं इधर बैठा हूँ।
0: अरे बाप रे,
1: वो गा रहे हैं और क्या उनका आवाज,
0: कंठ क्या गजब था।
1: बढ़िया बढ़िया
0: है ना। गाना याद है कौन सा था वो?
1: वो रात्रन दिन अम्मा युद्धाचा प्रसंग।
0: अब गा के बताइए।
1: रात्रन दिन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रन दिन आमा युद्धाचा प्रसंग, आगे का वर्ड्स आता नहीं, ये चंद्रकोंस में बांधी हुई चीज थी।
0: वाह,
1: और बढ़िया गाया था।
0: क्या बात है, सुंदर याद आपने हमारे साथ साझा की है। और चूंकि शक फिल्म के गाने का जिक्र किया है,
1: हाँ,
0: तो वो गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: बहुत सुंदर बातें आपके साथ हो रही हैं अप्पा जी, और आप आगे चलकर म्यूजिशियन से म्यूजिक अरेंजर कैसे बने ये कहानी हमें बताइए।
1: पहला म्यूजिक अरेंजर ऐसे काम किया तो मैंने स्टेज पे किया था
0: जी।
1: तब क्या हुआ कि मैं एक ग्रुप कर रहा था, सब वैसा मैं थोड़ा सा इधर काम किया, वसंत देसाई के साथ, उसी रामचंद्र के साथ काम किया, तो थोड़ा सा मैं सीनियर था उनमें, और नोटेशन मुझे आती थी और उन लोगों को कुछ नोटेशन नहीं आता था। तो अचानक वो जिम्मेदारी मुझे पड़ गई कि इनको सब संभालो एक साथ, तो अरेंजर उधर ऐसे ही बन गया। तो फिर बाद में क्या होगा कि मैं सोचता था कि अरे मतलब क्रेडिट्स में मेरा नाम नहीं आता था, और सिंगर्स के नाम आते, वो इधर इसका नाम आया उसका नाम है, म्यूजिक अरेंजर का नाम नहीं। तो मैंने सोचा कि चार सिंगर हैं, वो पांच पांच छह छह गाने बिठाएंगे गाएंगे, लेकिन मेरे को 25 गाने बिठाने पड़ते हैं
0: जी,
1: और वो सब म्यूजिशियन से काम करना लेना, तो मेरा काम भी ज्यादा है ना।
0: हाँ।
1: तो क्रेडिट्स में आना चाहिए नाम, तो मैं करते गया कि हमारा भी नाम आना चाहिए आना चाहिए, तो तब से वो नाम आने लगा। तो ये क्रेडिट मैं लेता हूँ कि ये मेरे से शुरू हुआ,
0: म्यूजिशियंस के नाम आने जो है उसकी कोशिश आपने,
1: अरेंजर का
0: बहुत बड़ी बात।
1: वहां से फिर किसी ने सुना कि ये लड़का अच्छा काम करता है, तो किसी ने मेरे को, पहला तो दूरदर्शन मैंने बहुत बजाया
0: जी जी,
1: और वहां तो क्या कुछ नाम नहीं, लेकिन क्या समझो कि यूनुस भाई आए, तो समझो शब्दांश पल्लेकर का कार्यक्रम होता था, पांच गाने हैं, तो आपने दो गाने का किया अरेंजमेंट और तीन गाने का, फिर वो प्रोड्यूसर बोलेगा अरे अप्पा जरा ऐसे करुण टक ना अरेंजमेंट जरा, तो फोकट का अरेंजमेंट करते, अलग तो पैसा नहीं मिलता वो फोकट का, तो ऐसा अरेंजर बन गया था मैं 77 को।
0: अच्छा, एकदम
1: दूरदर्शन का पहला प्रोग्राम मैंने 74 में बजा है वसंत देसाई के साथ।
0: अच्छा, वहां उन्होंने क्या परफॉर्म किया?
1: वो एक शिवराज्यभिषेक हुआ था, 300 शिवराज्यभिषेक 74 में, 6 जून 74
0: जी।
1: तो रायगढ़ पर वसंत देसाई जी ने गाना सादर किया था, उसका रिकॉर्डिंग उधर हुआ था
0: दूरदर्शन,
1: दूरदर्शन तो वो पहला उधर भैया मैंने
0: जी। और उसके बाद आप धीरे धीरे अरेंजर बनते हैं।
1: पहला कैसेट मैंने बजाया होगा जब कैसेट का जमाना आएगा 79-80 को
0: जी,
1: तब से मेरा वो चालू हो गया काम।
0: अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि सुधीर फड़के हो या स्नेहल भाटकर हो या फिर वसंत देसाई हो, यशवंत देव हो, इन सब के साथ आपने काम किया है, तो कुछ यादें हमारे साथ बांटिए।
1: एक तो वसंत देसाई के साथ मैंने अरेंजमेंट का काम कुछ नहीं किया, उनके पास सेबेस्टियन जी
0: वहां पर बजाते थे,
1: लेकिन उनका मैं देख रहा था कि उनका जो पेशेंस था ना
0: जी,
1: बढ़िया पेशेंस था, यानी कि समझो गाना सिखाया और अभी आशा जी और ये छोड़ दो, लेकिन जो स्कूल में हम लोग जाते थे ना सिखाने को, एक सुर एक ताल, एक गाना वो एक लाइन 10 बार 12 बार बोलते थे कि मैं सिखाने को तैयार हूँ तुम सीखने को तैयार हो जाओ, वो कंटालते नहीं थे, वो बहुत पेशेंस था, वो पेशेंस जो चीज है, और वक्त पे जाना।
0: वाह,
1: 9 बजे का रिकॉर्डिंग होता था उस टाइम, वो 9:15 बजे वसंत देसाई जी स्टूडियो में हाजिर थे।
0: वाह,
1: वो एक अच्छा, मुझे ये लगा कि टाइम पे जाना चाहिए, ये दो चीजें वहां से अच्छे मिल गई मुझे। यशवंत देव के पास मैं जब गया, जो उनका पहला अरेंजमेंट का काम मैंने किया, तो उनका एक आदत था कि वो गाने का नोटेशन लिखते थे और वो ताल में 12 बार लिखते थे नोटेशन, तो सब गाने मैंने उस टाइम क्या करता था, मैं थोड़ा सा आग की वजह से मैं उधर लिखता नहीं था, वो कैसेट पे रिकॉर्ड करके लेता था सब गाने, तो उनके गाने मैंने रिकॉर्ड कर लिए, तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट भी दे दी गाने की, अब तुम्हारे लिरिक्स की और उसके नीचे नोटेशन लिखा हुआ
0: जी।
1: तो मैं बोला कि मेरे पास अभी गाने हैं ना रिकॉर्ड किए, तो ये क्यों चाहिए मुझे? तो बोले नहीं, जब तुम समझो कि 4 अंतरे का गाना है, पहला तीसरा इसके ट्यून सेम है, 1-3 और 2-4 ट्यून सेम है, लेकिन ऐसा मत करना कि फर्स्ट अंतरे का जो म्यूजिक बजाएंगे आप वही थर्ड को बजाना, क्योंकि फर्स्ट अंतरे का कंटेंट और थर्ड का कंटेंट अलग हो सकता है। फर्स्ट में हैप्पी होगा तो थर्ड में दुखी भी हो सकता है।
0: लेकिन आमतौर पर लोग यही करते थे कि M1 जो है वो M3 में डालते थे, M2 M4 में डालते थे।
1: हाँ, पहले ऐसा ही करता था, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ऐसा मत करना, स्क्रिप्ट सामने रखो, उसका अर्थ मीनिंग समझा लो, अगर सेम जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर मीनिंग डिफरेंट है तो तुमको दूसरा अगला कुछ करना पड़ेगा।
0: वाह।
1: तो तब से जो मैंने मेरे में सुधारणा की जो एज फार एज पॉसिबल,
0: ये उनकी बदौलत हुआ।
1: हाँ यस, उनका जो एक शब्द प्रदान गायकी यानी शब्दों के हिसाब से उच्चारण होना चाहिए, उनका एक खासियत है यशवंत देव साहब का, उस हिसाब से मेरा शब्द प्रधान म्यूजिक अरेंजमेंट ऐसा हो गया उस टाइम से।
0: क्या बात है, सुधीर फड़के की कोई याद बांटी है?
1: अरे अरे सुधीर फड़के का तो बहुत है, उन्होंने एक ही पिक्चर का हम लोग अरेंजमेंट किया उनका, मैं और सुराज साठे। तो एक गाने के अरेंजमेंट हम लोग कर रहे थे, उनके घर में ही बैठे थे
0: जी,
1: मैं और उनका बेटा श्रीधर
0: जी।
1: तो गाने का हम लोग के हिसाब से अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो गया ऐसा हम लोग का लगा। तो बाबूजी को बोला कि सुनिए उसको पास कर दीजिए, ओके कर दीजिए, या तो उसका फाइनल नोटेशन लिखने में जरा। तो उन्होंने आग बंद करके वो हमारे अरेंजमेंट जो कुछ है सुन ली, बोले बहुत बढ़िया किया है। हमको लगा कि यार क्या शाबाश की मिल गए हम लोग को, लेकिन बाद में बोले इसमें मेरा गाना किधर है?
0: अरे बाप रे,
1: तुम्हारी अरेंजमेंट ऊपर जा रही है मेरे गाने
0: के, गाने के ऊपर चढ़ गई है,
1: चढ़ गई है ना, मेरा गाना गया किधर?
0: अरे अरे अरे,
1: तो मेरा गाना नहीं है, तो ये गाने के लिए ये नहीं चलेंगे, और किसी के गाने को लगाओ आप। इसके लिए अलग टाइप, थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया, ये टाइप करो। तो फिर बाद में हम लोग
0: पूरा काम फिर से किया।
1: हाँ, तो ये मिल गया ना।
0: हाँ।
1: कि बाबा गाने पे चढ़ना नहीं चाहिए,
0: सपोर्टिंग होना चाहिए,
1: सपोर्टिंग चाहिए।
0: क्या बात,
1: तो इतने बड़े आदमी है वो क्या।
0: बल्कि आपने तो श्रीधर फड़के के साथ भी काम किया है।
1: हाँ, उनका ओंकार स्वरूप सुरेश वाडकर ने गाया हुआ,
0: सुपर
1: डुपर हिट
0: एकदम एकदम,
1: तो उसका पूरा अरेंजमेंट मेरी है।
0: क्या बात है, और वो तो बहुत आज भी घर घर में बजता है।
1: और उनका श्रीधर जी का और एक बढ़िया एल्बम आशा जी ने गाया हुआ, ऋतु हिरवा नाम का।
0: जी जी,
1: तो एक्चुअली वो एल्बम का पूरा अरेंजमेंट श्यामराव कामले करने वाले थे।
0: हाँ हाँ,
1: बड़ा अरेंजर तो, लेकिन चार गाने को उन्होंने अरेंजमेंट करके हमको दिल लिख के दिया, उधर भी मैं और सूरज।
0: अरे वाह।
1: क्योंकि अब एक बार मैं भूल गया बोलना, पहला अरेंजमेंट हम लोग ने किया ना जो
0: जी,
1: तो एक साथ किया हम लोग ने उज्जवल सूरज नाम से।
0: अरे वाह वाह,
1: फिर बाद में अलग अलग करने लगे,
0: पर क्योंकि जो आपका मूल नाम है आपको
1: उज्जवल, हाँ मेरा नाम उज्जवल है
0: जी,
1: और उसका सूरज।
0: वाह वाह,
1: तो उज्जवल सूरज नाम से हम लोग ने काफी काम किया,
0: लेकिन कितना सुंदर है उज्जवल सूरज।
1: और ये मौका हम लोग पहला अरेंजमेंट का मौका हमको दिया कवि शांताराम नांदगांवकर, मराठी के जाने माने कवि है
0: जी,
1: शांताराम नांदगांवकर जी।
0: अच्छा।
1: उनका एक कुछ टीवी का काम था जिसमें सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति ऐसे लोग गाने वाले थे, अनुराधा पौडवाल वगैरह।
0: हाँ।
1: उसमें ये गाना इन्होंने भी गाया था, यशोदास ने भी गाया था।
0: वाह।
1: तो वो पहला मौका उन्होंने दिया, तो ऐसा तो काम चलते रहा
0: जी। बल्कि मुझे ये पता है कि आपके नाम पर एक रिकॉर्ड है कि एक ही दिन में आपने चार बड़े आयोजन बजाए।
1: चार बड़े फुल प्रोग्राम यानी कि
0: साढ़े तीन घंटे के
1: यानी पहला में 11 बजे परेल का दामोदर हॉल है।
0: नहीं, लेकिन मुझे इसकी पूरी भूमिका बताइए, ये कैसे हुआ कि एक ही दिन में इतने सारे कार्यक्रम होने लगे?
1: मेरा एक साथी बजाने वाला जो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा बजाता है, रिकॉर्डिंग नहीं बजाता है, अनिल गोसावी नाम, तो मुझे बोलता था आज मैं 3 शो बाजू ले।
0: हाँ।
1: मैं बोला 3 शो कैसा बजा सकता है, रिदम वाला है उसका स्टेमिना क्या होता है, तो मुझे भी कभी मौका मिले
0: जी
1: तो मैं भी बजा लूं। तो एक दिन मौका आ गया कि 11 बजे परेल में, 3 बजे रविंद्र नाट्य मंदिर, अलग अलग प्रोग्राम।
0: हाँ।
1: यानी कि सप्तरंग नाम का प्रोग्राम 11 बजे बजाया।
0: हाँ।
1: 3:30 बजे अशोक हांडे का मंगल गाणी दंगल गाणी नाम का बड़ा
0: बहुत मशहूर। हाँ।
1: फिर 8:30 बजे अरुण दाते और अनुराधा पौंडवाल।
0: हाँ।
1: उनका शुक्र तारा बजाया, और रात को 1:30 बजे वो हमारे पास एक उत्सव होता है साई बाबा का, उधर हिंदोले स्वरांचे नाम का बड़ा प्रोग्राम बजाया
0: एक ही दिन में।
1: हाँ, हाँ, और सबके संगीत संयोजन, 3 प्रोग्राम के संगीत संयोजन मेरे थे।
0: टेंशन नहीं हो रही थी यहाँ से वहां भागना है, ट्रैफिक है ये सब?
1: तो इतने अभी ये 91-92 की बात है
0: जी जी,
1: तब इतनी सारी भीड़ भी नहीं थी वैसे, और साथ में एक म्यूजिशियन की गाड़ी थी जो कॉमन था मेरे साथ तो वो आसान हो गए। तो उस दिन एक दिन में मेरे काम से मैंने 130 गाने बजाए।
0: अरे बाप रे, एक दिन में 130
1: गाने बजाए, और वो विदाउट एनी नोटेशन, वो सब बाहर नोटेशन, क्योंकि मुझे क्या नोटेशन पढ़ने को इतना लंबा का दिखता नहीं है।
0: जी जी,
1: तो वो सब मुझे मेमोराइज करना पड़ता है।
0: ये तो और कमाल की बात है कि इतना सारा आपने सब कुछ आपकी स्मृति में रह गया।
1: एक बार तो मैंने हमारे मराठी में विसुभाऊ भापट नाम के है,
0: जी जी,
1: तो एक ही स्टेज पे मैंने एक दिन में 5 बजे फुल घंटे पर,
0: अरे
1: रविंद्र नाट्य मंदिर में पहला शो सुबह 6:30 बजे, दूसरा 9:30 बजे, तीसरा 3:30 बजे, चौथा 6:30 बजे, और पांचवा रात्र 9:30 बजे।
0: अरे बाप रे,
1: स्टेज पे
0: फुल स्टैमिना कहाँ से लाते हैं आप?
1: तब था ये भी 20-30 बरस पहले के बाद
0: क्या बात,
1: अपने आप को मैं ये देखता था कि मैं बजा सकता हूँ क्या।
0: हाँ, आप चुनौती देते थे?
1: मुझे ही देता तुम, हालांकि फिजिकली थोड़ा सा थकान होती है।
0: जी, हमने सुधीर फड़के जी को याद किया तो उनका एक गाना सुनते हैं,
1: ज्योति कलश। सुनिए,
0: बिल्कुल वही सुनेंगे, ज्योति कलश चलते।

0: अब्बा जी, इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं और आपके काम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो शाहिर साबरे के साथ है।
1: बिल्कुल,
0: उसके बारे में बताएं जरा।
2: वो शाहिर साबरे का लड़का मेरा देवदत्त, वो मेरा फ्रेंड।
0: अच्छा,
2: तो उनके पहले तो कुछ काम मैंने किया था
0: जी,
2: और शाहिर साबरे मेरे पिताजी को अच्छा पहचानते थे।
0: हाँ हाँ,
2: क्योंकि पिताजी के पिक्चर का जो मैंने जिक्र किया ना फकीरा, उसका एक फोक का गाना था
0: जी,
2: देवी का गाना, वो शाहिर जी ने गाया था, साबरे जी ने
0: जी।
2: तो उस टाइम तो उनको मालूम था अप्पा ये लाव रामबाव का लड़का है। तो फिर और मेरी उनका एक बड़ा दूरदर्शन ने प्रोग्राम किया महाराष्ट्र की लोकधारा। तो एक तो प्रोड्यूसर जी थी किरण चित्रे, उसको हम लोग ताई बोलते थे, किरण ताई। तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, साबरे साहब ने, हमने देवदत्त ने भी मेरा नाम सजेस्ट किया अपने पिताजी के पास कि आपको कोई काम देना हो जाएगा अच्छा
0: जी।
2: और तब से उनका बहुत काम किया मैंने और सीखने को खूब मेरा फोक म्यूजिक
0: जी,
2: एक एक जो समझाते थे वो, ये ऐसा है, ये क्यों है, तो ऐसा है, क्यों है, ऐसा है।
0: वाह,
2: तो बहुत सारा मिल गया उधर से।
0: जब फोक म्यूजिक की बात हो रही है तो कोड़ी गीत आपने किए, आनंद चिंदे मिलिंद चिंदे वाले।
2: हाँ, कोड़ी गीत किए, लेकिन वो जो वैसा होकर के जो कोड़ी गीत ज्यादा पॉपुलर हो गए
0: जी,
2: वो मैंने नहीं किए।
0: अच्छा,
2: वो ज्यादा पॉपुलर हो गए, आनंद शिंदे के वगैरह कोड़ी गीत इतने पॉपुलर नहीं हो गए।
0: हाँ,
2: उनके जो पॉपुलर हुए एक गणपति के गाने पॉपुलर हुए
0: जी, तो एक पूरा दौर था।
2: हाँ, क्या हो गया उस टाइम, मुझे कंपनी के 5 कैसेट्स मिलते थे कॉम्प्लीमेंट्री और बहुत कैसेट सब लाया था मैंने, ओंकार स्वरूपा घर में लाया, तो बहिणा भाई है, XYZ।
0: मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप जंबो जेट गा रहे हैं।
2: हाँ,
0: वो क्या है?
2: अशुरा में एक गाना था
0: जी,
2: रेलगाड़ी नाम का।
0: हाँ,
2: अशोक
0: कुमार दादामुनि ने गाया,
2: दादामुनि ने गाया। तो वो सुन के, मेरा एक फ्रेंड है अभी बड़ा पत्रकार है मराठी में, उसका बहुत सारा फॉलोइंग है
0: जी,
2: भाऊ तोरसेकर नाम का, यानी उसके अभी सब्सक्राइबर 9-10 लाख है। हम लोग कॉलेज, वो रूपारेल का लड़का, मैं रोहिया का, लेकिन दोस्ती हो गई। वो गाना रेलगाड़ी सुन के उसको, और तब जंबो जेट आया था नया नया, 67-68 वो जमाने में, तो उसको बस ये हो गया, कुछ लिखा तो अच्छा गाना हो गया वो। तो पहले वो गाता था, फिर वो जब पत्रकार हो गया तो गाना छोड़ दिया वो, और लास्ट नियरली 50-55 ईयर्स वो मेरे

0: रोया मैं वही गाना गाता हूँ।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो वो तो हम सुनेंगे आपसे जब, बल्कि आप तो आशीर्वाद का गाना भी बड़े चाव से गाते हैं, आपको क्यों इस गाने से बहुत लगाव है?
0: इतना अलग टाइप का गाना है वो,
1: वसंत देसाई
0: हाँ
1: है।
0: वसंत देसाई का एक अलग एक्सपेरिमेंट है वो, यानी कि उसके पहले मैंने कैसा जो रैप सुना नहीं था,
1: जी जी
0: ये जो रैप आ गया तो बहुत मजा आएगा सुनने में और
1: अच्छा,
0: बोलने में, वो जो
1: और आपको
0: इतना
1: पूरे याद भी है।
0: याद भी है, लेकिन क्या है एक ब्रीद में बहुत सारे शब्द बोलने पड़ते हैं,
1: हाँ
0: ब्रीदिंग का जो उसको मास्टरी चाहिए,
1: जी, सुनाइए ना प्लीज।
0: अब इतनी ब्रीदिंग मेरी रहेगी तो मालूम नहीं, ट्राई करता हूँ।
1: यस,
0: रेल गाड़ी को चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक, अरे धड़क तो भड़क लोहे की सड़क, धड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहां वहां से यहाँ, पुलाए चाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा दान हरा मैदान, बूढ़ा किसान मंदिर मकान चाय को दुकान, अरे पिलप का दंडी केले पे झंडी, पानी का कुंड पंच का चूर्ण, झोपड़ी झाड़ी खेती वाड़ी, बादल दुआ मोटा कुआ, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल के हाट, हर गांव में मेला भीड़ जमेला, टूटी दीवार तट सवार रेलगाड़ी। ये बहुत लंबा एक
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। अब जम्बो जेट सुनाइए।
0: तो जम्बो जेट का थोड़ा सा मराठी होने से वो थोड़ा सा
1: जी
0: मेरे लिए आसान है, अरे जम्बो जेट स्वयं, जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट, जगलो वसलो पुन्हा भेट, जंबो जेट सोई, अरे घराला धडक दाराला सडक, पकडली गाडीने निघालो तडक, विमानतळावर ठोकतोय तर आणि भारत सोडून काढतोय पळ, उंच आकाशामधले ढग चमकून पाहि सारे जग, भेदून गेले एक विमान पंखावरती होऊन ताण, पंखाला त्या पंखे होते विमानाला शेपूट होते, वायुसागरी तरते बेट, जंबो जेट
1: वाह वाह वाह,
0: छह स्टाम्स है वो उसके,
1: शानदार है ये तो, बड़ा लोकप्रिय हुआ,
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। और का प्रोग्राम हो जाए तो एक बार पुणे में प्रोग्राम था सुरेश वाडकर का,
1: जी जी,
0: तो उनका महोत्सव होता था 3 दिन का,
1: हाँ,
0: और 3 दिन अलग आर्टिस्ट, एक दिन रविंद्र साठे था, दूसरे दिन उत्तरा केळकर, तीसरे दिन सुरेश वाडकर
1: जी,
0: और तीनों में मैं था।
1: हाँ, आप अरेंज कर रहे थे या बजा रहे थे?
0: नहीं बजा रहा था, मैं तब कीबोर्ड बजाता था
1: जी।
0: तो उत्तरा केळकर के साथ बजाने को गया तो वो जो पब्लिक है उन्होंने पहले कहीं सुना था वो गाना मैंने गाया हुआ, तो फरमाइश आ गई, तो कॉम्पेयर बोला ये गाना है फरमाइश, मैं बोला और लोगों के प्रोग्राम में अच्छा नहीं है, एथिक्स के बारे में थोड़ा सा अच्छा नहीं दे, तो मैं बोला नहीं कुछ भी बोल दो मैं नहीं गाऊंगा। दूसरे दिन रविंद्र साठी के प्रोग्राम में फिर फरमाइश आ गई,
1: अरे रे,
0: उस टाइम भी मैंने मना कर दिया। सुरेश वाडकर के प्रोग्राम में
1: हंगामा हो गया,
0: हाँ 2, 5, 10, 15 चिट्ठी, तो सुरेश के पास चिट्ठी दिया वो कॉम्पेयर ने,
1: हाँ हाँ,
0: तो कैसा बोलते अरे अप्या अप्या बोल,
1: वो बहुत मजाकी, हाँ, भी
0: मजाकी
1: है।
0: बिल्कुल अप्या, अरे बाबा काय ते जंबो जे जंबो केवड़ा चिट्ठी आल्या का बाबा तू गा, वो खुद बोला,
1: हाँ।
0: तो मैंने उस टाइम वो गाया था उधर,
1: क्या नजारा होगा वो, वाह,
0: वो खुद खुश हो गया, अरे क्या बात है बोल, तो क्या तेरा दमछा क्या बोले यार भी अच्छी है बोला।
1: मुझे एक बात बताइए कि आपने वो स्वरलिपि वाली जो किताब लिखी है उसके पीछे क्या रीजन था?
0: वो मराठी ऑर्केस्ट्रा बहुत करता था मैंने ना
1: जी,
0: अच्छा अप्पा वड़ावकर एक नाम हो गया उधर,
1: हाँ,
0: स्टेज पे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते थे, क्या कर रहे हैं कुछ पूछते भी थे, वैसा मैं क्लासेस नहीं लेता हूँ, लेकिन जिसको कुछ समझो कि कुछ आया आपको कुछ आया कि क्या फलन है तो उनको समझना एज अ सीनियर, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा कि कुछ नोटेशंस की हम लोग को मालूम नहीं है वो, अभी हर एक को मैं कहा लिख के दूं, तो एक प्रपोजल आएगा क्या पुस्तक ये करने का, और वो मेरे गुरु जी के पास गया, प्रभाकर पंडित जी के पास गया, कि ऐसा ऐसा आपको बोलो ना नोटेशन का बुक ये करते हैं, वो मना कर रहे हैं, तो पंडित जी ने अभी गुरु का ही बोला रे कर दो ना, मतलब मराठी में बोला मास्टर मेरे लिहायला त्रास होतो, नहीं मैं हेल्प करूंगा बोले, तू लिख इनिशियल मैं चेक करता हूँ पूरा, तो ऐसे हो गया 30-35 गाने का कुछ किया था
1: जी।
0: उसमें मैंने एक किया था कि और कुछ गाने हो गए समझो भक्ति गीत भावगीत XYZ, लेकिन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होना चाहिए,
1: हाँ हाँ,
0: उसका नोटेशन भी मैंने उसका

0: ऐड किया था।
1: क्या बात है, सुंदर।
0: वंदे मातरम और जनगण मन।
1: जी, मुझे लगता है आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
0: बिल्कुल।
1: तो बताइए कौन सा गाना सुना जाए, हिंदी?
0: आर डी बर्मन का।
1: हाँ,
0: तो मुझे है ना उनके बहुत सारे गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जो पड़ोसन का अपन बोलेंगे ना, वो
1: एक चतुरनार।
0: हाँ, एक अलग टाइप का गाना है, और दोनों गायक ने इतना अच्छा बढ़िया गाया है ना
1: जी,
0: तो वो सुनेंगे।
1: बिल्कुल सुने।

0: चतुर एक पेर आयना या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत

0: पापा, मैं अब आपसे पूल देशपांडे की याद चाहता हूं। उनके साथ आपने काम किया और एक बड़ी अच्छी याद है आपकी।
1: उनका एक एनसीपीए का प्ले था
0: जी,
1: उन्होंने लिखा हुआ, वामन केंद्रे का उसको डायरेक्शन था और उसका म्यूजिक डायरेक्शन था जाने माने हमारे मराठी के अशोक रानाडे नाम के
0: जी,
1: बहुत ज्ञानी आदमी। और वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजाने के लिए दो ही म्यूजिशियन थे, एक कीबोर्ड और इसमें मैं,
0: हाँ,
1: और रिदम में देवदत्त साबड़े, शायर साबड़े का लड़का
0: जी।
1: तो रिकॉर्डिंग में ऐसा हुआ, फ्लूटिस्ट भी एक्चुअली था,
0: हाँ,
1: लेकिन वो थोड़ा लेट आऊंगा ऐसा बोल के, कुछ रिकॉर्डिंग थी सुबह, तो वो बोले चलो हम लोग इनके पीसेस लेते हैं, ऐसे रिदम का और अप्पा को जो कुछ कुछ है वो लेते हैं। तो हम लोग ने 11 बजे शुरू किया रिकॉर्डिंग वो एनसीपीए में, वो स्टूडियो में, और 1:30 बज गया, हम लोग के कम से कम 12-13 पीस रिकॉर्ड हो गए। और वो अंदर से आवाज आई, चलो अभी थोड़ा लंच करते। अभी ये पहले मुझे मालूम नहीं था कि अंदर पूल देशपांडे बैठे हुए सुन रहे रिकॉर्डिंग पूरा। और जो अंदर से आ गए तो अरे भोरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी के साथ में सामने मैंने 2.5 घंटा बजाया, कैसा क्या बजाया मालूम नहीं। तो आए, वाह अप्पा खूब छान। ऊपर आए, इंस्ट्रूमेंट था मेरा, तो मराठी में बोले, तुमसे है यंत्र हाताड़ू का थोड़ा सा थोड़ा। मैं बोला आपको क्या बोले, थोड़ा सा उनका हाथ मेरे कीबोर्ड के लग गया।
0: वाह।
1: फिर बाद में क्या, लंच के टाइम उसके बाद फिर भी फ्लूटिस्ट आया नहीं
0: जी,
1: तो अशोक जी रानड़े जी रुके थे कि फ्लूटिस्ट आएगा, तो पुल देशपांडे बोले रुके क्यों, बोले आया नहीं फ्लूटिस्ट। आपा बजा सकता है क्या इंस्ट्रूमेंट पे, है हाँ आ सकता है, तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो बजवा लो इससे अच्छा बजा रहे। तो पूरा वो नाटक का पूरा जो कुछ बैकग्राउंड का मेलेडी था वो मैंने बजा था।
0: वाह वाह वाह, कितना अच्छा अनुभव ये।
1: तो और दूसरी एक अच्छी बात है कि उनका जो एक मराठी में जैसे हम लोग पॉडकास्ट बोलते हैं ना, वो उनकी जो कथाई है वो खुद बोलते हैं, उनका बहुत सारे वीडियोस आए, तो उसके पहले कुछ टाइटल ट्यून चाहिए थी। तो हमारा मित्र अभी नहीं है वो, आनंद मोड़क नाम का
0: जी जी,
1: उन्होंने वो ट्यून कंपोज की और वो पूरा म्यूजिक मैंने कीबोर्ड पे बजाया। वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग हुआ, रिहर्सल चालू हुई और पूल देशपांडे अंदर आ गए और मेरे बाजू के कुर्सी में बैठ गए और मेरे को बहुत टेंशन आ गई, इतना बड़ा एक खुद अच्छा हारमोनियम बजाते थे ना
0: जी जी,
1: और बड़े हारमोनियम
0: जी,
1: तो बोले फिर भी हो गया मेरा काम, अच्छा हो गया, उनकी शाबाश की मिल गई, बड़ा आदमी है।
0: वाह वाह क्या बात है। अच्छा आप YouTube पर कुछ वीडियोस जारी करते हैं,
1: हाँ
0: अप्पा पंचिंग अप्पा,
1: हाँ।

0: ये आइडिया कहाँ से आया था और इसमें तो आप तकरीबन शतक बना चुके।
1: हाँ अभी 100th एपिसोड मैंने अब भी डाला, एक 4-8 दिन हो गया अभी।
0: जी तो ये तो सेंचुरी हो गई भाई।
1: हो गई। वो एक्चुअली क्या कोरोना के टाइम क्या हो गया,
0: हाँ।
1: मेरे एक मित्र है प्रशांत ठाकरे नाम का,
0: जी
1: अच्छा म्यूजिशियन है, म्यूजिक कंपोजर है और टेक्नीशियन अच्छा है। तो वो बोला तेरे पास इतना बोलने के लिए, इतना काम किया है, तू ये कर ले ना। मैं बोला इसमें से मेरे को 0% आते है, कुछ मालूम नहीं। तो बोला मैं हूँ नसीर, तू आ मेरे घर में आ, मेरा सेटअप है, तू बोलते जा, बाकी पूरा जो पोस्ट प्रोडक्शन जो कुछ होगा अपलोड करने का भी सब मैं करूंगा।
0: अरे गजब।
1: अरे वो पैसा कितना लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। बोला तेरे को आने जाने में जितना लगेगा, खाने में लगेगा उतना ही, और तेरा पैसा मेरा पैसा कुछ नहीं है।
0: अरे गजब।
1: तो वो चालू हो गया, फिर अभी 100 एपिसोड हो गए मेरे।
0: देखते,
1: और वो
0: देखते।
1: एक योगा योग की बात है कि मेरे माँ का जन्म शताब्दी वर्ष चालू है अभी।
0: हाँ हाँ।
1: तो उसका एक प्रोग्राम मैंने किया था सावरकर हॉल में,
0: जी
1: बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, तो वो एपिसोड मैंने 100th एपिसोड है मेरा।
0: हाँ, वो आपने YouTube पे डाला।
1: हाँ, YouTube पे डाला
0: जी। 100 एपिसोड, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है?
1: रिस्पॉन्स ऐसा अच्छा है, लेकिन व्यू टाइम मेरा बहुत कम है।
0: जी जी।
1: यानी मेरा अभी चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है।
0: अच्छा अच्छा। हाँ, अभी उसका इंतजार है।
1: इंतजार अभी एक्चुअली मेरा क्या है, ये एज ए डॉक्यूमेंटेशन में उसको कर रहा हूँ।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप अलग अलग लोगों को उसमें याद कर रहे हैं,
1: जिसको फायदा हो जाए उसको फायदा हो जाए,
0: कहानियां सुना रहे हैं।
1: हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि बाबा ये गाना अरेंज किया, तो उसके वो अरेंजमेंट के लिए मेरी क्या सोच थी।
0: हाँ अच्छा, अभी मैं आपको एक गाना याद दिला रहा हूँ सुरेश वाडकर के एल्बम का, मन है खुड़े कसे।
1: हाँ, वो देव साहब का एल्बम है, यशवंत देव का। पूरा सोलो है, सुरेश का 8 गाने का सोलो है वो।
0: जी।
1: उसमें एक तो मुझे 3 गाने में वायलिंस, ग्रुप वायलिंस, क्योंकि हाँ। मराठी के इसमें कैसेट के लिए ग्रुप वायलिंस मिलते नहीं है।
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: बजट बढ़ जाता है, 10-12 वायलिंस लगाने पड़ते हैं, नहीं तो इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन इसमें मिल गए, वो काम करने में बहुत मजा आ गया, कोरस का यूज करने को लिए मजा आ गया। एक तो ट्यून्स बहुत अच्छी है देव साहब की, लिरिक्स अच्छे है, जो कभी किया है वो, और सुरेश ने बहुत अच्छा गाया, बहुत
0: लोकप्रिय है।
1: वायलिंस के तीन गाने जो है वो मुझे, तीनों गाने उस पे, एक गाने पे मैंने वीडियो भी बनाया उसमें।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, एक एपिसोड वो गाने पे है।
0: जी। अब मुझे ये बताइए कि इतने सालों से आप संगीत की दुनिया में हैं और हारमोनियम पर आपकी उंगलियां बिजली की फुर्ती से चलती हैं।
1: बचती थी। अभी एज के हिसाब से थोड़ी सी फ्लुएंसी कम हो गई।
0: जी।
1: फिर भी अभी मैं लाइव प्रोग्राम बहुत बजाता हूँ।
0: हाँ।
1: लेकिन पहले क्या, मैं एज ए लीड बजाता था।
0: जी जी।
1: तो अभी थोड़ा सा सपोर्टिव।
0: हाँ।
1: वो हो जाता है थोड़ा सा, अभी फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं ना।
0: जी।
1: कभी अटक जाता है थोड़ा सा।
0: संगीत की दुनिया में जो आधुनिक बदलाव है उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्या सब कुछ बहुत कृत्रिम होता जा रहा है?
1: ये तो होना ही था, क्योंकि सब आर्टिफिशियल है। अभी एनालॉग रिकॉर्डिंग और डिजिटल में वो फर्क आएगा। लेकिन जैसे प्लस है उसके माइनस भी है।
0: जी।
1: अभी जैसे समझो, पहले में जो कैसेट्स किया उस टाइम 10 गाने करने पड़ते थे, क्योंकि C60 का कैसेट होता था तब।
0: हाँ।
1: 60 मिनट का कैसेट, तो कम से कम ये साइड 5 गाना, वो साइड 5 गाना। लेकिन वो एक एक कैसेट हम लोग ने 4-4 दिन में मास्टर दिया है, मास्टर। क्योंकि 2 ट्रैक, पहले तो 1 ट्रैक में रिकॉर्डिंग हुआ तो करता था, फुल ट्रैक रिकॉर्डिंग, फिर 2 ट्रैक हो गए, फिर 4 ट्रैक हो गए। उसी टाइम जो रिकॉर्डिंग के टाइम में बैलेंस होते, 4 ट्रैक जब हो गए तो एक ट्रैक पे रिदम पूरा बैलेंस हो जाता था, एक ट्रैक पे मेलेडी बैलेंस हो जाती थी, तभी एक ट्रैक वॉइस हो जाता था। तो मिक्सिंग को बहुत कम टाइम लगता था।
0: जी जी।
1: अभी ये डिजिटल के हिसाब से क्या करते हैं, एक लाइन है तो उसका ऑप्शन 10 ऑप्शंस हो,
0: बहुत सारा पंच करते हैं।
1: हाँ, फिर बाद में उनको ही पता नहीं चलता है कौन सा अच्छा है। हाथ लगा मेरे को,
0: कोई बात नहीं।
1: तो फिर बाद में म्यूजिक डायरेक्टर ही कंफ्यूज हो जाता है, बाबा इसमें से अच्छा कौन सा है। लेकिन मैंने एक म्यूजिक डायरेक्टर को बोला था, तुम्हें 10 ऑप्शंस लिए क्यों, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया।
0: जी।
1: लेकिन उसमें से एक तो अच्छा है ना।
0: हाँ।
1: तो दूसरे 2 हटा दो ना उसी टाइम।
0: हाँ।

0: हमारी मुख्य थी जब वसंत देसाई गुजर गए
1: जी
0: 75 को, उसके बाद एक बार अन्ना ने, जिनको अन्ना बोलते थे सब इंडस्ट्री में, अन्ना ने उनके जगह काम किया है और ये गाना यानी कुछ अलग लगते है गाना सुनने के बाद, वो इमोशंस अलग हो जाती है, तो वो गाना सुने
1: जरूर। कवि प्रदीप की रचना है, इसे लता जी ने गाया था
0: बिल्कुल,
1: और नेशनल स्टेडियम में जब दिल्ली में ये गाना लाइव हुआ था तो वो एक इतिहास है। अपा, आप विविध भारती की स्टूडियो में आए और आपने अपने जीवन की इतनी सारी यादें हमारे साथ बांटी, नई पीढ़ी को चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
0: दो तीन चीजें हैं, एक तो डेडिकेशन तो होना ही चाहिए, पैसा मिलता है इसलिए काम मत करना,
1: वाह,
0: और काम करते करते पेशेंस चाहिए, टाइम पे आना, जो मैं करते रहा हूँ, अरेंजर हो गए तो उस हिसाब से काम करो, सिंगर हो गए तो मेहनत करनी पड़ेगी अलग तरह से, अपने गुरु को याद करो अच्छी तरह से, और सबको मैं शुभकामना देता हूँ और विविध भारती के सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया है आपने, जो कुछ मैंने बात की है, हिंदी तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है,
1: अरे आपने बहुत अच्छे से बात की है,
0: कोशिश की है और आपने सब करवा लिया मुझसे यू नो यू तो ग्रेट है,
1: बहुत शुक्रिया, थैंक्स।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मराठी फिल्म के जाने माने संगीतकार अप्पा बढ़ावकर से यूनुस खान की ये बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बन सारे अपन नरब दशा पड़ बेचारे।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: तो भाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहें मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
3: इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने मिर्जा गालिब का ये कलाम सुना। सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। शोभा जोशी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं मिर्जा गालिब की एक और रचना, संगीत शांतनु मोहित्रा का।

शोभा जोशी की आवाज में अभी आपने ये मिर्जा गालिब की रचना सुनी। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज, गीत गुलजार साहब का और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर
0: एक उत्तम जीवन,
2: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी,
3: दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती है।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ,
5: चिट्ठी ना कोई संदेह,
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

आइए सुनते हैं सादिक निजामी का ये नातिया कलाम, आवाज़ें अजीज नाजा, खवाल और उनकी हमनवा की, धुन मास्टर इब्राहिम की है।

मोहम्मद हुई है न होगी मिसाले मोहम्मद। सुनो ऐ मुहिब्बा

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं नौशाब साहब का संगीत, गैफ भोपाली की रचना, गायिका है परवीन सुल्ताना और फिल्म का नाम पाकीज़ा। हम आपको सुनवा रहे हैं उनकी गाई ये ठुमरी।

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए संत सूरदास का ये भक्तिपद, स्वर घनश्याम वासवानी का है।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बहुत सारे अपन नरब दशा पड़ बेचा
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: भाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाँ में ले के टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो
1: आ रहे हैं विविध भारती पर
2: आप चाहे कुछ भी कहें मामा श्री लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर
3: सूरदास के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं संत मीराबाई का भक्ति पद इसे आवाज दी है डॉक्टर मलिका बनर्जी ने

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ।
0: और
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम की अगली पेशकश जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं अख्तर नाजमी का ये कलाम।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यूसुफ आजाद कव्वाल और उनकी हमनवा की गाई अभी आपने ये कव्वाली सुनी। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर करके ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा भी हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के

0: प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी, इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज यादों की महफिल में हम सुनेंगे उन्हीं गीतों को जिनमें है जिया यानी दिल न लगने की कसक, दिल की बेचैनी और किसी अपने की कमी का एक भरपूर एहसास। तो आइए यादों की इस महफिल में आज दिल की उस बेचैनी को गीतों के साथ महसूस करते हैं। ठीक है, यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, स्वर लता मंगेशकर का। फिल्म का नाम है बुड्ढा मिल गया। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रही हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घर का ये गीत, गीतकार गुलजार साहब और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म का नाम था आनंद। इस गीत को गुलजार साहब ने लिखा और धुन बनाई सलील चौधरी ने।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों, यादों की महफिल कार्यक्रम में आज की जो महफिल हमने सजाई है उन्हीं गीतों के नाम है जिनमें है इंतजार, तन्हाई और बेचैन दिल की आवाज। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम लाल किला। गीत को बहादुर शाह जफर ने लिखा और धुन SN त्रिपाठी की है।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जेल यात्रा का गीत। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन।
1: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बुन सारे अपन नरब दशा पड़ विचार।
2: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
1: दुबई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
2: आ रहे हैं विविध भारती पर।
3: आप चाहे कुछ भी कहें मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
2: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत निखिल विनय के संगीत निर्देशन में फैज अनवर का लिखा हुआ, गायिका चित्रा के एस और फिल्म का नाम है तुम बिन।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था छोटी सी मुलाकात। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: और अब विशाल मिश्रा का संगीत, अक्षय त्रिपाठी के बोल, फिल्म का नाम है नोटबुक, गाने वाले कलाकार विशाल मिश्रा और एसिस कॉर्प।

यादों की महफिल कार्यक्रम की यह है अगली पेशकश। रविंद्र जैन का संगीत, आनंद पक्षी के बोल, आवाज भूपेंद्र की, फिल्म का नाम दासी।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घूंघट का गीत, शब्दकार शकील बदायूनी और संगीत रवि का।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मिलन का गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। इसे प्रेम धवन ने लिखा है और धुन बनाई है हंसराज बहल ने।

दोस्तों यादों की महफिल कार्यक्रम में ये थे कुछ ऐसे नगमे जिनमें दिल की वही बेचैनी सुनाई दी जब किसी के बिना कहीं हमारा मन नहीं लगता, किसी काम में जी नहीं लगता और बस उसकी याद साथ चलती है। तो चलिए इन्हीं गीतों के साथ आज की ये महफिल यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और एहसास, किसी और कहानी और ऐसे ही कुछ खास नगमों के साथ। और इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अपने अपने शहर में खुश हैं ना, या कहीं और गए हैं घूमने किसी और जगह? बताइएगा जरूर। हाँ, ये बात मैं क्यों पूछ रही हूँ, आप समझ गए होंगे। जो लोग फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्हें तो हमारी बात समझ में आ गई है, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज पर नहीं है वो सोच रहे होंगे कि भई हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि आप अपने शहर में खुश हैं या नहीं। वैसे तो हम अपने शहर में खुश रहते ही हैं, लेकिन कभी कभी हम नहीं भी रहते, ये तो जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन आज हम जो ये सुरीला सफर है उसमें एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां बहुत सारे शहर, बहुत सारी जगह हमें देखने को मिलने वाली है। आप सभी जानते हैं कि हर शहर की, हर जगह की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक धड़कन होती है, अपनी बोली, अपना रंग, अपना खान पान, अपना मौसम और अपनी एक कहानी होती है। और जब यही शहर या स्थान फिल्मी गीतों में उतरते हैं तो ये संगीत हमें उन गलियों में, उन चौबारों में, उन जगहों तक ले जाता है जिन्हें शायद हमने

भी देखा भी नहीं होता है ना। तो आइए सुरों के साथ आज निकल पड़ते हैं शहर दर शहर, गीत दर गीत। तो अब आप समझ गए हैं कि आज हम क्या लेकर आए हैं। चलिए आज की इबारत पढ़ देते हैं तो हमारे वो श्रोता जो फेसबुक पेज पर नहीं है वो समझ जाएंगे कि आज हम कहां जा रहे हैं। देखिए सुरीला सफर में आज सफर सिर्फ गीतों का नहीं है, शहरों और जगहों का भी है। तो आज जरा इन जगहों की भी सुनते हैं, कौन किसी अपने यहाँ बुला रहा है। आज पता है ये शहर ये जगह आपस में बात कर रहे हैं, क्या सुनिए आप भी। अरे सुनिए इतनी दूर क्यों खड़े हैं, आइए ना मेरे बीकानेर। कभी मेरी गलियों की रौनक देखिए, कभी मेरी हवाओं की गर्माहट को महसूस कीजिए। बीकानेर भाई अपनी अपनी जगह सब सही है, लेकिन रंग और शान देखनी हो तो मेरे जयपुर आइए। मेरी गलियों में घूमकर मेरे रंग देखिए और वो जयपुर की। आखिर गीतों में मेरा नाम यूं ही तो नहीं लिया जाता। तुम दोनों की बातें सुनकर तो मन हुआ कि मैं भी कुछ कहूँ। आइए कभी मेरी वादियों में बर्फ से ढकी पहाड़ियां, झीलें, ठंडी हवाएं। मैं तो गीतों में भी कहती हूँ कश्मीर की कली हूँ मैं। मुझे देखने के लिए बस दिल में थोड़ा सा मौसम होना चाहिए। अरे भैया इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, कभी बनारस भी आइए, मेरी गलियों में घूमकर देखिए, गंगा किनारे बैठिए और जाते जाते आहा एक पान तो खाते जाइए। अगर मेरे यहाँ आए और बनारस वाला पान नहीं खाया तो सफर अधूरा ही समझिए। और मेरा क्या, मेरे बाजार में किसी का झुमका भी गिरा था, याद है या भूल गए। भाई तुम्हारे झुमके की बात चली तो मुझे भी याद आया कि ताजमहल की मोहब्बत को देखे बिना आगरा से लौटना मत। हुजूर आप सबने बुला लिया तो मुझे कैसे भूल गई। कभी लखनऊ आइए, तहजीब से मिलिए, अदब से मिलिए। यहाँ शहर सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। दिल्ली कहे मेरे घाघरे की बात ही कुछ निराली है, हर अदा मेरी मतवाली है। और जनाब इतना सफर जब कर ही लिया है तय तो मेरे पास भी आइए। समंदर है, सपने हैं, रफ्तार है, और मैं तो बरसों से कहता आया हूँ ये है बॉम्बे मेरी जान। और तभी सब एक साथ बोल पड़ते हैं तो फिर तय रहा, अगली बार जब कोई गीत बजे और उसमें किसी शहर या जगह का नाम सुनाई दे तो सिर्फ गीत मत सुनिएगा, उस शहर की उस जगह की आवाज भी सुनिएगा, क्योंकि इन गीतों ने हमारी गलियों, बाजारों, रंगों, खुशबू और यादों को भी सभी की जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बना दिया है। तो समझ आई हमारी आज की इबारत। तो चलिए घूमने निकलते हैं इन्हीं शहरों की गलियों में।

जी तो हमने शुरुआत की है बीकानेर से। कभी गए आप इस शहर में? बताइएगा अगर आप बीकानेर गए हैं तो आपको कैसे लगी वहाँ की आबो हवा, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन। और ये भी बताइएगा कि बीकानेर का नाम और किन किन गीतों में आया है, है ना? एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बीकानेर में पला बड़ा हूँ। 1991 के अगस्त माह में बीकानेर आया तो यहाँ के लोगों की सादगी और स्नेह व्यवहार देखकर कतई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने घर से 250 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। सफर आगे बढ़ा मगर रेडियो का साथ बराबर बना रहा। कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। आकाशवाणी बीकानेर को अपने ट्रांजिस्टर सेट पर सुनते सुनते कब मेडिकल की पढ़ाई यानी MBBS पूरी हुई और PG भी हो गई पता ही नहीं चला। आकाशवाणी बीकानेर पर सन 2000 में जब पहली बार अपनी मौलिक क्षणिकाएं पढ़ी तो मेरा मन कितना पुलकित हुआ था यहाँ बता पाना बेहद मुश्किल है। इस शहर की सेंट्रल लाइब्रेरी में टाउन हॉल में अक्सर जाना होता था। आज भी जब उधर से गुजरता हूँ तो गला रुंध सा जाता है। आज सफल हूँ, लोगों की सेवा चर्या में खूब व्यस्त रहता हूँ, गाड़ी बंगला सब कुछ है, मगर मन के किसी कोने में बीकानेर से दूर जाने की कसक आज भी है। आगे आप लिखते हैं कि यहाँ के रसगुल्लों, भुजिया, नमकीन के अलावा मेरी जिंदगी में बीकानेर का बहुत महत्व है। और आपने भी ये गाना सुनना पसंद किया है जो अभी अभी हमने आपको सुनवाया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बीकानेर में रहते हैं और आपने अपने शहर के बारे में हमें जानकारी दी है और ये बताया है कि अपना शहर कोई नहीं भूल पाता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम आपके साथ आपके शहर बीकानेर के साथ साथ शहरों की कई शहरों की सैर करने वाले हैं। बीकानेर की हवाओं में जहाँ राजस्थान की गर्मजोशी महसूस होती है, वहीं जयपुर के रंगों में राजसी विरासत झलकती है। बनारस की गलियां जीवन का दर्शन कराती हैं तो लखनऊ की तहजीब मन मोह लेती है। आगरा का ताज मोहब्बत की कहानी कहता है, मुंबई तो सपनों की नगरी है ही, वहीं कश्मीर की वादियां हमें प्रकृति की सैर कराती हैं। यात्राओं से हम अपने घर लौट आते हैं लेकिन जब कभी किसी गीत में उसी शहर का नाम सुनाई देता है तो हम फिर से उस शहर की यादों में खो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी गीतों में शहरों के नाम सुनकर सबसे ज्यादा खुश उन शहरों के लोग होते हैं जैसे बरेली, बनारस, जयपुर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कश्मीर, आगरा, चेन्नई, जयपुर, भोपाल से लेकर लुधियाना तक का नाम हमने फिल्मी गीतों में सुना है। ज्यादातर कहानी के मुताबिक गीतकार अपने गीतों में शहरों के नाम इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि बात यह है कि ये गीत बहुत हिट भी हुए हैं। एक श्रोता ने कहा है कि भारतीय सिनेमा यानी बॉलीवुड और संगीत का रिश्ता सदियों पुराना है। फिल्मों में गाने केवल कहानी को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं होते बल्कि वे दर्शकों की भावनाओं को व्यक्त करने का एक सशक्त जरिया भी हैं। हिंदी सिनेमा की एक बेहद दिलचस्प और लोकप्रिय परंपरा रही है गानों में शहरों के नामों का इस्तेमाल। कभी किसी शहर की संस्कृति को दर्शाने के लिए तो कभी वहाँ के बदलते स्वरूप या इश्क को बयां करने के लिए गीतकारों ने शहरों को अपने शब्दों में बड़ी खूबसूरती के साथ पिरोया है। बहुत सुंदर विचार हमारे श्रोता लिख रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद पक्षी का लिखा गीत सुना था। आवाज लता मंगेशकर की थी और फिल्म का नाम था राजा और रंग। हमारे दो सवाल तो आने ही वाले हैं लेकिन उससे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बीकानेर का नाम और किन किन गीतों में सुनाई देता है, बताइएगा फटाफट। तो चलिए थोड़ा सा आगे निकलते हैं, बीकानेर से थोड़ा आगे चलते हैं और वहां आता है क्या, जयपुर। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है गहरी चाल।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भारत देश का हर शहर निराला और प्यारा है, किसका नाम ले किसका नहीं। वैसे तो हम अवध क्षेत्र के निवासी हैं, पर आत्मिक रूप से तो हम राजस्थान प्रांत से ही जुड़े हैं। राजस्थान के हर शहर की बात ही अलग है। केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, क्या बात है। आपने तो बीकानेर की मांड गाय की याद दिलवा दी। जो मांड गाय का पद्मश्री प्राप्त अल्लाह जलाईबाई ने ये रचना गाई थी, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। कभी सुनिएगा इस रचना को और बताइएगा।

कैसा लगा आपको ये बहुत ही खूबसूरत लोकगीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भुजिया के लिए बेहद मशहूर है बीकानेर और बीकानेर भुजिया शहर की वैश्विक पहचान बन गई है, मैं भी इसके स्वाद का दीवाना हूँ। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बीकानेर नहीं गया हूँ अभी तक। और एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान का मुख्य शिक्षा निदेशालय बीकानेर में है, सर्विस के लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले 1990 में मैं बीकानेर पहली बार गई थी, क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बीकानेर के रास्ते जैसलमेर गया हूँ और तनोट बॉर्डर भी घूमा हूँ, ऊंट की सवारी और जीप सवारी भी किया हूँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह फिर से आज का ही कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत बन पड़ेगा जब हम बहुत सारे शहरों के रास्ते न जाने कहां कहां घूमने निकल पड़ेंगे, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो सुरीले सफर के गीतों के बाजार की रौनक खींच लाई हमें और हम आज इस खास कार्यक्रम का लुत्फ भी उठाने वाले हैं। तो भाई हमने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा था कि बीकानेर से जुड़ा और कौन सा गीत आपको याद आता है जहां पर बीकानेर का नाम लिया गया है। और वहीं अब हम आपसे एक दूसरा सवाल ये भी छोटा सा पूछेंगे कि ऐसा कौन सा गीत है जिसमें जयपुर का नाम और आया है इस गीत के अलावा भी। तो ये तो थे हमारे छोटे छोटे सवाल जो हम गीतों के बीच में आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन हमारे दो सवाल जो हम हर बार आपसे पूछते हैं वो अब आपके सामने हम रख रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि क्या आपके शहर का नाम किसी फिल्मी गीत में आता है, बताइएगा। अगर आता है तो कौन सा गीत है वो, उसका जिक्र भी कीजिएगा। और हमारा दूसरा सवाल यह है कि उस जगह के बारे में बताइए जो आपको बेहद पसंद है, या आप किसी खास जगह घूमने जाना चाहते हैं, आगे प्लान कर रहे हैं कि वहां जाएंगे और उस खास जगह को देखेंगे, या फिर कोई एक शहर जो आपको बेहद पसंद है उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ एक शहर, एक जगह का नाम, एक गीत, बस इतना ही, ताकि हम बहुत सारे श्रोताओं को शामिल कर सकें। आप कहें तो सवाल एक बार फिर से दोहरा दें, आप अपने उस शहर का नाम बताइए या उस गीत का जिक्र कीजिए जिसमें आपके शहर का नाम आता है, कौन सा है वो गीत। अगर नहीं आता है तो उदास मत होइए, बता दीजिएगा नहीं आता। और वहीं दूसरा सवाल यह है कि उस जगह के बारे में बताइए जो आपको बेहद पसंद है, या आप जाने वाले हैं या जाकर आ गए हैं, या कोई खास शहर जो आपको बेहद पसंद आता है या आप जिसे बहुत मिस करते हैं, या हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि बाकी का जीवन उस खास शहर में बिताएंगे। तो चलिए निकल पड़ते हैं किसी एक और जगह। इस गीत में संगीत है शंकर जयकिशन का, गीत हसरत जयपुरी का है, स्वर लता मंगेशकर का है और ये फिल्म है जंगली।

हमारे एक श्रोता ने बताया है कि आपने पूछा कि जयपुर जिस गाने में और आता हूँ कौन सा गाना है। बिल्कुल सही लिखा आपने, जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले।

0: एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे सपनों का शहर है मुंबई नगरिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपके साथ भारत दर्शन हो जाएंगे, हम कोलकाता में रहते हैं पर हावड़ा ब्रिज नामक मूवी बनी है। बिल्कुल बनी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है, दिल्ली की छलांग लगा के सीधे आप जयपुर से कश्मीर पहुंच गए। अरे दिल्ली वालों का दिल न तोड़े। हम किसी का भी दिल नहीं तोड़ते हुजूर, लेकिन हाँ अभी आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा कि कब आपके शहर में हम आएंगे या कब कहाँ हम पहुंचेंगे, ये तो गीतों के माध्यम से ही पता चलेगा ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जयपुर वो शहर है जहां बार बार जाने का मन करता है और संजोग से हम वहां पहुंच भी जाते हैं। जयपुर के ऐतिहासिक स्थल हवा महल और आमेर का किला बार बार देखने जाती हूं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना हमारा शहर है। अच्छा क्या बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आगामी 26 सितंबर से 28 नवंबर तक मैं प्रयागराज, वाराणसी और बोधगया की यात्रा पर जाऊंगा। बहुत सुंदर, आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय हो, ऐसा हम आपसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नहीं आता मेरे शहर ग्वालियर का नाम किसी भी गीत में, लेकिन फिल्मों की शूटिंग यहाँ बहुत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप खंडवा और कोलकाता के नाम लीजिए, आप पूरे भारतवर्ष घूम लिए, जितना सस्ता कोलकाता जमशेदपुर में भोजन मिलता है किसी शहर में नहीं मिलता। मेरे जमशेदपुर में भारत के हर तरह का वहाँ पर भोजन मिलता है। तो हम आएंगे ना आपके शहर, बिल्कुल आएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने बचपन के शहर मुंबई और मेरी कर्म भूमि अजमेर की खासियत बताना चाहूंगा। अजमेर धार्मिक, ऐतिहासिक और शिक्षा के प्रसिद्ध स्कूल और कॉलेज हैं, धार्मिक सौहार्द की नगरी है, पुष्कर की विश्व प्रसिद्ध, संसार का एकमात्र बहुत ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, तीर्थस्थल है, ख्वाजा साहब की दरगाह है, राजस्थान की सबसे बड़े संत की चर्च है और बहुत बड़ा ऐतिहासिक शहर है जहाँ खाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कड़ी कचौड़ी मिलती है और कड़ी का ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा, सोन हलवा मिलता है। और मुंबई मेरी जान है, लाल बाग चा राजा गणपति बप्पा के दर्शन अद्भुत लगते हैं और मुंबई के लिए जितना कहा जाए बहुत कम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो बड़ा रोचक विषय है, हम कहीं भी रहें अपने नेटिव प्लेस को कभी नहीं भूलते। यूं तो हिंदी फिल्मी गीतों में बिहार की राजधानी पटना का जिक्र शायद ही कहीं आया हो, लेकिन एक गाना जरूर मेरे जहन में आता है जहां नायिका अपने सजना को ढूंढते ढूंढते पटना पहुंच जाती है। उम्मीद है आप समझ गई होंगी, जी हाँ, बंबई से गई पूना। वही एक श्रोता ने लिखा है कि अक्सर महसूस होता है कि हम जिस शहर में रहते हैं कुछ समय बाद वो शहर हमें अपना सा लगता है। जितने शहर उतने शहर की खासियत, उतने ही उस शहर के स्वाद। यहाँ स्वाद का मतलब खाने से होकर भी खाने से नहीं है, दरअसल उस शहर की हवा में, मिट्टी में, लोगों में एक अलग ही स्वाद, एक अलग ही नजरिया देखने को मिलता है। जीवन के सबसे गहरे सत्य हम कहीं और से नहीं, अपने शहर में रहने वाले लोगों से पाते हैं और वही सच मनुष्य को परिपक्व भी करते हैं। हम कहीं भी जाएं, किसी भी शहर में अपने शहर को लिए ही जाते हैं और जब लौटते हैं तो हमारा अपना शहर बाहें पसारे हमारे स्वागत के लिए तत्पर खड़ा मिलता है। बहुत सुंदर। तो चलिए, बात चली थी स्वाद की, तो फिर ये स्वाद तो हम कभी नहीं भूलते हैं, यानी पान, है ना। तो चलिए, किशोर कुमार की आवाज में फिल्म डॉन का ये गीत सुनते हैं और पहुंच जाते हैं कहां, बनारस। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी, और हां हमारे सवालों का जवाब भी देते जाइए।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

छोरा गंगा इना

0: हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि जी हां, हमारे जबलपुर का शहर का नाम भी एक गीत में आता है, फिल्म जाने मन इलाहाबाद में पैदा हुई में जबलपुर में पली। हां बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल्ली के लिए गीत आना भी बाकी है। अच्छा बताइए, दिल्ली के लिए कौन सा गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए, जरा सोचिएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म है हम है राही प्यार के, बंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। ये गाना इन्हें पसंद है और इनके शहर का नाम इसमें आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में घूमने का मन है मेरा। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं लखनऊ की हूँ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और ऐतिहासिक नवाबों का शहर है। यहाँ का चिकन वर्क देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। भूल भुलैया बड़ा, इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा आदि बहुत प्रसिद्ध जगह है। वहीं एक श्रोता लिखती है कि नहीं, मेरे शहर का नाम किसी भी गीत में नहीं आता। हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि एक बात तो बताना भूल ही गई, मेरे शहर में भी मशहूर फिल्म बंदिनी मेरे भागलपुर में ही इसकी शूटिंग हुई थी। मैं तो लगभग सारे शहरों की सैर, हर एक जगह की कुछ ना कुछ खासियत करके लौटी हूँ। जैसे बनारस की चाट भी जो है, और लस्सी और पान बेहद पसंद आता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बॉलीवुड में कई बार चीजें संयोग से हिट हो जाती हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फिल्में मिलने, फेमस होने और यहाँ तक कि फिल्म में होने वाली तमाम बातों से उनके किस्से जुड़े होते हैं। और ऐसा ही एक किस्सा अमिताभ बच्चन की सबसे फेमस फिल्म डॉन का है, जो अपने समय की बहुत ही क्लासिक फिल्म है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि न जाने आज आपका प्रवाह किन किन शहरों से गुजरते हुए समुद्र में मिलेगा। तो आप सुनिए ना कार्यक्रम, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से होते हुए हम अंततः मुंबई पहुंच जाएंगे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कभी गांवों की भी चर्चा कीजिएगा, आपके तमाम श्रोता गांवों में बसते हैं और विविध भारती को बहुत समय से पसंद भी करते आए हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने। और हर बार हम एक नई थीम पर काम करने का विचार रखते हैं, ताकि हमारे श्रोताओं को हर थीम पसंद आए, और ऐसा ही प्रयास आगे भी होगा। आप ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों सोचते हैं कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आशा और विश्वास रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप में से किसी का झुमका तो नहीं गिरा था यहाँ?
1: झुमका गिरा

0: झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो चलिए बरेली की सैर हो गई है। आशा भोसले की आवाज थी, फिल्म का नाम था मेरा साया, राजा मेहदी अली खान की बोल थी और मदन मोहन की धुन थी। तो हमारे सवालों के जवाब हमारे श्रोता लगातार हमें दे रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ साथ आप भी इस यात्रा पर निकल चुके हैं। तो एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लग रहा है और मैं तो सबसे खतरनाक शहर से हूं जहां से अजय देवगन अभिनीत प्रकाश झा निर्देशित फिल्म गंगा जल बनी थी, भागलपुर से, और अभी पुणे में हूं, यानी मुंबई से गई पुणे, पुणे से गई दिल्ली। अच्छा, वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मैं और मेरी पत्नी छत्रपति नगर में से 600 किलोमीटर दूर तेलंगाना राज्य को हैदराबाद शहर में बेटी और जमाई सा के यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, हमारा सवाल था कि आप कहीं बाहर हैं शहर से तो बताइए। बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि आप अपने घर से कहीं बाहर बेटी के घर गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि हम पान नहीं कुछ और खिलाएंगे, पोहा जलेबी और समोसा खिलाएंगे और अपने घर का खाना भी, बस आपको आना होगा और अंत में हमें पान भी खिला दीजिएगा ना। आपके हाथ का बना खाना तो हम जरूर खाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर में बजने वाले गीतों में देश के विभिन्न शहरों के नाम शामिल हैं। वैसे तो इस प्रोग्राम में प्रादेशिक फिल्मी गीत शामिल नहीं हुआ करते, फिर भी साल 1963 में आई गुजराती फिल्म अखंड सौभाग्यवती की एक कॉमेडी गीत का उल्लेख कर रहा हूँ जो आगा और अभिनेत्री शम्मी जी पर फिल्माया गया था और आवासी कमल बारोट और मन्ना डे जी की। इस गीत में गुजरात के कुछ शहर के नाम शामिल थे। गीत के शब्द में हीरोइन कहती है झट जाओ चंदन हार लावो घूंघट नहीं खोलू, हीरो कहते हैं नाना ना नखरा बदा, नाना ना सो नाद तू मांगवानू नहीं मुके सुमने मुकविश अहमदाबाद। जवाब में हीरोइन कहती है वडोदरे लावो लऊ न करूं सूरत मालेर हार चढ़ावी डाकमा। अरे वाह क्या बात है। और इसके जवाब में हीरो बोलता है कि भावनगर भागी जईश रखड़ीश हूँ राजकोट पण तारी साथे नहीं रहूं मने मंगाविश तू लोटरी। और इस तरह से आप बताते हैं कि इस गीत में गुजरात शहर का नाम आता है। बहुत सुंदर, आपने बहुत गहराई से इस गीत को ढूंढा है और हमें अवगत कराया है इस नए गीत से। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब और रोचक विषय है, आज हम ऐसे शहरों का आनंद ले रहे हैं जहां कहीं उठकर जाने का मन ही नहीं कर रहा है घर में और उस पर सभी श्रोताओं के दिलचस्प संदेशों से कार्यक्रम में चार चांद लग जा रहे हैं, हमारी जानकारी में भी इजाफा होता है। सच मानिए बहुत शानदार माहौल बनता है, मन खुश हो जाता है और बाकी का दिन बड़े अच्छे से बीतता है, बहुत बढ़िया, और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम सुनने का बहुत मन करता है और आज भारत के उन कोनों की हम सैर कर रहे हैं जहां की हवाओं में ही रोमांस और खूबसूरती और यादों की मधुर धुनें घुली हुई हैं। सभी सहयात्री अच्छी तरह से तैयारी कर लें क्योंकि आज हमारा सफर भारत के सबसे बेहतरीन और रोमांटिक डेस्टिनेशन पर चल रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने। तो अब चलते हैं कहां, सुनिए इस गीत में, बताइएगा किस ओर ले जाता है ये गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
0: आगरा के लिए हम ये गीत नहीं लेकर आए हैं भाई, दिल्ली वालों के लिए लेकर आए हैं। अभी हमारे श्रोता ने कहा कि अरे आप तो भूल ही गई और आगे निकल गई। चलिए सुनते हैं इस गीत में, और प्रीतम का संगीत है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं, रेखा भारद्वाज विशाल ददलानी की आवाज है, फिल्म का नाम ये जवानी है दीवानी।

बैकिंग न्यूज़ हर मेरा साथ रहा है, बहुत आज से लेके दिल।

हमारी श्रोता ने कहा है कि हमारा भारत देश इतना विशाल और महान है, जहां अनेकों तीर्थ स्थल और दर्शनीय स्थल हैं, कि उन सबके दर्शन करने के लिए एक जन्म तो कम ही पड़ेगा, मालूम नहीं कितने जन्म लेने होंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि काम करते वक्त ये प्रोग्राम सुनते हैं आज, क्योंकि मेरे राजे का जो गाना है वह बहुत प्रसिद्ध है। मैं बरेली यूपी से हूँ और वह जो गाना मुझे खाने की बताने की जरूरत नहीं है, इतना प्रसिद्ध है। आपने खाने लिखा है लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए ताकि हमें भी पढ़ने में दिक्कत न हो। और आपने लिख भी दिया है कि मेरा साया फिल्म का जो गीत आपने सुनवाया था वहीं से हैं आप। और वैसे तो मैं महाराष्ट्र मुंबई में जन्मी पली बड़ी हूँ और मुझे मुंबई शहर बहुत प्यारा लगता है और गाँव तो अपना है ही। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं विदेश में भी कई जगह घूमी हूं और आजकल मैं अपनी बेटी के घर बर्लिन में हूं और जर्मनी के कई शहर में भी घूमी हूं। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म पाप और पुण्य में जोधपुर का नाम आता है, जो मावे की कचौरी और मिर्ची बड़े के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, जब मैंने पूछा था कि कहीं आपका झुमका तो नहीं गिरा, और उन्होंने लिखा है कि नहीं, मेरा झुमका तो सही सलामत है। अरे, स्त्रियों को, महिलाओं को, नारियों को अपने झुमके की बहुत चिंता रहती है कि कहीं गिर तो नहीं गया, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि मैं बरेली से हूँ, मेरा बरेली में झुमका गिरा रहे, बरेली के बाजार में ये गीत बहुत मशहूर है। वहीं एक श्रोता लिखा है कि मेरा शहर बड़ौदा, जिसे हम बड़ौदरा, जिसे गुजरात की सांस्कृतिक नगरी और कला नगरी भी कहा जाता है, अपने समृद्ध इतिहास, भव्य वास्तुकला और लाजवाब खान पान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आपने बहुत बड़े तरीके से अपनी बात कही, लेकिन हमने अपने आपके शहर का जिक्र कर दिया है। और अब हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपने कहा कि जो गीत अभी हमने सुनवाया उसमें दिल्ली का जिक्र था, ये बताइए मुझे कि दिल्ली से जुड़ी और हिंदी फिल्मों के नाम कौन कौन से हैं, है ना। जैसे दिल्ली 6, दिल्ली 6 फिल्म है, ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो दिल्ली से जुड़ी हैं, तो उन हिंदी फिल्मों के नाम हमें बताइए। और तब तक हम सैर करते हैं लखनऊ की। नौशाद साहब की धुन, शकील बदायूं के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज, और ये फिल्म है पालकी। कभी आप गई लखनऊ?

तो कैसी लगी आपको लखनऊ की सैर? बताइएगा, हालांकि वक्त बहुत कम है और इतनी टिप्पणियां, इतने विचार हमें मिले हैं कि लगता है कैसे सबको पढ़ें। बहुत मन करता है पढ़ने का, लेकिन समय सीमा को हम लाग नहीं सकते। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्य पद्य मई इबारत की इबादत से ये बात सामने आती है कि आज हम लोग अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही नहीं, बल्कि मानसिक मनोरंजन हेतु भी देशाटन पर गीतों के माध्यम से सुरीला सफर करने वाले हैं। और इस दृष्टिकोण से कार्यक्रम का यह वास्तविक नाम आज भली भांति चरितार्थ होगा, जिसके फलस्वरूप हम शहरों में ही नहीं अभी तो पहाड़ की भी सैर कर लेंगे। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं शादी के बाद कानपुर आई। साउथ के बहुत से शहर जैसे बेंगलोर, मद्रास, मैसूर, ऊटी, कोडई कैनाल आदि बहुत से शहर इन्होंने देखे हैं। क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई ही देखने की और विविध भारती में आने की बहुत अभी ख्वाहिश बाकी है। और भी आपने लिखा है कि दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, बेंगलुरु, पुणे देख चुका हूँ, कोलकाता में 8 साल रह भी चुका हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे इंदौर शहर का नाम भले ही फिल्म में कम आता हो, पर यहाँ जो आता है वो यहीं का हो जाता है। क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि मैं तो बहुत छोटे शहर पोरबंदर में रहती हूँ, पर इसका नाम बहुत बड़ी हस्ती से जुड़ा है। जी हाँ, समुद्र के किनारे बसा ये ऐतिहासिक शहर महात्मा गांधी का जन्म स्थान है और यही एक कारण काफी है। लोगों को यहाँ आने के लिए दूसरा शहर से समुद्र काफी नजदीक होने के कारण कभी भी बीच का आप आनंद ले सकते हैं, लुत्फ ले सकते हैं। खाने में यहाँ की खाजली फेमस है, जिसका स्वाद खाजा से मिलता जुलता है। बहुत सुंदर, आपने तो खाने की याद दिला दी हमें। तो अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम आने वाले हैं। कहां? अपने शहर मुंबई, आमची मुंबई, है ना। तो ओपी नैयर का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम CID।

था कि आपके साथ इस सुरीले सफर को और लंबा ले चलें। तो चलिए यहीं तक आज का ये सफर। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म आम्रपाली से, आवाज लता मंगेशकर की है। शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है, सुनिए ये गीत।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म परवाना का एक गाना, आवाज मोहम्मद रफी और आशा भोसले की है। कैफी आजमी ने इस गाने को लिखा है, मदन मोहन का संगीत है।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक निकाली जा रही सेवा यात्रा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देवास जिले के पुंजापुरा से वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प बाइक यात्रा में शामिल हुए देवास के दीपेश गोटी से संवाद किया।
1: मैं दीपेश गोटी, मध्य प्रदेश देवास से।
2: बताइए आप अपनी यात्रा के संबंध में।
1: मैं जब वडनगर से काशी विश्वनाथ की यात्रा में निकला तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला। मैं जगह जगह सेवा कार्य किए, स्वच्छता और वृक्षारोपण किया।
2: आपके साथ जो लोग हैं अन्य राज्यों के, उनसे कुछ सीखने को मिला क्या?
1: जी, उनसे भी कुछ भाषा सीखने को मिल रही है। कोशिश कर रहे हैं हम के उनकी जो भाषा है, मातृभाषा है, सीखने का प्रयत्न करें।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 35,42,000 से हितग्राहियों के खातों में 212,57,00,000 रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए और मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर को प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे 351 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। सेवा के पहले चरण में प्रदेश भर में 1,500 बसों का संचालन किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर को भोपाल में सुगम परिवहन सेवा के शुभारंभ के साथ प्रदेशवासियों को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वर्ष 2031 तक प्रदेश भर में लगभग 15,000 बसें संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर और सिटी के भीतर भी बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिले। पीपीपी मॉडल पर आधारित इस सेवा के जरिए ट्रांसपेरेंट बस संचालन होगा और यात्रियों की जरूरत के अनुसार आधुनिक बस टर्मिनल, बस स्टैंड, डिपो, बस स्टॉप का विकास किया जाएगा, जो सार्वजनिक परिवहन को नई पहचान देगा।
0: राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रसिद्ध संगीत निर्देशक शांतनु मोइत्रा को प्रदान किया जाएगा। इंदौर में 27 और 28 सितंबर को लता मंगेशकर सभागार में 2 दिवसीय अलंकरण समारोह और संगीत संध्या आयोजित होगी। 27 सितंबर को अमर लता हमारी लता संगीत संध्या में स्थानीय कलाकार प्रस्तुतियां देंगे, जबकि 28 सितंबर को शांतनु मोइत्रा को 5,00,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद गायक जोड़ी सचेत परंपरा की संगीत संध्या होगी। दोनों कार्यक्रमों में प्रवेश निशुल्क रहेगा। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में चीन को 37-21 से हराकर कबड्डी स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ग्रुप चरण में यह भारत की लगातार चौथी जीत है। इससे पहले भारत ने दक्षिण कोरिया, जापान और बांग्लादेश को हराया था। कबड्डी 1990 से एशियाई खेलों का हिस्सा है और भारतीय पुरुष टीम ने इसमें 8 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय महिला टीम ने भी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए ईरान को 37-23 से हराया। महिला टीम का अगला मुकाबला जापान से होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर तेज होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब के असर से आज छतरपुर, पन्ना, सतना, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने 25 और 26 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सेवा संकल्प अभियान के तहत झाबुआ जिले में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसके अलावा सेवा मेरा योगदान गतिविधि में जिला चिकित्सालय के मैटरनिटी विंग में सेवा गतिविधियों का आयोजन भी किया गया। शिवपुरी जिले के विकासखंड पोहरी के अंतर्गत बैराड़ में कल कृषि विभाग की टीम ने उर्वरक वितरण प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। नियमों का उल्लंघन करने पर 3 प्रमुख दुकानों को सील कर दिया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत आगरमालवा जिले के ग्राम कांकरिया में कल जैविक खेती, प्राकृतिक खेती में उर्वरकों और रसायनों के संतुलित उपयोग की जानकारी दी गई। प्रदेश में 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आंगन मिलन सेवा अभियान के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसका उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को सेवा, पोषण, सहभागिता और सम्मान के जीवंत केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में, दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
3: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
4: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
3: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
6: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओं के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालू के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के

0: 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
1: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10 से 15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22 से 23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35 से 40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
0: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जल भराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
3: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे के कारण 157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशू में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियायोउ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने 6 मिनट 13.25 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी पक्का हो गया है। अब पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा, भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। पहला गीत एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, युगल स्वर आशा भोंसले और महेंद्र कपूर के, फिल्म का नाम धूल का फूल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ओपी नैहर के संगीत निर्देशन में ये था मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, स्वर मोहम्मद रफी का था और फिल्म का नाम था मेरे सनम।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: फिल्म उजाला का गीत सुनिए, गायिका लता मंगेशकर हैं, शब्दकार हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी के बोल सुनिए, स्वर मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम लव इन टोक्यो।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
2: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
0: मिलिए जाने माने गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
3: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज सचिन देव बर्मन की थी।
1: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
2: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
1: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
4: पैदा हुआ।
3: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे की आखिरी पेशकश, नौशाद साहब का संगीत, शकील बदायूनी की बोल, आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम दिल दिया दर्द लिया।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: और अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: की सहेली सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है आरती, तो आरती तुमको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सखी सहेली के मंच पर हो तो बहुत बहुत सभी का और तुम्हारा भी स्वागत करते हैं।
1: बिल्कुल, और मंजरी जी आपको और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और आपने स्वागत किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: क्या बात है, और बताओ कैसे?
1: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। और अब आज गणेश चतुर्थी का दिन है तो बस उसकी तैयारियां चल रही थी और अब प्रोग्राम कर रहे हैं आप यहाँ के।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने कि इतने दिन से सब लोग ने भक्ति भाव से गणपति जी की पूजा करी है, तो धीरे धीरे उनका विदाई का दिन भी करीब आ रहा है। तो मतलब ऐसी बात ही है दिल की गहराइयों से निकली हुई कि मन उदास सा हो जाता है।
1: बिल्कुल, जब कोई जाता है ना, जो दिल के एकदम करीब हो जाता है वो जब जाता है ना, तो थोड़ा सा दिल दुखता तो है ना।
0: बिल्कुल दुखता है,
1: लेकिन फिर हमें ये भी तो आशा रहती है ना कि अब अगले वर्ष वो जल्दी से आएंगे।
0: बिल्कुल, वो कहीं गए नहीं होते हैं, हमारे पास ही रहते हैं, हम उन्हें रोज याद करते हैं उन्हें, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी अपने को याद कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो अपने सखी सहेली के विषय लेकर आए हैं उन पर बात कर लेते हैं। हाँ। कि जो हमारे विषय है कि उपयोगी टिप्स, यानी घर में जो हमारा एक फ्रिज होता है,
1: सबसे समझ लो उसे कहते हैं स्टोरेज रूम कह सकते हैं।
0: हाँ, खाद्य पदार्थों का स्टोरेज रूम होता है, तो उसमें सामान रखने की भी एक कला होती। तो आप सब हमारी बहनें या भाई लोग भी जो भी हैं, अपने फ्रिज में आप कैसे सामान को रखती हैं, उसकी छोटी छोटी सी बातें संदेश में लिखकर भेज सकते हैं। तो
1: बिल्कुल लिख के भेजिए कि आप एकदम ठूंस देते हैं जल्दी से, सब्जी वगैरह लेकर आए, कुछ भी लाए, ठूंस दिया और जल्दी से उसको कस के दरवाजे को बंद कर दिया, ऐसा करते हैं या अच्छे तरीके से उसको लगा के रखते हैं, ये आप हमें बताइए आप कैसे रखते हैं। और साथ ही आज हम बात करेंगे समुद्र के बारे में। सोचो, एक अंतरिक्ष है, एक समुद्र है, मतलब दोनों अथाह हैं जिनका कोई पार नहीं। और साथ ही इतनी रहस्यमयी दुनिया है ना ये, चाहे अंतरिक्ष हो चाहे समुद्र हो, पता नहीं कब से, शायद हम शुरू से ही इसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो समुद्र है बहुत गहराई में जो है उसकी, तो वो हमें भी नहीं पता चल पाया है। अभी भी हम चौंक जाते हैं,
0: इतनी अद्भुत है, मतलब अद्भुत दुनिया ही है। बिल्कुल, और उसमें समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो भी बड़ी अद्भुत है, कई सारी चीजें उसमें अंदर छुपी होती है और बहुत गहरा होता है। जैसे हम ही लोग इंसान ही है तो हर इंसान का मन भी बहुत गहरा होता है, वो कब क्या सोच ले कुछ पता नहीं चलता है।
1: कहते हैं ना, जो इंसान ने वो जो सारे तत्व हैं पृथ्वी के उससे मिलकर बनाए, चाहे वो अंतरिक्ष हो या समुद्र की गहराई हो जो उसके मन में छुपी हो।

0: सकती हूँ, है ना?
1: तो इस पर बातें करेंगे। और मुझे कुछ कहना है
0: हाँ
1: कि भाई इसमें आप बताएं कि कब किससे रूठे, ताजा रूठे कि 2 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले, कि आज सुबह सुबह रूठे,
0: आरती मंजरी से रूठ गई या मंजरी आरती
1: आरती
0: से
1: से
0: रूठ
1: रूठ गए।
0: गई।
1: तो इस तरह के कुछ अपनी
0: हाँ
1: यादें ताजा करेंगे। और कहानी पद्मश्री की है तो उसमें बात करने हम लोग करने वाले हैं हम लोग उषा बारले का, जो पंडवानी लोक गायिका है, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। और फिलहाल तो हम लोग जैसे मन की बात कर रहे थे कि मन गहरा होता है, तो कभी कभी कोई मन को लूटने की भी बात करने लगता है
0: और
1: ना।
0: जब एक कोई गीत छिड़ जाता है ना तो मन खुश हो जाता है।
1: चलो तो गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा ये गीत था, है ना। तो ऐसे ही जब हम लोग कहीं समुद्र की सैर के लिए जाते हैं या समुद्र के आसपास जाते हैं, तो वहाँ की जो एक हवा आती है दूर से आती हुई, एक शीतल सी
1: ठंडी
0: हवा
1: हवा।
0: होती है, ठंडी हवा होती है, कुछ समुद्री हवा का अलग एक अलग सी एक सुगंध होती है, तो वो देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और पानी देख कर तो वैसे भी लगता है कि बस अपने पैर डाल लो उसमें, आगे लहरों के संग थोड़ा सा मस्ती कर लो, है
1: बिल्कुल
0: ना। तो हमारे साथी ने एक संदेश में लिख कर भेजा है, तो पहले संदेश उनका ले लेते हैं। लिखते हैं कि लहरों का एक सुहाना संग, अथाह नीला विशाल रूप, क्षितिज जहाँ आकर झुकता है, खिलती जहाँ सुनहरी धूप, रेत पर आकर रुक जाती है, गीत सुनाती चंचल धार, गहराई में छिपे रहस्य सिखाती समता और प्यार। बहुत सुंदर सी लाइनें आपने भी लिखकर भेजी हैं। और पता है दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जितना जानो उतने ही गहरे होते जाते हैं। और सच पूछो तो हमने जब से अंतरिक्ष को खोजना, उसे जानना शुरू किया, तब से या शायद उससे पहले भी, हम जमीन पर सबसे बड़े रहस्य की खोज में लगे हुए हैं। वो रहस्य है अथाह समुद्र, जो आज भी एक पूरी तरह खोजा नहीं जा सका। आरती,
1: बिल्कुल। और जो समुद्र हमें ऊपर से शांत और सुंदर दिखाई देता है, उसके नीचे एक पूरी की पूरी अद्भुत दुनिया बसी हुई है, क्योंकि नीचे बहुत कुछ है। नीचे पेड़ पौधे बड़े बड़े, वो अलग तरीके के पौधे हैं जो सिर्फ पानी में उगते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, ज्वालामुखी हैं, सब कुछ है इसके नीचे। और हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, और इस विशाल जलराशि का बड़ा भाग महासागरों में है। यानी अगर धरती को एक बड़ा सा घर माने तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी का ही है।
0: बिल्कुल। और समुद्र के अंदर कितने सारे रत्न भी छुपे हुए हैं, तो वो
1: बिल्कुल
0: सब चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि इंसान ने चांद तक पहुँच कर वहाँ कदम रख दिया, लेकिन समुद्र की गहराइयों में, जैसा तुमने पहले भी कहा था, आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं।
1: हाँ
0: समुद्र के अंदर छोटी छोटी मछलियों से लेकर विशाल काय व्हेल तक, अनगिनत और लाखों तरह के जीव जंतु, शैवाल वगैरह पाए जाते हैं, जो ऐसे लगेंगे पेड़ पौधे हैं, लेकिन नहीं, जब उनके पास जाओगे तो वो ऐसे फैलते हैं और आपको पकड़ने कोशिश करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो भाई ऐसे समुद्री यात्रा ऐसी आसान नहीं है, बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: और यहाँ कोई अपने रंग बदलकर दुश्मन से बचता है, ऐसे जीव हैं जो, तो कोई अंधेरे में चमकता है, जेलीफिश वगैरह जो रहती हैं, और कोई इतनी गहराई में रहता है जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती है, और बहुत ज़्यादा जो गहराई होती है वहाँ पे तो घना अंधेरा ही रहता है, रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है। तो समुद्र के कुछ जीवों में बायोल्यूमिनेंसेस यानी कि अपने शरीर से प्रकाश पैदा करने की क्षमता होती है, जो प्रकाश अपने आप अपना रोशनी कर देते हैं अपने चारों तरफ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जरा सोचिए, सोच कर देखो ना आरती, कि चारों तरफ अंधेरा और अचानक कोई समुद्री जीव नीली हरी रोशनी से चमक उठे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे समुद्र के अंदर चारों तरफ मतलब ऐसा लगेगा समुद्र के अंदर आसमान और तारे वहां पर
1: हाँ
0: उतर आए हैं।
1: हाँ
0: जैसे अंतरिक्ष का एक हिस्सा समुद्र की गहराई में भी बसा हो। इतना ही नहीं, जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने समुद्र के अंदर रंग बिरंगे जंगल की कल्पना की है? समुद्र में मौजूद प्रवाल भित्तियां यानी कोरल्स रीफ्स कुछ ऐसी ही दिखाई देती हैं।
1: बिल्कुल। और जो महत्वपूर्ण आवास है इनके, और लाल पीले नारंगी और कई दूसरे रंगों से सजे हुए ये क्षेत्र जो है वो अनेक समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास बने हुए हैं, और इनके आसपास छोटी बड़ी मछलियां तैरती दिखाई देती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि पानी के अंदर कोई रंगीन शहर बसा हुआ पूरा, जो सिर्फ पानी के जीव रहते हैं जहाँ पर। और समुद्र की गहराइयों में बहुत सी ऐसी गुफाएं हैं, सुरंगें हैं, जिनमें से बहुतों को तो हमने खोज लिया, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी हैं जिनको हमने खोजा भी नहीं है, अभी खोज भी नहीं पाए उनको।
0: और देखो हमारे एक साथी भी लिख रहे हैं संदेश में कि मैं देश विदेश के कई समुद्रों की कई सैर कर चुकी हूँ, बोट क्रूज और स्टीमर आदि से कई जगह, गोवा, मद्रास, अमेरिका, इजिप्ट, थाईलैंड आदि जगह बहुत घूमी हूँ। इजिप्ट में तो एक सप्ताह तक स्टीमर पर ही रही, जहाँ स्टीमर रुकता था वहाँ की जगह पर उतर कर घूमती थी। कितनी सुंदर सी अपनी यादें इन्होंने ताज़ा करी हैं। और एक लिखते हैं कि प्राकृतिक भूगोल के जलमंडल विषय बहुत रोचक है, उष्ण और शीतल सामुद्रिक धाराएं, महादेशीय छज्जा, अंतरीप खाड़ी, सागर, महासागर, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, ज्वारभाटा आदि अनेक अनुसंधान के विषय बाकी हैं। इन्होंने लिखा, बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे साथियों ने दी है।
1: और हम बात कर रहे हैं अपने तो समुद्र की जो गुफाएं हैं वो समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण ही बनती हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऊपर ही विस्फोट होते हैं, अंदर भी होते रहते हैं। और समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें भी हैं, लेकिन ये खूबसूरत दुनिया आज समुद्री तापमान में बदलाव और प्रदूषण जैसी समस्याओं से प्रभावित ही हो रही है। समुद्र केवल घूमने फिरने और छुट्टियां मनाने की जगह नहीं है, समुद्र पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है पूरी तरीके से, और
0: बिल्कुल
1: जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और समुद्री जीवों के साथ साथ इंसानों के जीवन से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: क्योंकि देखो ना, मौसम से लेकर खाना, व्यापार तक समुद्र का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और जहाजों के बिना दुनिया में बहुत सी वस्तुओं का आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता है। जहाज तेल का हो चाहे गैस, गेहूं, चावल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और कपड़े जैसे वस्तुओं का परिवहन करते हैं। इसीलिए समुद्र को साफ रखना केवल समुद्र की चिंता नहीं बल्कि हमारे अपने भविष्य की चिंता भी। अगर
1: बिल्कुल
0: समुद्र गंदा होता जाएगा तो जो जहाज चल रहे हैं उनके मार्ग में रुकावट आएगी।
1: बिल्कुल।
0: पहली
1: और
0: बात
1: सबसे बड़ी चीज़ है, जो समुद्री जीव जंतु हैं, समुद्री जो प्रवाल हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगर समुद्र के अंदर के जीव जंतु जब खत्म होने लगेंगे ना, तो पूरे पूरे जो पृथ्वी का जो चक्र चलता है ना,
0: हाँ वो
1: वो
0: भी
1: जीवन चक्र प्रभावित होगा पूरी तरीके
0: बिल्कुल
1: से,
0: सही बात है। तो इसलिए उसका बहुत
1: बहुत
0: ध्यान
1: ज़रूरी
0: रखना
1: है।
0: जरूरी
1: बिल्कुल
0: है। और आज समुद्र के सामने प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्र के बढ़ते तापमान और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियां भी मौजूद हैं, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, कचरा नदियों और समुद्रों में ना फेंकें, समुद्र तटों को गंदा ना करें, और सबसे जरूरी, प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि अपना साथी समझना पड़ेगा। समुद्र हमें सिखाता है कि प्रकृति जितनी दिखाई देती है उससे कहीं अधिक विशाल, जटिल और अद्भुत है।
1: बिल्कुल, और कभी शांत, कभी उग्र और कभी रहस्यमय समुद्र जो है वो प्रकृति के हर रूप को अपने भीतर समेटे हुए है, और यही कारण है कि समुद्र को देखते ही हमें केवल पानी का विस्तार नहीं दिखाई देता, बल्कि प्रकृति की विराटता, जीवन की विविधता और उस अनदेखी दुनिया का एहसास भी होता है, जिसे जानने की जो हमारी प्रक्रिया है, जो यात्रा है, वो भी चल रही है।
0: तो चलो इसी के साथ एक गीत का भी आनंद
1: बिल्कुल
0: ले लिया
1: सुनते
0: जाए।
1: हैं।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: तो आरती देखो हमारे साथी क्या लिखते हैं बताओ।
2: हाँ तो हमारे साथी जो लिखते हैं कि समुद्र जीवन पृथ्वी के महासागरों और खारे पानी में रहने वाले पौधे जानवर और सूक्ष्म जीव हैं। पानी में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे जो खाद्य जाल का आधार हैं। जेलीफिश हो गई, ऑक्टोपस है, केकड़ा है, प्रवाल है, बहुत सारे जानवर हैं जिन्होंने लिख के दिए। और साथ ही एक हमारे साथी जो कहते हैं कि समुद्र हमारे ग्रह का दिल है, पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें अधिकांश जो भाग है वो विशाल महासागरों का है। समुद्र केवल पानी का एक भंडार नहीं है बल्कि रहस्यमय जीवन तो अत्यंत आवश्यक दुनिया है। और आज हमने अपने विशाल महासागरों के बारे में जो तलाश किया है तो केवल 5-10% हिस्से को ही हम तलाश कर पाए हैं। और ये बताता है कि समुद्र की गहराई में न जाने कितने रहस्य आज भी दफन है।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी ने और भी जानकारी दी है। लिखते हैं कि समुद्र में विशालकाय ब्लू व्हेल, जो इस धरती का सबसे बड़ा जीव है, से लेकर सूक्ष्म प्लैंकटन तक इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी मछलियाँ, जेली फिश, ऑक्टोपस और शार्क जैसी प्रजातियाँ इसे एक काल्पनिक दुनिया जैसा रूप देती हैं।
2: और साथ ही जो लिखते हैं कि समुद्र के गहरे हिस्सों जैसे मारियाना ट्रेंच, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, वहाँ पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। वहाँ का तापमान 0 के करीब होता है और पानी का दबाव बहुत अधिक होता है। इसके बावजूद वहाँ ऐसे बायोलुमिनेंट्स जो जीव होते हैं वो रहते हैं, जो अपने शरीर से रोशनी पैदा करते हैं। मतलब जहाँ पर पानी के सूरज की किरणें तक नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर वो जीव अपने आप जगमगाते हैं।
1: बिल्कुल, और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई समुद्र की भी एक रोचक दुनिया है जिसमें तमाम रहस्य छिपे हुए हैं, जिनमें बहुत सी बातें हम जानते हैं और बहुत सी बातों से अनजान भी हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्र ही है, जिसमें तरह तरह के जीवों और वनस्पतियों का भंडार है। हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है, इसका 60-80% तक समुद्र ही देता है। समुद्र के अंदर भी एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसे मिड ओशियन रिट्स कहा जाता है, जो बाहर से नहीं दिखती। इसी तरह समुद्र की गहराई का रहस्य आज तक बना हुआ है। प्रशांत महासागर में एक ऐसी जगह है जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरी, और समुद्र अद्भुत जीवों की शरण स्थली भी रहा है, जो इतने विशालकाय हैं बड़े बड़े जहाजों को भी रोक लेते हैं। समुद्र से हमें लाभ तो बहुत है, किंतु मानव सभ्यता की विकास यात्रा ने उसे कचरे का एक गोदाम बनाने की ठानी है। ये दुखद है, आने वाले दिनों में भारत समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक भरता हुआ समुद्र में, लिखा है इन्होंने कि भरता समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है। इससे समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है और हमें भी ये एक दिन बर्बादी की गर्त में पहुंचा देगा, इन्होंने लिखा है ऐसा। तो ये चीज का ध्यान रखने वाला है कि हमें अपने समुद्र को साफ भी रखना है।
2: बिल्कुल, और एक साथी हैं जो लिखते हैं कि समुद्र जो कोरल रीफ है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि क्या है ये। तो इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जैसी जगह है जहाँ लाखों समुद्री जीवों को आश्रय देती हैं और पानी के नीचे एक बेहद खूबसूरत और रंगीन इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं। धरती के लिए महत्व जिसका क्या है वो बताते हैं कि हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है उसका 50% से अधिक हिस्सा समुद्र में रहने वाले पौधों जो वहाँ पे होते हैं उसके द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्र के वैश्विक तापमान और मौसम को नियंत्रित करने में भी मुख्य भूमिका को निभाता है जो समुद्र है। और समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो इतनी सुंदर है और रहस्यमयी है कि ये हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर हम पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखना है हमें, तो हमें महासागरों का सम्मान करना होगा और उन्हें प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। समुद्र की सुरक्षा ही मानवता की सुरक्षा है।
1: बिल्कुल सही कहा। चलो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं।

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बन सारे अपन नरबदा सपड़ बेचारे।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: भाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाँ में ले के टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो देखो आरती, अब समय हो चला है अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद, फिर हम लोग बातें करेंगे अपनी जो हमारी सखी विशेष हैं उनकी बातें करेंगे, और अंतराल के बाद मिलते हैं फिर।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है आरती, और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कहानी पद्मश्री उषा बारले जी के बारे में, जो पंडवानी लोक गायिका हैं। तो कहते हैं लोक कला केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि वो तो किसी मिट्टी की अमिट याद होती है, किसी समाज की पहचान होती है, और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की जीवित आवाज होती है। ऐसी ही कलाकार हैं उषा बारले, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा पंडवानी गायिका गायकी को देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों तक पहुँचाया।
1: और 2 मई 1968 में उषा बारले जी का जन्म भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ। उनकी पिता का नाम खाम सिंह जांगड़े और माता का नाम धनमत बाई था। बचपन से ही लोक संगीत के प्रति उनका गहरा आकर्षण था। महज 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने पंडवानी सीखना शुरू कर दिया था।
0: और सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद और खिलौनों की दुनिया में खोए रहते हैं आरती, उस उम्र में एक छोटी सी बच्ची महाभारत की कथाओं और लोक संगीत की दुनिया में अपना रास्ता खोज रही थी। उनकी यही बाल रुचि आगे चलकर उनके जीवन की पहचान बन गई।
1: बिल्कुल। अब जरूरी है ये भी बताना कि पंडवानी गायकी जो होती है वो आखिर है क्या। तो पंडवानी का अर्थ है पांडवों की वाणी या पांडवों की कथा। ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें महाभारत की कथाओं को लोक भाषा, संगीत, अभिनय और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
0: और इसमें कलाकार केवल गाता नहीं है, बल्कि कथा के पात्रों और भावनाओं को अपनी आवाज और हाव भाव से जीवंत कर देता है। और इसी कला को उषा बारले ने अपनी आवाज से एक नई ऊर्जा और पहचान दे दी। जब किसी भी कलाकार की प्रशंसा होती है तो उसकी उस ऊंचाई तक पहुंचने की यात्रा में गुरु का स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है आरती।
1: बिल्कुल। और उषा बारले ने प्रारंभिक जो प्रशिक्षण था उसके बाद महान पंडवानी कलाकार तीजन बाई से भी शिक्षा प्राप्त की थी। उनके मार्गदर्शन ने उषा बारले की कला को और निखारा। पंडवानी की साधना आसान नहीं थी, इसमें केवल सुर और ताल ही नहीं बल्कि उसमें कथा की समझ भी होनी चाहिए, अभिनय होना चाहिए, संवाद, भाव और मंच पर तत्काल प्रस्तुति की क्षमता भी बहुत आवश्यक होती
0: है। बिल्कुल सही कहा तुमने। और उषा बारले ने वर्षों की मेहनत से इन सभी पक्षों को अपनी कला का हिस्सा बनाया। उषा बारले के जीवन में कठिन दौर भी आए, जब गृहस्थी चलाने के लिए वो फल बेचा करती थी, लेकिन परिस्थितियां उनकी कला के रास्ते में स्थायी बाधा नहीं बन सकी। उन्होंने अपनी लोक कला को छोड़ा नहीं, बल्कि समय के साथ वही कला उनकी पहचान बनती चली गई।
1: बिल्कुल। पंडवानी के अलावा अनेक लोक विद्याओं में भी वो पारंगत हैं। और धीरे धीरे उषा बारले की आवाज बड़े मंचों तक पहुंचने लगी। उन्होंने भारत के कई शहरों में पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां दी। इतना ही नहीं, उनकी कला की गूंज विदेशों तक पहुंची, यानी जिस लोक कला की जड़ें छत्तीसगढ़ की मिट्टी में थी उसकी आवाज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी थी।
0: उषा बारले की विशेषता केवल पंडवानी गायन तक सीमित नहीं रही, उन्होंने अपनी कला के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक जागरूकता से जुड़े संदेश भी लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने कई गंभीर बीमारियों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने में भी अपनी लोक कलाओं का इस्तेमाल किया।
1: बिल्कुल। उषा बारले आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र रायपुर की ए ग्रेड कलाकार भी रही हैं। उन्होंने आकाशवाणी की विभिन्न चैनल्स पर पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां भी दी हैं। वर्षों की साधना और लोक कला के प्रति समर्पण के लिए उन्हें कई सम्मान मिले और वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म

0: राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया।
1: कितने गर्व की बात है कि उन्होंने अपनी कला को आगे बढ़ाया।
0: बिल्कुल।
1: तो इस जब हम इनकी कहानी सुनते हैं पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि हमारे अंदर जो भी कला है तो हम उसको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा लें और बाकायदा गुरु के पास जाएं और सीखें, और मेहनत, अनुशासन बहुत ज़रूरी, लगन होना चाहिए, नियमित अभ्यास होना चाहिए। तो आप छोटे से ही बच्चा अगर शुरुआत कर दे, छोटे से ही बच्चे को आप सिखाना शुरू कर दें तो आगे चल करके बहुत अच्छा आगे जा सकता है।
0: बिल्कुल, आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको निखारेंगे तो आपको उसकी उसकी बारे उसकी उसकी फ़ायदा भी उठाने को मिलेगा फिर।
1: तो चलो सुनते हैं एक गीत।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो आरती भाई, ये याद रखना बड़ा मुश्किल भी है और आसान भी है। बताओ तुम कब किससे रूठी? हमारे साथी ने भी बहुत सारे लिखे हैं संदेश, तुमने जवाब नहीं दिया, हंस के टाल दिया। चलो अच्छा, तुम्हारा बताने का मन नहीं है।
3: नहीं, बताने की नहीं है, मैं बस अपने साथियों के जो कमेंट उन्होंने भेजे ना, उसको पढ़ पढ़ के मैं मन ही मन हंस रही थी कि इन्होंने अपनी अपनी बातें लिखी हुई है, ऐसे मन अनुभव लिखे हुए हैं।
4: तो हमारे साथी देखो, एक लिखते हैं कि रूठना भी रिश्तों का हिस्सा है, लेकिन बात इतनी ना बढ़े कि अपनापन ही दूर हो जाए। कभी कभी हम

0: पैरों से रूठ जाते हैं, छोटी सी बात दिल पर लग जाती है, लेकिन शायद रूठने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि किससे रूठना है और कब मान जाना है। अपने वही तो होते हैं जिनसे हम नाराज भी हो सकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हंसकर बात भी कर लेते हैं। रिश्तों में रूठना रहे मगर इतना नहीं कि मन में दूरियां बस जाएं। कभी अपनी बात कह दीजिए, कभी सामने वाले की सुन लीजिए, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं निभाने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि रूठने की क्या जरूरत है, रूठे हैं तो भी मना भी लीजिए, है ना?
1: बिल्कुल, क्योंकि ना ये रूठना मनाना तभी अच्छा लगता है, ये छोटी मोटी जब हंसी की नोकझोंक हो। जैसे कि एक हमारे साथी लिखते हैं कि धर्म पत्नी अगर ना रूठे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मुझमें एक काबिलियत है कि मैं कोई ना कोई मनाने वाला फिल्मी गीत सुर में गाकर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी को मना ही लेता हूँ, और वो मान जाने के बाद मुझे अदरक इलायची वाली चाय जरूर पिलाती है। मतलब ये चाय पीने के लिए गाने गाके
0: मना लेते हैं,
1: बिल्कुल मना लेते हैं।
0: कितनी अच्छी सी बात इन्होंने लिखकर भेजी। और एक लिखते हैं कि भाई कब किससे रूठे, ये बड़ा रोचक मुद्दा है। पहले मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। तू गंगा सरी की पावन है, जन जन की मन भावन है, तू हिंदी की आन बान शान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू देश प्रेमियों का सम्मान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू भारतेंदु की पूजा है, तेरा जैसा नहीं दूजा है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, हम वेद भारती से रूठ जाते जब आप हमारे मनपसंद गाने नहीं चलाते हो, दादी नानी के जमाने के गाने बजाने बजाने बजाइए, हमारे गाने नहीं बजाते इसलिए हम वेद भारती से रूठ जाते हैं। भाई वेद भारती रूठने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत सारे दिन भर प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसमें देखिए आप सुनेंगे तो तरह तरह के गाने बजते हैं,
1: नए भी बजते हैं, पुराने भी बजते हैं,
0: सब बजते हैं। हाँ। और आप उनको सुनिए, उनका आनंद लीजिए। अब ऐसे रूठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना आरती?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि कभी कभी तो हम माँ से रूठ जाते हैं, तभी माँ कहती है ऐसे रूठने से काम नहीं होता, रूठने से तनाव आता है, हंसी ठिठोलियाँ करते रहना चाहिए। भाई बिल्कुल हंसी ठिठोली कीजिए, लेकिन हमारी वेद भारती से जुड़े रहिए और रूठिए मत, गाने आप आनंद लेते रहिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि रूठना और मनाना इंसानी फितरत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। जब हम किसी से रूठते हैं तो असल में हम उससे नफरत नहीं कर रहे होते बल्कि अपने हक और प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन जिंदगी के इस सफर में ये समझना बेहद जरूरी है कि हम कब किससे और कितना रूठना चाहिए हमें। गलत इंसान से या गलत वक्त पर रूठा जाए तो रिश्ते सुधरने की बजाय बिखर जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आगे लिखते हैं कि हम हर राह चलते इंसान से नहीं रूठ सकते, रूठा सिर्फ उसी से जाता है जिससे हमें प्यार पाने की उम्मीद होती है। माता पिता और परिवार, इनसे रूठने में एक अलग ही सुकून है क्योंकि हमें मालूम होता है कि वो हमें मना ही लेंगे। यहाँ रूठना प्यार को बढ़ाता है और जीवनसाथी या पार्टनर प्रेम संबंधों में रूठना मनाना एक टॉनिक की तरह काम करता है। ये दिखाता है कि आप उनके करीब हैं। सच्चा दोस्तों से रूठना केवल एक अधिकार है जो दोस्ती को और गहरा करता है। बहुत सुंदर सी बात लिखकर भेज रहे हैं।
1: और साथ ही एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि रूठना रिश्तों की वो डोर है जिसे बहुत संभाल कर खींचना पड़ता है। ज्यादा ढील दी तो रिश्ता बेअसर हो जाएगा और ज्यादा जोर से खींचा तो डोर टूट जाएगी। इसलिए केवल उनसे रूठिए जो आपके मौन का दर्द समझते हो और आपकी खामोशी को पढ़ते ही आपको गले लगाने के लिए दौड़ पड़े।
0: और एक साथी लिखते हैं कि भाई बचपन में मैं अपनी माँ से रूठ जाती थी तो माँ बड़े ही प्यार से मना लिया करती थी, और अब तो रूठना ही भूल गई हूँ, बस मनाने का काम ही कर रही हूँ बस। तो ऐसे रूठना तो चलता रहता है जिंदगी में, देखो हर दिन कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, कभी मतलब किसी का फोन नहीं आया तो रूठ गए, किसी ने मैसेज नहीं किया तो रूठ गए,
1: किसी ने हमें कुछ मिठाई नहीं खिलाई तो हम रूठ गए,
0: है ना।
1: एक हमारे साथी हैं मंजरी जो लिखते हैं कि कब किससे रूठे, किसी से रूठने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, मनाने के लिए गाना गाना चाहिए। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे हों सनम तो फिर क्या है, हमको मनाना आता है, रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे, यूं रूठो ना हसीना। इन्होंने सारे फिल्मों की रूठो वाली जो लाइन थी वो लिख के भेज दिए हैं।
0: जब इन्होंने गाने भेज ही दिए हैं तो हम क्यों ना इनको एक गाना ही सुना
1: बिल्कुल सुनवा देते हैं।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती हमारे साथी क्या लिखते हैं?
3: हाँ, हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि किससे रूठे, रिश्तों में नाराजगी की समझ होनी चाहिए और साथ ही रिश्तों में नाराजगी की समझ कि रूठना और मनाना मानवीय रिश्तों के सबसे खूबसूरत और संवेदनशील पहलुओं में से एक है। नाराजगी इस बात का प्रमाण होती है कि हम उस रिश्ते में पूरी तरह से निवेशित हैं, यानी कि उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीवन के इस भागदौड़ में हमें कब किससे और कितना रूठना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे या हर बात पर रूठना रिश्तों की नींव को कमजोर कर सकता है, जबकि सही समय पर व्यक्त की गई नाराजगी रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। तो हम किससे रूठते हैं? हम कभी किसी अजनबी से नहीं रूठते। रूठने का अधिकार हम सिर्फ उन्हें देते हैं जिन्हें हम अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं, जैसे वो माता पिता हैं, जीवन साथी है, भाई बहन है या कोई बेहद करीबी दोस्त। तो रूठने के पीछे एक छिपी हुई उम्मीद होती है कि सामने वाला हमें प्यार से मनाएगा और ये एक तरीके का मूक संवाद है। तो इन्होंने बहुत बहुत कुछ लिखा है इस बारे में, तो ये एक समझ लिए उसका जिस्ट है, उसका एक निचोड़ है।
2: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं, अपनों से तब रूठना चाहिए जब सामने वाला आपकी खामोशी या आपकी कीमत समझे, लेकिन बेवजह या छोटी छोटी सी बातों पर किसी से नहीं रूठना चाहिए। किसी अपने से अनबन होने पर उन्हें थोड़ा शांत होने का समय दें, गुस्सा कम होने पर प्यार से अपनी बात रखें, रिश्तों में अहंकार ना आने दें, क्योंकि मनाना भी प्यार का एक हिस्सा है और भी

0: आजकल डिजिटल दुनिया में रूठना कोई मायने नहीं रखता है, लोगों से मिलना जुलना जो कम हो गया है तो क्या पता चलेगा।
1: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे और साथी हैं जो लिखते हैं कि ये सोचने से पहले कि किससे रूठें, ये जरूर सोच लीजिए कि कहीं हमारी नाराजगी के कारण कोई अपना हमसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएगा। रिश्तों में जीत या जीत रूठने की नहीं बल्कि साथ निभाने की होती है। जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कौन सा रिश्ता कब याद बन जाए और कौन सा अपना कब दूर चला जाए। इसलिए जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार को थोड़ा पीछे रखिए, जहाँ अपनापन है वहाँ छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई विचार, जीवन, रिश्ते और हमारी भावनाओं की गहराइयों को छूता है। रूठना एक ऐसी भावना है जो केवल वहीं पैदा होती है जहाँ कोई गहरा रिश्ता या हक होता है। हम हर किसी से नहीं रूठते और ना ही कोई हमें मना सकता है। रूठने में एक मासूमियत और प्यार की मांग होती है। जब हमारा कोई बहुत करीबी हमारी बात नहीं समझ पाता या हमारी भावनाओं को नज़रअंदाज करता है तब रूठना स्वाभाविक है। रूठना प्रेम की एक अनकही भाषा है। ये तभी तक सुंदर है जब तक रिश्तों में दूरियां ना बढ़ाएं बल्कि मनाने के बाद प्यार को और भी गहरा दें। तो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: तेरी मेरी प्रेम कहानी।

0: तो अब हम आ जाते हैं कि फ्रिज में हम सामान कैसे रखें। तो मंजरी एक हमारे साथी हैं जो लिख के भेज रही हैं कि मैंने तो छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हैं और मिर्च अदरक जैसे सामान होते हैं उसमें ही स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। डाइनिंग टेबल का मैट जो पुराना हो जाता है उसे फ्रिज के रैक पर बिछा देती हूँ ताकि उसमें कुछ भी गिरे तो आसानी से साफ किया जा सके। वैसे बना बनाया खाना मैं फ्रिज में रखना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ खाना मुझे पसंद नहीं है। बाय चांस कभी रखना हो तो अच्छी तरह पैक करके रखती हूँ और हर 2 से 3 दिन में चेक करती रहती हूँ कि कुछ खराब तो नहीं हो रहा है या किसी तरह का कोई स्मेल तो नहीं आ रहा है।
1: बिल्कुल। और फ्रिज में सामान रखते समय बचा हुआ भोजन बंद डब्बों में रखना चाहिए, सब्जियों को धोकर सुखाकर रखना चाहिए, दूध दही से ढककर रखना चाहिए, पनीर को खुले बर्तन में पानी में रखना चाहिए। हमारी साथी ने लिखती है इस तरह की बातें। और सब्जियों को भी अलग ड्रॉअर में रखे, फल पत्तेदार सब्जियां पेपर टॉवल में लपेटे, दूध और डेयरी प्रोडक्ट को मिडिल शेल्फ पर रखे और फ्रिज को ज्यादा नहीं भरना चाहिए। ऐसी बातें लिख रहे हैं हमारे साथी। और लिखते हैं कि भाई जो भी बचा हुआ सब्जी दूध बचा हुआ खाना और कई तरह की चीजें रखते हैं तो फ्रिज में सामान रखने का मकसद ही है कि खाने पीने को की चीजों को लंबे समय तक स्टोर करना। और गर्मी में चीजें बाहर रखने से खराब जाती है जबकि फ्रिज में कई दिनों तक चीजों को स्टोर किया जा सकता है। फल और सब्जियों को अलग अलग रखें, फ्रिज में फल और सब्जियों को एक साथ रखने से वे जल्दी खराब जाते हैं और कई फल जो है वो कई तरह की गैसेस छोड़ते हैं तो सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं, इसलिए इनको अलग अलग शेल्फ में रखना चाहिए।
0: ठीक है। तो एक हमारे साथी तो जो लिखती हैं कि फ्रिज में सामान कैसे रखें, ये बहुत संजीदा मुद्दा है। तो फ्रिज तो होना चाहिए, इसमें दूध दही रख सकते हैं, हमारी माँ तो उसमें सब्जियां ठूस ठूस कर रख देती हैं, कभी कभी मिठाई की पेटी भी उसमें रख देती हैं। नानी मौसी को कुछ निकालना हो तो फ्रिज से ही निकालना होता है, कभी कभी तो फ्रिज में से पानी बाहर निकल आता है, इससे मम्मी गुस्सा हो जाती हैं और बहन को डांटने लगती हैं। तो उस हिसाब से आप रखिए, एक एक सेल्फ में थोड़ा थोड़ा सामान रखिए और उसको चेक करते रहिए और सफाई करते रहिए।
1: जी।

0: तो देखो बात करते करते समय बिल्कुल समाप्त पर हो गया है,
1: दूर
0: तो
1: पास सारे श्रोता रहते ही हैं।
0: तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करेंगे बातें। देश के कोने कोने से हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रोताओं के कॉल्स आते हैं और इस तरह से हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, उनके बारे में, उनके इलाके के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और विविध भारती के बारे में उनकी क्या राय है इसकी भी पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत सीताराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ सर।
0: जी क्या नाम है आपका?
1: सर मैं बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ सर।
0: बाबूलाल जी क्या करते हैं भोपाल में?
1: जी सैलून की दुकान है सर।
0: इस साल भोपाल में बारिश किस तरह की हुई है?
1: बारिश तो बहुत अच्छी हुई साहब, बढ़िया एकदम टनाटन और अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ना बाढ़ को प्रकोप हुआ ज्यादा, कुछ भी नहीं है, नाले तूफान ज्यादा उफान पे भी नहीं आए।
0: अच्छा, और भदभदा के गेट कितनी बार खुले इस बार?
1: दो तीन बार खुले सर।
0: मतलब बारिश बहुत अच्छी हुई?
1: जी जी लेवल से पानी हुआ है, गेट तो अंदाज से खुले सर।
0: और आप कहाँ कहाँ पिकनिक मनाने गए इस बारिश में?
1: इस बारिश में कहीं भी नहीं गए सर।
0: अच्छा, काम में बिजी रहे।
1: जी जी।
0: अच्छा बताइए, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: मूवी है तुमसे अच्छा कौन है,
0: गाने की बोल
1: आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो।
0: क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? यूनुस खान जी, उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ
0: जी। कैसे हैं गुलजार साहब
1: जी? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं यूनुस खान सर?
0: बस बढ़िया हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं। बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज मैं गाना सुनना चाहूंगा ना जैके पार फिल्म का, आप आने के बोल रहे थे कौन दिशा में लेके चला रहे बट भैया।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की। रविंद्र जैन का संगीत, उन्हीं का गाना है।
1: हाँ जी।
0: और ये फिल्म कितनी बार देखी है आपने?
1: ये फिल्म मैंने 10 बार देखी है।
0: अच्छा, और गुंजा और चंदन की प्रेम कहानी बहुत अच्छी लगती है आपको? हाँ
1: जी, गुंजा का रोल बहुत अच्छा लगता है, गुंजा और चंदन का रोल। जब आखिरी माँ आ जाती है ना, आखिरी माँ का गुंजा का निकाह चंदन से हो जाता है, गुंजा की शादी।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश पर। आपको सुनवाती है नदिया की पार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: गिराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: कैसे हैं परमार जी?
1: बहुत अच्छे हैं सर जी। पहली बार आपसे ही बात हुई थी, आज पीछे आपसे बात करने का मौका मिला, मेरा बड़ा सौभाग्य है सर जी।
0: अरे वाह, हमें भी अच्छा लग रहा है। कब हुई थी पिछली बार बात हमारी?
1: सर 1.5 साल करीब हो गए सर।
0: अरे बाप रे, इतना ज्यादा वक्त हो गया।
1: जी जी
0: अच्छा बताइए, सीहोर की क्या हालचाल है, कितनी बारिश हो रही है?
1: जी सर, हमारे इधर तो अच्छी बारिश हो चुकी है, 33 इंच बारिश हुई है, परके 41 हुई थी पिछले साल, और अभी मौसम धूप खिली हुई है सर, बरसात का मौसम होता है लेकिन बरसात अभी गिरी नहीं है सर हमारे इधर।
0: पूरे देश में सीहोर अपने शानदार गेहूं के लिए जाना जाता है, कौन कौन सी गेहूं की किस्में होती हैं वहाँ पर?
1: जी सर, हमारे इधर है ना 1544 लोकबंद और 8713 और जो सरबती गेहूँ रहते हैं ना सर, उसमें मैं पूरे भारत में सीहोर मंडी का गेहूँ और हमारे क्षेत्र का गेहूँ सर।
0: बहुत ज्यादा तादाद में उधर गेहूँ होता है?
1: जी हाँ सर, बहुत ज्यादा तादाद में गेहूँ होता है और खाने की किस्म बहुत जोरदार रहती है हमारे क्षेत्र में सर।
0: अच्छा,
1: जी
0: मतलब जरा विस्तार से बताएं।
1: सर जो लोकबंद गेहूँ है या 1544 है, इनकी रोटी बहुत अच्छी आती है सर, और जो सरबती गेहूँ जिसमें पूरे भारत में हमारे क्षेत्र का नाम चलता है, उसकी रोटी बहुत मुलायम रहती है सर, सुबह से शाम तक कड़क नहीं होती।
0: अच्छा क्या बात है, आपने देखिए कितने बारीकी से हमें ये फर्क बताया है। कितनी मेहनत गेहूं के खेतों में सीहोर वाले लोग करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है खेतों में काम करना, है ना?
1: जी हाँ सर, मेहनत का तो काम है, हम भी किसान है सर, किसानी करते हैं
0: जी। गेहूं के अलावा और क्या क्या होता है आपके खेतों में?
1: जी सर, अभी हमने बरसात की फसल में मक्का और सोयाबीन लगाए हैं सर जी, और 1 महीने बाद हमारी फसल आ जाएगी सर जी।
0: अच्छा, सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, क्या जमीन पर इसका कुछ असर पड़ता है सोयाबीन उगाने का?
1: नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जमीन में ज्यादा मतलब कमजोर जमीन नहीं होती सोयाबीन से सर, मक्का का ज्यादातर लगातार बोएंगे तो कमजोर जमीन होती, बाकी सोयाबीन से जमीन कमजोर नहीं होती सर।
0: तो आप अदला बदली करके फसलें उगाते रहते हैं?
1: जी हाँ सर, हम इधर से इधर पलटी कर देते हैं तो फसल उसमें अच्छी भी आती है और पैदावार भी बढ़ती है सर।
0: और खाद का इस्तेमाल कितना होता है, उर्वरक का इस्तेमाल?
1: जी सर, हमारे पास कुछ मवेशियाँ भी हैं सर, तो हम पहले तो गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं, जब हमको कम पड़ता है तो हम रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल करते हैं जो सोसाइटी से हमें मिलता है सर।
0: और रेडियो आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, खासतौर पर विविध भारती?
1: जी सर, विविध भारती तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ सर जी, मेरी 8 साल उम्र थी जब से मैं सुन रहा हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
1: सर आप सुना दीजिए, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है और गाने के बोल हैं मत कर इतना गुरूर सूरत पे ए हसीना, ये वाला किस्म है सर जी।
0: आपने कहा और हमने सुनाया आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, मैं सुशील कुमार बोल रहा सर।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव श्यामपुर, जिला यमुनानगर, तहसील बिलासपुर।
0: अच्छा, क्या हालचाल है आपके, बताइए।
1: ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी। आज
0: जी
1: पहली बार मेरी कॉल लगी है सर।
0: अच्छा, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आज पहली बार आपकी कॉल लगी है।
1: हाँ जी।
0: अब बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मेरे को सारे प्रोग्राम बढ़िया लगते हैं जी।
0: अच्छा, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मेरे को एक गीत की फरमाइश है जी, वो है जी एक प्यार का नगमा है जी।
0: क्या बात है, शोर फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: यूनुस खान सर को प्यार भरी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर सतीश शर्मा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से, आपका पुराना श्रोता।
0: जी सतीश जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर, पहले भी आपसे काफी बार बात हुई है।
0: अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश लेकर आए हैं आप?
1: सर गाना है आज नागिन फिल्म से।
0: कौन सी वाली नागिन?
1: ये सर सुनील दत्त वाली।
0: अच्छा,
1: उसमें सर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।
0: क्या बात है, ये जो नागिन फिल्म है, इस फिल्म को देखने में लोग डरते थे और सीटों के नीचे नजर डाला करते थे कि कहीं सांप तो नहीं आ गया।
1: हाँ जी सर, जब इसकी बीन वगैरह बजती थी ना इसमें,
0: हाँ
1: तो डर जाते थे हम।
0: कौन सी टॉकीज में देखी थी ये फिल्म?
1: टॉकीज में तो सर मैंने टीवी में ही देखी है ये।
0: अच्छा, विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती का सर एक तो 12 बजे आता है जिसमें आप गाने सुनाते हैं सदाबहार नगमे में, और 1 बजे से आता है आपका, वो भी सुनता हूँ। और हेलो फरमाइश तो काफी समय से मैं कोशिश कर रहा था, बहुत समय बाद कॉल लगी है।
0: देखिए पूरे देश के श्रोता लगातार कॉल करते हैं तो ये होता है कि बहुत मुश्किल से कॉल लगता है।
1: और सर आप तो हमारे फेवरेट आरजे हैं,
0: बहुत बहुत
1: बात
0: शुक्रिया।
1: करने के लिए तो बहुत दिल से कोशिश कर रहा था मैं। काफी समय पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, जैसे 2-3 बार हो चुकी है आपसे पहले, शायद आपको याद हो।
0: जी, तो बताइए कि इस समय विविध भारती के इन दिनों में सुने कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा यादगार लगे हैं?
1: एक तो आपका उजाले उनकी याद हो के आपका है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और सखी सहेली वगैरह ये भी सुनते हैं हम। और दोपहर में एक बजे से आता है जो आप शब्द नहीं देते हैं हमें, उसमें भी कई बार मैं भाग लेता हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपको सुनवाते हैं नागिन फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
0: हाँ जी, कैसे हैं हैदर जी आप?
1: बस बढ़िया है, खैरियत में है सर एकदम।
0: बिल्कुल, दुआएं बताइए।
1: फिल्म का नाम है धरती।
0: अच्छा,
1: ये रफी साहब की आवाज में गीत है, खुदा भी जब जमी पर आसमां से देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा।
0: बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है भाई आपने। जी बताइए कि कैसे हैं आप और कैसा है आपका शहर?
1: सर रतलाम से 12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और हम तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं सर।
0: जी जी
1: तो अभी सोयाबीन की फसल मतलब लगभग कटने वाली है, जिसके बाद गेहूं और लहसुन वगैरह की खेती करेंगे सर, मटर वगैरह की।
0: जी जी जी
1: और सर आकाशवाणी से मैं 1980 से जुड़ा हुआ हूँ।
0: बहुत खुशी की बात है। और लगातार विविध भारती सुनते हैं आप?
1: विविध भारती तो सर मतलब मेरे पास रेडियो है, दो रेडियो रहते हैं, मेरे खेत पे भी रहता है, घर पे भी चलता ही रहता है।
0: अच्छा, बहुत ही बढ़िया। मुझे ये बताइए कि नए गानों की बजाय पुराने गाने लोगों को क्यों पसंद आते हैं?
1: सर नए गानों में जो म्यूजिक है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा अलग ढंग का है, और पहले के जो गीतकार थे, शायर थे, गायक कलाकार थे, उनके क्या कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए पूरी करते हैं इस बातचीत को और आपको सुनवाते हैं धरती फिल्म का ये गाना आपके लिए।

0: हेलो फरमाइश
1: यूनुस भाई, ठीक हो आप? सर
0: जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: बिलाल अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ।
0: बिलाल अहमद साहब, कश्मीर में कहाँ हैं आप?
1: हम डिस्ट्रिक्ट बड़गांव है, गांव है गोंडीपना।
0: अच्छा, उस इलाके की क्या खासियत है?
1: यहाँ सर ये सेबू की दरख्त है
0: अच्छा,
1: बहुत। हाँ
0: और वादिय कश्मीर में विविध भारती किस तरह सुनाई देती है और कितना ज्यादा लोग इसे पसंद करते हैं?
1: सर, हम बहुत पसंद करते हैं, सुबह से शाम तक हम आपके प्रोग्राम सुनते हैं।
0: अच्छा, मुझे ये बताएं कि कश्मीर से बाहर के लोग जब कश्मीर घूमने आते हैं तो वो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, इन सब जगहों पर जाते हैं। कश्मीर के लोग कहाँ घूमने जाते हैं?
1: कश्मीर के लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर कंट्री में बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: नहीं, मेरा मकसद था कश्मीर के लोग कश्मीर में कहाँ घूमने जाते हैं?
1: यहाँ भी जाते हैं, बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: अच्छा, अभी आपके गांव में किस तरह का मौसम है?
1: अभी तो मौसम अच्छा है, अभी मौसम सर्मा आने वाला है तो उसमें थोड़ा बहुत मुश्किलात होते हैं, तो अभी तो ठीक मौसम है अभी।
0: जी, वैसे इन दिनों में टूरिस्ट किस तरह से आ रहे हैं, कितनी तादाद है?
1: बहुत टूरिस्ट अभी भी आते हैं, दौद पथरी है यहाँ हमारा वो इलाका है, वहाँ में नजदीक है इस गाँव से, बहुत टूरिस्ट आते हैं, सुबह से शाम तक आते हैं। अभी गुलमर्ग भी आते हैं, सोनमर्ग, वैरनाग।
0: जी, मौसम की पहली बर्फबारी हो गई हमने सुना है।
1: ना अभी बर्फबारी नहीं हुई, थोड़ा मौसम आलूदा रहते हैं, लेकिन बहुत धूप है कल से।
0: जी जी जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आज हम यूनुस भाई वो गाना है ना, दिल दिया है जान दिया ए वतन तेरे लिए।
0: कर्मा फिल्म का ये गाना है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, सुभाष घई की ये फिल्म थी। आपकी नजर वादिया कश्मीर में ये गाना किया जा रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: गोपाल बोल रहा हूँ मैं, ग्राम ककवासा से।
0: अच्छा, ये ककवासा कहाँ पड़ा भाई?
1: जी ककवासा अपना जी है ना, ये भोपाल के पास में है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा, कौन सी वाली रोड पर?
1: जी अपना है ना वो जामनेर वाली जी रोड है ना, यहाँ पर ही है जी, पास में पड़ता है अपना गांव।
0: अच्छा, तो बताइए आपके
1: आप
0: गांव की क्या
1: जी?
0: हालत है?
1: गांव की हालत बढ़िया है, बारिश हुई थी अभी 2-3 दिन बाद, अभी तो क्योंकि फसल भी आने वाली है, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: तो बारिश तो 1 महीना लेट चल रही है, हमने सुनो।
1: हाँ लेट ही चल रही है अभी तो।
0: अच्छा, बाकी गांव के हालचाल कहाँ है?
1: गांव की हालचाल तो बढ़िया है जी, मान लीजिए अभी फसल कटेगी, नवरात्रि भी आने वाली है।
0: हाँ, तो तैयारियां चल रही?
1: तैयारी करेंगे, अभी तो नहीं चल रही है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा,
1: सर जी पहली बार बात हो रही है, यूनुस खान जी बोल रहे हैं ना?
0: हाँ, यूनुस खान बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा हमें भी। अच्छा बताइए, किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सिर्फ तुम फिल्म का सुनना है, वो पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं जी वाला, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में।
0: क्या बात है, आपको तो सब याद है, बहुत रेडियो सुनते हैं आप।
1: हाँ सुनते हैं हम तो पूरे कार्यक्रम जो, बहुत सालों से सुनता है। पहले आता था वो सुपर हिट आता था सदाबहार नगमे, मन चाय गीत भी आते थे पहले 1:30 बजे से, वो बहुत सालों का रेडियो था तो वो रेडियो पे सुनते थे पहले तो।
0: और अभी
1: अभी मोबाइल ऐप पे चल रहा है अभी जी, मान लीजिए।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप पे बहुत ही अच्छा रहता है, एक बटन दबाओ और रेडियो चालू हो गया।
1: जी सर जी, द्विज भारती अवरा तो चलता ही रहता है जी, मान लीजिए सभी कार्यक्रम आपके चलते ही रहते हैं।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण हाजी बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बहुत बढ़िया है सर, आप सुनाओ, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: याराना फिल्म का गीत है सर, तेरे जैसा यार कहाँ, ये गीत सुना है सर आज।
0: अपने किस दोस्त की नजर कर रहे हैं?
1: मेरे तो दोस्त वैसे तो बहुत है, सब छोटा लोग मेरे दोस्ती है सर। किसका
0: अच्छा,
1: नाम ले?
0: ऐसा सबसे पुराना दोस्त कौन है आपका, बचपन का दोस्त?
1: बचपन का दोस्त तो अभी दवाखाने में एडमिट है सर, एक्सीडेंट होगा उनका।
0: अरे अरे अरे, तो आपको तो बहुत फिक्र होगी उनकी।
1: सर अभी उनको ही फोन लगा रहा था, लेकिन हेलो फरमाइश में फोन लगा, बहुत सालों के बाद फोन लगा मेरा।
0: बहुत साल, मतलब कितने साल हो गए?
1: मैं कम से कम 1995 से रेडियो सुन रहा
0: जी,
1: तब से फोन लगा, लेकिन लगाई भी नहीं, आज तक नहीं फोन लगा मैंने।
0: आज पहली बार फोन लगाई, ये तो बहुत खुशी की बात है फिर।
1: हाँ सर, बहुत खुशी की बात, इतनी खुशी हो गई कि मैंने फिल्म का नाम भी नहीं बता सकता था, लेकिन वैसे भी याद आ गया इसलिए बोल दिया।
0: क्या बढ़िया बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका जो दोस्त बीमार है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सुनिए याराना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है सर जी, मनोज नामदेव।
0: मनोज जी कैसे हैं आप?
1: बस सर जी बहुत बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: अच्छा अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: फिल्म का नाम रहेगा विजय पथ, तो उसमें गाना है राहों में उनसे मुलाकात।
0: वाह ये तो अजय देवगन का गाना है।
1: बिल्कुल सर।
0: और तब्बू का गाना है।
1: हाँ सर।
0: कुछ याद आता है ये फिल्म कब कहाँ देखी थी?
1: सर जी मैंने सबसे पहले फिल्म टॉकीज में देखी थी 2018 में।
0: अरे बाप रे ये सब भी याद है आपको?
1: हाँ सर बिल्कुल। और एक साल से सर मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि सर आपसे मेरी बात हो, आज जाके मेरी उम्मीद पूरी हुई है सर।
0: बिल्कुल बात हुई और हमें भी बहुत अच्छा लगा। पूरी करते हैं बातचीत, आपको सुनवाते हैं विजय पथ फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: जी संतोष कुमार राव बात कर रहा था सर, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा, बताइए बताइए, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा सर, आपके प्रोग्राम से लगातार जुड़ाव रखते हैं, मन चाहे प्रोग्राम में इतनी शानदार और मनमोहक प्रस्तुतियां देते हैं सर, बेहद ही लाजवाब प्रोग्राम होता है मन चाहे गीत और विविध भारती के कार्यक्रम जितने भी आते हैं सर, बहुत ही प्यारी प्रस्तुतियों के साथ आपका प्रसारण आता है सर।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और उमरिया में किस चीज की खदानें हैं?
1: सर यहाँ पे कोयला खदाने हैं सर यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा सा मौसम है इस समय, और कोयला की उत्खनन हमेशा यहाँ पे जारी रहती है सर।
0: अच्छा, वहाँ विविध भारती किस तरह सुनाई देता है?
1: डीटीएच के माध्यम से प्रसारण आता है, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से प्रसारण आता है, FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी शेड्यूल के माध्यम से प्रसारण आता है सर। बहुत ही अच्छी उन्नति तकनीकों के साथ आपका प्रसारण स्पष्ट रूप से पहुँच पाता है सर।
0: अच्छा, और बहुत ही प्यारा सुंदर प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इलाका है आपका?
1: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है सर, हरियालियाँ चारों तरफ है, और आपका प्रसारण बहुत ही सुमधुर आवाज के साथ पहुँचता है और पूरे परिवार का आनंद उठाते हैं हम लोग राष्ट्रीय सेवा विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के माध्यम से।
0: वाह, आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज की टू मूवी का गाना है चाहूं मैं आना।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके। पूरी करते हैं आपकी फरमाइश और आपको उमरिया में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे से। दो टेलीफोन नंबर हैं हमारे 0222867 0288 यानी 0222867 0288 और 0224002466 यानी 0224002662। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं उनसे हम विनम्र निवेदन ये करेंगे कि वो कृपया हमें आगामी 2 माह तक फोन न करें ताकि हम अपने नए श्रोताओं को मौका दे सकें। चलने से पहले आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी और मैं आपका दोस्त यूनुस खान। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाए गीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, मैं कोई नायिका नहीं, न ही कोई कविता हूं, बस एक साधारण सी इंसान हूं। आप यूं कह सकते हैं कि प्रेम में पड़ी एक मामूली सी लड़की। हाँ, मेरे लिए प्रेम वो नहीं जो सबको दिखे, प्रेम वासना नहीं, प्रेम उपासना है, प्रेम परीक्षा नहीं, प्रेम प्रतीक्षा है। हाँ, मेरे लिए प्रेम बिना शर्तों वाली शुभ दीक्षा है।

चलो चलते हैं दुनिया से दूर, बहुत दूर, दूर तुम्हारी किताबों से, कहानियों से, कविताओं से। हम चलो ना, चलते हैं किसी टापू पर जहां जुगलबंदी

होती है लहरों और झिंगुरों की, सफेद जमी को चूमता है स्याह आसमां, चूम लेंगे झट से चांद का माथा हम भी तो, है ना? चूम लेंगे झट से चांद का माथा हम भी।

हर चेहरा एक कहानी है, हर कहानी एक संघर्ष। कोई भीतर की जंग लड़ रहा है तो कोई बाहर की। एक तूफान खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। अगर आप प्यार में हो तो भावनाओं का तूफान ज्वार लिए होता है। अगर आप प्यार में हो तो रातों की नींद हराम हो जाती है। प्यार में पड़ा इंसान खाना पीना सोना उठना सब भूल जाता है। यानी प्रेम के किस्से दर्द की जागीर होते हैं, है ना।

इस अंतराल के बाद छाया गीत में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरी जुल्फे जब तुम्हारे कुर्ते के बटन में उलझती हैं और तुम उसे सुलझाने लगते हो तो प्यार आता है तुम पर। हाँ, तब जी चाहता है कि कह दूं कि जुल्फे यूं उलझाने की साजिश मैंने ही तो रची थी। छू जाते हो तुम मुझे हर रोज एक नया ख्वाब बनके। तुम्हारी बाहों में आके लगता है जैसे लिपटी हूं पश्मीने में। हाँ, ऐसा ही तो लगता है।

जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हारी स्थिर शांत भंगिमाएं देखकर लगता है आहा, क्या अद्भुत, क्या ओजपूर्ण, शांत चित, प्रकाशवान तुम्हारा प्यार है। जब तुम कहते हो तुम्हें मुझसे प्यार है अथा प्यार, तो प्रतीत होता है कि दीपोत्सव की कोई सांझ हो जैसे, जो तुम्हारी आंखों में ठहर गई है। हाँ, तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं तब।

कभी-कभी हम वो किताब बन जाते हैं जिसके पहले पन्ने पर प्रेम लिखा होता है, हाँ प्रेम, और आखिरी पन्ने पर प्रतीक्षा, सिर्फ प्रतीक्षा। बीच के पन्ने जुड़ते बिखरते रहते हैं, यहाँ वहाँ गिरते पड़ते रहते हैं। कहीं लिखी होती है खामोशी, कहीं डरावने एहसास, कहीं घायल मन और कहीं अधूरी ख्वाहिशें। यानी दर्द में लिपटी हुई एक किताब हो जाते हैं हम। हाँ, एक किताब हो जाते हैं हम तब।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
6: सो योर प्लेस और माइन, उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
7: कॉन्डम? लेकिन हम तो
6: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
7: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
8: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: सो योर प्लेस और माइन, उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है? कॉन्डम? लेकिन हम तो क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
3: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
4: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी मित्र विमलेश उमंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं
1: और मैं आपका मित्र अजीत आप सबों को उमंग कार्यक्रम की ओर से जोहार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत

0: पूजा और पायल
1: राजानगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद
0: तो श्रोताओ हम कहना चाहते हैं कि आपके संदेश हमारे लिए हमेशा प्रोत्साहन का कारण होते हैं पुनः धन्यवाद निवेदन है कि इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ
1: जी
0: आइए अब चलते हैं आविष्कार की एक और बेहद रोचक और मजेदार कहानी में
1: श्रोताओ अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ये सोचते भी नहीं है कि कभी उनका भी आविष्कार हुआ होगा नजर दौड़ाइए ना अपने चारों ओर आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं तो चलिए अब बढ़ाते हैं चर्चा को आगे
0: तो आज हम बात करेंगे बॉल पेन के बारे में
1: जी
0: वही बॉल पेन जो अक्सर हमारे हाथों में मिलता है आप सोच रहे होंगे भला बॉल पेन में ऐसी क्या कहानी हो सकती है छोटी सी कलम ही तो है बस
1: लेकिन श्रोताओ कई बार हम महसूस ही नहीं कर पाते कि जिस चीज को हम मामूली समझते हैं उसके पीछे कभी कभी पूरी दुनिया की मेहनत छिपी होती है जरा सोचिए अगर आज हमारी जेब में बॉल पेन न हो तो कितनी मुश्किल हो जाए
0: आपको याद होगा कि पहले लिखने के लिए फाउंटेन पेन हुआ करते थे जिन्हें हम कलम भी कहते थे उन दिनों समस्या ये थी कि पुराने समय की कलमें अक्सर आसानी से नहीं चलती थी
1: जी
0: फाउंटेन पेन में स्याही भरनी पड़ती थी स्याही फैल सकती थी वो रिस भी सकती थी कपड़ों में भी लग सकती थी एक बड़ी समस्या ये भी थी कि फाउंटेन पेन की लिखाई जल्दी सूखती भी नहीं थी लिखते समय निब को भी संभालना पड़ता था
1: बिल्कुल
0: और तो और गिर जाने पर निब के टूट जाने का भी डर लगा रहता था यानी समस्या पर समस्या
1: तो श्रोताओ वैज्ञानिकों और आविष्कारों के मन में सवाल था क्या ऐसी कलम बनाई जा सकती है जिसमें स्याही अपने आप नीचे आए लेकिन रिसे नहीं साथ ही साथ निब भी न टूटे और यहीं से शुरू होती है हमारे बॉल पेन के आविष्कार की रोचक यात्रा
0: तो श्रोताओ हुआ ये कि 20वीं सदी के आरंभ में कई लोगों ने ऐसी कलम बनाने के प्रयोग किए
1: जी
0: लेकिन सफलता आसान नहीं थी यही से इस कहानी में प्रवेश होता है हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाज़लो बायरो का उन्होंने ध्यान दिया कि अखबार छापने वाली मशीन की स्याही जल्दी सूख जाती है एक विचार उनके मन में कौन था
1: जी
0: अगर यही जल्दी सूखने वाली स्याही कलम में इस्तेमाल की जाए तो विचार तो अच्छा था लेकिन
1: एक नई समस्या सामने आई वो ये थी कि स्याही फाउंटेन पेन की पतली निब से आसानी से नहीं निकलती थी फिर लाज़लो बायरो ने सोचा स्याही को निब से निकालने के बजाय क्यों ना एक छोटी सी गेंद के सहारे कागज पर पहुंचाएं और उन्होंने एक बहुत ही छोटी गेंद बनाई
0: जी कल्पना कीजिए श्रोताओ जब गेंद कागज पर घूमती तो वह स्याही को अपने साथ लेकर आती और कागज पर छोड़ देती
1: जी
0: यानी गेंद घूमती जाती और उसके आगे आगे शब्द बनते जाते
1: जी
0: यही तो है नवाचार
1: कलम की अगली नोक या पॉइंट पर एक बेहद छोटी गेंद इस छोटी गेंद यानी बॉल के कारण नाम पड़ा बॉल पॉइंट पेन बायरो और उनके भाई जॉर्ज बायरो ने सन 1938 में अपने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया
0: और श्रोता मित्रों उसके बाद जो हुआ ना वो इतिहास है स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े अधिकारी तक सबके हाथ में अब बॉल पेन दिखने लगी
1: जी
0: इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था ढक्कन खोलिए कागज पर रखिए और लिखना शुरू कर दी
1: बिल्कुल
0: न स्याही की दवा चाहिए और न निब को बार बार स्याही में डुबोने की झंझट
1: जी आज बॉल पेन के अंदर एक पतली सी स्याही की एक ट्यूब होती है और सबसे आगे एक बहुत छोटी गेंद जब हम लिखते हैं तो नन्ही गेंद घूमती है और स्याही को नियंत्रित मात्रा में कागज पर पहुंचा देती है वाह एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी
0: जी एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी तो साथियों याद रखिएगा आज जब हम परीक्षा देते हैं हस्ताक्षर करते हैं नोट्स लिखते हैं और फॉर्म भरते हैं उस समय हमारी उंगलियों के बीच चुपचाप चलती है वही तकनीक जिसे बायरो ने लगभग एक सदी पहले विकसित किया था
1: तो ये थी हमारी आज की जानकारी आशा है आपको अच्छी लगी होगी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से
0: तो हमारा प्रश्न है कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वे किस देश के थे प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
1: बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वो किस देश के थे आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
0: तो श्रोताओं अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम शीर्षक है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा दो की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि समझदारी इसी में है कि यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे की भावना से रहें तो इसी में सबकी भलाई है।
0: समझदारी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 33 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
0: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क।
2: होशियार,
3: समझदार,
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
3: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी।
4: आओ खेलें झटपट झटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षरों की।

0: और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। शीर्षक है, असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।
1: प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है। किस प्रकार उन्होंने बिजली के बल्ब के आविष्कार के क्रम में कई बार असफलताओं का सामना किया और उनसे हतोत्साहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया। नमस्कार साथियों,
2: प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग।
1: तो आइए सबसे पहले पूछते हैं एक पहेली। जरा बताइए तो वो कौन है?
2: उन्हें दुनिया में सबसे अधिक आविष्कार करने और उनका पेटेंट लेने का श्रेय प्राप्त है।
1: उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए। जरा सोचिए।
2: साथियों, यदि आपके मन में थॉमस एडिसन का नाम आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
1: जी हाँ, वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें मुख्य रूप से बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाना जाता है।
2: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की सातवीं संतान थे।
1: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
2: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
3: अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना।
2: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
4: माँ, ये चिट्ठी।
2: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
1: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
4: माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
1: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
4: अच्छा,
1: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
4: अच्छा,
1: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे। साथियों, उनकी माँ स्वयं एक शिक्षिका थी और वो जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंक गणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी।
2: उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े होने पर काम करना शुरू किया और परिवार की सहायता भी करने लगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अखबार और चॉकलेट बेचने का काम किया।
1: रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
2: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा। उनकी मां उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी मां के कारण ही उत्पन्न हुई।
5: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
2: ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
5: साथियों, उनकी स्मृति में थॉमस एडिसन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाया गया है। इस विशाल म्यूजियम की तीसरी मंजिल में उन किताबों का विशाल संग्रह है जो किताबें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में पढ़ी थीं। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी मां के बारे में कहा था,
2: मेरी मां ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थी और मुझ पर विश्वास करती थी।
5: थॉमस एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही उस समय बनाई थी जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं कि वो बेहद परिश्रमी थे और अक्सर अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते वो लेबोरेटरी की कुर्सी या टेबल पर ही सो जाया करते थे। समय बीता, इस बीच उनकी मां का देहांत हो गया था। बहुत वर्ष बीते और एडिसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की बुलंदियों को लांघते हुए विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक बन चुके थे।
2: उनके द्वारा किए गए आविष्कारों में मुख्य रूप से कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, चलचित्र, ग्रामोफोन, विद्युत वोट रिकॉर्डर, विद्युत वितरण प्रणाली और बिजली का बल्ब है। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
5: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब जले लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
2: अथक परिश्रम और सतत प्रयोगों के बाद अंत में 1889 में उन्हें बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हाथ लगी। पहला बिजली का सफल बल्ब लगभग 40 घंटों तक जला। 1880 में उन्होंने इसमें और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था।
5: जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस बल्ब को देखने के लिए आते थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने इस महान आविष्कार के लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस को बिजली के बल्बों से जगमगा दे।
2: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
5: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
2: लगभग 10,000 बार।
5: 10,000 बार?
2: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
5: अच्छा,
2: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
5: अरे वाह।
2: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
5: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
2: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे दो लाभ मिलते हैं। पहली बात,
6: लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते। और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
5: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
6: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
5: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
6: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।

0: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
0: FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। शाम के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। शाम के 6:45 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं संध्या वंदन।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 4

संध्या वंदन का आनंद आप अभी ले रहे थे। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। श्रोताओं, अब वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचारों को सुनने का।

0: पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एमएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की

आयोजित परीक्षा में लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य तीनों देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। जनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को अत्यधिक बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारियों, संचार अवरोध और शांतिपूर्ण समूहों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल से दबाया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,248 अंक गिरकर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट के साथ 23,063 पर दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय एथलीट सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ के फाइनल में कांस्य पदक जीत लिया है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। रोशिदीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। जय कुमार, अंशा बाबू, मानू टीएस और वशदीप कौर की मिक्स्ड टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनमेश पुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं परवीन ने 65 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। हिंदी में समाचारों के बाद अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी, आकाशवाणी।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत

0: करती है उचित परिवहन व्यवस्था जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में गांव-गांव पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
0: देश में सुगम आवागमन बेहतर शिक्षा उत्तम स्वास्थ्य बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में गांव-गांव पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने
3: श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी शहडोल शाम के 7:10 होने वाले हैं आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से

0: जी पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा संकल्प अभियान के सेवा यात्रियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज 106 पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में आधुनिक मेस सुविधाओं का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल भोपाल में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ करेंगे। और एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन, निशानेबाजी में कांस्य और वुशु में रजत पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वड़नगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा करके ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में ही बनी है।
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उन सब विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली है। वहीं प्रदेश भर में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सांस्कृतिक, बौद्धिक और सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में जिला स्तरीय भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं मंदसौर में नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुतियां दी गईं। इसी प्रकार मुरैना और नर्मदापुरम सहित प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 106 पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निर्मित आधुनिक मेस सुविधाओं का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में पहली बार पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में मेस सुविधा शुरू होने से प्रदेश के करीब 9,000 छात्र छात्राओं को स्वच्छ, स्वस्थित और बेहतर भोजन की सुविधा मिलेगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल भोपाल के भेल दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर दोनों नेता 7 शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड की बसें शामिल हैं। इस सेवा के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बस कनेक्टिविटी मजबूत करने तथा प्रदेश की 75% ग्राम पंचायतों तक परिवहन सेवा का विस्तार करने का लक्ष्य है। योजना के तहत पहले वर्ष में 1,500 बसें संचालित की जाएंगी और वर्ष 2031 तक इनकी संख्या 15,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। बसों में CCTV कैमरे, पैनिक बटन, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग और पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी, जबकि इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए बसों की रियल टाइम निगरानी भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ यह सफर आज भी जारी है। इसी क्रम में आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पीएम जनमन योजना की।
3: पीएम जनमन योजना के तहत उमरिया जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के सर्वांगीण विकास को लक्ष्य अनुरूप मूर्त रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 15,826 बैगा हितग्राहियों को चयनित किया गया, जिसमें से 10,363 हितग्राहियों के आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। ग्राम सरमनिया निवासी हितग्राहियों ने आवास योजना का लाभ मिलने के बाद देश के प्रधानमंत्री को बधाई दी है।
4: मैं बिहारी बैगा बोला था, हमारा पहले कच्चा मकान था, इस समय प्रधानमंत्री द्वारा पक्का घर मिल गया है, अच्छी खुशहाल हन।
5: मेरी नाम सुशीला वायगा है, मेरी पहले कच्चा मकान रही थी, अब मैं बढ़िया पक्का घर पा चुकी हूँ, अब मेरा परिवार खुश रहे, मैं खुश रहूँ, धन्यवाद।
3: पीएम जनमन योजना के तहत जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त पूजा द्विवेदी ने बताया है कि
6: जनजातीय परिवारों के आधार कार्ड, जनधन बैंक खाते, आयुष्मान भारत कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड एवं राशन कार्ड व आंगनवाड़ी केंद्रों का 100% क्रियान्वयन किया जा चुका है। साथ ही पीएम जनमन योजना अंतर्गत 10,368 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और शेष कार्य भी प्रगतिरत है।
3: आकाशवाणी भोपाल के लिए उमरिया से मैं अरुण कुमार त्रिपाठी।
0: प्रदेश में हरित ऊर्जा और ऊर्जा भंडार के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल नई दिल्ली में बीर सिंहपुर 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे परियोजना और प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम में निवेशकों और अन्य हितधारकों के साथ प्रश्नोत्तर एवं परामर्श सत्र भी होगा। यह आयोजन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के लिए प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को सामने रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत 18 से 29 वर्ष तक के युवाओं को ऑन द जॉब प्रशिक्षण दिया जाएगा। कंपनी ने विभिन्न कार्यालयों और विद्युत ग्रहों में प्रशिक्षण के लिए 559 पद उपलब्ध कराए हैं। प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होगी और पात्र प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिमाह 8,000 से 10,000 रुपये तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश के 18 से 29 वर्ष तक की आयु के स्थानीय निवासी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 23 सितंबर से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 15 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के विद्यार्थियों का 630 सदस्यीय दल 27 सितंबर को शैक्षणिक भ्रमण के लिए अहमदाबाद रवाना होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दल में करीब 520 विद्यार्थी, 104 शिक्षक और 6 नियंत्रण अधिकारी शामिल हैं। वहीं जापान के एशियाई खेलों में आज अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। वहीं रोशिबेना देवी ने वुशु के 60 किलो की सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में जय कुमार, अंशा बाबू, मानू टीएस और रशदीप कौर की पुरुष मिक्स्ड टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एशियन गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने मार्शल आर्ट की महिलाओं की 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतने पर नोएम रोशिबेना देवी और पुरुषों के डबल स्कल्स इवेंट में कांस्य पदक जीतने पर सतनाम सिंह और सलमान खान को शुभकामनाएं दी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में पेट्रोल पंपों पर ईंधन की गुणवत्ता और उपभोक्ता सुविधाओं की जांच के लिए प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। मंदसौर जिले के सीतामऊ में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत उद्यम संवाद का आयोजन किया गया। राजगढ़ में सेवा संकल्प अभियान के तहत 27 सितंबर को निकलने वाली वडनगर से वाराणसी मोटरसाइकिल यात्रा की तैयारियों की राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने निरीक्षण किया। नीमच में 25 सितंबर को होने वाले गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए कलेक्टर ने सुरक्षा और सुचारू व्यवस्थाओं के निर्देश जारी किए हैं। झाबुआ जिले में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर कलेक्टर ने कल यानी 25 सितंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। और शिवपुरी जिले के पोहरी अनुभाग के अंतर्गत ग्राम छर्च में शासकीय विद्यालय के पास से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शहडोल। शाम के 7:21 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव गांव, पंचायत पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का।
0: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
3: मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
4: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
2: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
4: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
2: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
4: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
0: किसान वाणी कार्यक्रम सुने वाले सभी किसान भैया बहन मनोज भैया की दो हाथ जोड़ी की राम राम स्वीकारें। भैया जरा कल्पना करके देखो, एक किसान के खेत में हरी भरी सब्जियां लहला रही हैं, पास में पॉली हाउस और नेट हाउस में मौसम की चुनौतियों से बचाव करवे के लाने फसलों की तैयारी करी जा रही है।

0: वहीं दूसरी तरफ खेत में एक कोने में मधुमक्खियों के बक्सा रखे हैं, जहां मधुमक्खियां फूलों से रस चूस चूस के इकट्ठा कर रही हैं और शहद बना रही हैं। और वहीं ठंडों की फसल स्ट्रॉबेरी जो है, बाकी भी तैयारी हो रही है और स्ट्रॉबेरी के पौधा लगाए जा रहे हैं। भैया कल्पना करो, अगर ऐसो खेत होए तो कैसो रहे। हाँ हाँ भैया, आज के कार्यक्रम को हमारो जो विषय है वो भी कछु ऐसो ही है, मतलब आज को हमारो कार्यक्रम कछु इन्हीं विषयों पे केंद्रित रहेगो। खेती में नवाचार, विविधीकरण और अतिरिक्त आय की संभावनाएं कैसे लाई जाए, एक लाने जरूरी है कि पॉली हाउस और नेट हाउस में खेती करी जाए। किसान भैया बहनों, मौसम को बदलतो मिजाज खेती के सामने बड़ी चुनौती बन चुको है। कभू तेज गर्मी, कभू बेमौसम बरसात और कहीं कहीं कीट पतंगों को प्रकोप। ऐसे में पॉली हाउस और नेट हाउस जैसी संरक्षित खेती की तकनीकें किसानों को अपनी फसल के लाने सुरक्षित करबे में बहुत ज्यादा मदद कर रही हैं। इनमें सब्जियों, फूलों और अन्य उपयुक्त फसलों की खेती करी जा सकत है। तो भैया एक सवाल जो उठत है कि का संरक्षित खेती केवल सब्जियां उगाबे तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं भैया, कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे कि मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों से भी कौन सी तरीके से हम आगे और पैसा कमा सकते हैं। तो आज हम आपके लाने एक बातचीत सुनवा रहे हैं, मधुमक्खी पालन से आय सृजन। जानकारी दे रहे हैं मधुमक्खी प्रशिक्षक एवं उद्यमी प्रवीण रघुवंशी। इनसे बातचीत कर रही हैं रानी रेखवार। सुनत है।
1: नमस्कार किसान भाइयों, कहते हैं कि मीठा मीठा सबको पसंद होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहद। मधुमक्खी पालन से आय सृजन किस तरह से हो सकती है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए प्रवीण रघुवंशी हमारे स्टूडियो में आए हैं। मधुमक्खी पालन विशेषज्ञ हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से मधुमक्खी पालन से आय सृजन हमारे किसान भाई कर सकते हैं। सर, मधुमक्खी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत छोटा नन्हा सा जीव होता है, अपने नन्हे नन्हे परों से वो एक मीठा सा पदार्थ बनाता है जो सबके लिए सेहतमंद होता है। तो किस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं वो अतिरिक्त आय का साधन बना सकते हैं मधुमक्खी पालन?
2: देखिए किसान भाई, ऐसा कोई भी किसान नहीं है जो मधुमक्खी पालन करके अपना आय में वृद्धि ना कर सके। बस कुछ बातों का ध्यान हमें इसमें देना पड़ता है। जैसे हमारे अभी बकरी पालन या हम गाय पालन की बात करते हैं तो ये हमारे पैतृक बहुत पुरखों से किया जा रहा है, पर जब एक मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो ये पुरखों से नहीं किया जा रहा, जिस कारण से हमें इसे पहले अच्छी तरह सीखने के बाद फिर शुरुआत करना पड़ता है। प्रशिक्षण लेने के बाद फिर वो कम मधुमक्खी के परिवार से शुरुआत करें, 4, 5, 10, ऐसा नहीं कि वो एक बार ट्रेनिंग लेके आ गया 50, 100, 200 ले ले, क्योंकि जब तक वो करके नहीं देखेगा तब तक उसको समस्याएं नहीं पता चलेगी। तो कुछ पेटियां लेके अपने काम पहले मधुमक्खी को जिंदा रखें 1 साल, और उसके बाद फिर अपनी मधुमक्खियों को बढ़ा के जितना भी शहद उत्पादन है वो स्टार्ट कर दे, शहद उत्पादन चालू कर देगा, लोग देखेंगे उसे कि भाई ये शहद उत्पादन करते हैं, वो लोग खुद ही उनके पास आएंगे और शहद खरीद के लेके जाएंगे।
1: बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं कि भोपाल की अगर हम थोड़ा बात करें तो इसके आसपास गेहूं और जो धान है वो ज्यादा उगाया जाता है, तो जो ये फसलें हैं मधुमक्खी को पर्याप्त भोजन दे पाएंगी और उनसे पर्याप्त हमें शहद मिल पाएगा?
2: मैम जी, अभी तक का मेरे मधुमक्खी पालन के करियर का सबसे अच्छा प्रश्न है, इस चीज पे कभी भी कोई भी ध्यान नहीं देता। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सभी कह रहे हैं कि भाई मधुमक्खी पालन करें, जिससे बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, आय पैदा होगी, शहद उत्पादन होगा, पर फ्लावर के बारे में नहीं बात करते कि भाई अगर हम भोपाल में हमें मधुमक्खी पालन करना है तो अब जैसे धान की बात करें और गेहूं की बात करें, दोनों में ही हनी या नेक्टर नहीं आता, इससे बिल्कुल भी मधुमक्खियों को नेक्टर ही नहीं मिलेगा, तो मधुमक्खियां शहद ही नहीं बनाएगी। पर ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे केवल ये दो ही रहती है, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एरिया है, रोड साइड बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, यूकेलिप्टस बहुत ज्यादा लगा हुआ है, इसके बाद हमारा सीसम बहुत ज्यादा हमारे आसपास में देखने को मिलता है, रोड साइड में आपको एक पिटूनिया करके पौधा होता है वो मिल जाता है, तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। साथ में हमारे भोपाल के आसपास ऐसे जंगल अवेलेबल हैं जिसमें बहुत विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे होते हैं
1: जी।
2: तो वहां से भी शहद उत्पादन हो जाता है मधुमक्खी के लिए, पर इन फसल से उतना ज्यादा शहद नहीं मिलेगा। तो किसान को खुद भी ऐसी क्रॉपिंग पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा हमारे खेत में कि भाई एक एकड़ दो एकड़ पे वो ऐसी क्रॉप्स लगाए जिससे अधिक शहद उत्पादन हो, जैसे सरसों हो गया, इसके बाद सनफ्लावर हो गया, है ना, कुछ फ्रूट क्रॉप्स है जैसे हमारा आज के टाइम में पैशन फ्रूट बहुत अच्छा चल रहा है, ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छा चल रहा है। तो इन प्रकार के पौधों को अगर आप लगाएंगे तो शहद उत्पादन भी बढ़ेगा, साथ में आपकी आय भी।
1: लेकिन रघुवंशी जी, क्या होता है कि जब हम एक चुनौती बहुत बड़ी हमारे किसान भाइयों के सामने आती है और वो होती है बाजार की, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बाजार में बड़े बड़े ब्रांड हैं, दावा करते हैं कि ये शुद्ध शहद है, तो ऐसे में जो हमारे छोटे किसान भाई हैं वो कम मात्रा में कर रहे हैं, वो किस तरह से फिर बाजार की इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को स्थापित कर पाए? आपने भी एक मंच तैयार किया है।
2: देखिए मैम, दो तीन तरीके हैं। पहला तो जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो खुद हनी प्रोडक्शन नहीं करते, उत्पादन नहीं करते, तो किसान भाई ऐसा एक ग्रुप बना ले आसपास जिसमें वो एफपीओ बना ले और शहद उत्पादन करे, और अपने एफपीओ के माध्यम से आप कंपनी से डायरेक्टली कनेक्ट हो सके, होकर वहाँ पे शहद उत्पादन करके आप बेच सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात आपने हमारे किसान भाइयों के लिए बताई। अब आपकी बात सुनकर कई हमारे किसान भाई हैं युवा जिनके मन में ये बात आ रही है कि शायद वो मधुमक्खी पालन करें, कौन सा सही समय है कि वो मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं, जो शुरू कर रहे हैं?
2: ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि साल भर प्रकृति में फूल नहीं विद्यमान होता
1: जी।
2: फूल जिस समय विद्यमान होगा उसी समय शहद पैदा होगा। जैसे ही हमारी वर्षा ऋतु खत्म होती है, बसंत ऋतु चालू होने के बाद मार्च अप्रैल तक ही हनी का उत्पादन ले सकते हैं। अब मैंने ये बात इसीलिए बताया कि इस बीच हमें मधुमक्खी पालन चालू करना है। अगर धोखे से हमने मार्च अप्रैल के बाद स्टार्ट किया तो हमारे सामने बहुत सारी समस्या आएगी, हनी उत्पादन होगा नहीं, तो हम डीमोटिवेट होके उस कार्य को बंद कर देंगे और लोगों को भी बोलेंगे कि ये काम बेकार है। तो हमेशा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये तीन महीने से आप स्टार्ट करें, आपको तीन चार छह महीने में उत्पादन भी मिल जाएगा, आपका उत्साह भी बढ़ेगा और फिर आपको आगे समस्याएं भी।
1: बिल्कुल, कौन कौन से उपकरण हैं जो मधुमक्खी पालन में काम आते हैं?
2: देखिए जब हम शुरुआत करते हैं मधुमक्खी पालन की तो हमें ज्यादा उपकरण की आवश्यकता नहीं है। हमें एक बी वेल चाहिए रहेगा, सिर में पहनने का कैप होता है, हाइव टूल चाहिए रहेगा जिससे हम हाइव को निकाल सके, फ्रेम में जो छत्ता है उसको निकाल सके, एक धुआं देने वाली मशीन होती जिसे स्मोकर कहते हैं, और हनी निकालने का यंत्र। शुरुआती तौर पे हमें इतने ही यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो अभी बहुत सारे यंत्र हैं, जैसे पॉलन ट्रैप हो गया, प्रोपोलिस स्ट्रिप हो गया, बट ये सेकंड फेज में हमें उपयोग।
1: बिल्कुल, तो इन बातों का हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे। तो शुरुआत करने के लिए कम से कम कितने बक्सों की जरूरत होती है और लागत क्या आएगी ये भी बता दें थोड़ा।
2: देखिये शुरुआत तो कितने भी बक्सों से की जा सकती है, बट मेरा सजेशन है एक से पांच जो कॉलोनी है, परिवार है, उससे ही किसान भाई शुरुआत करें। इससे ज्यादा वो शुरुआत करेगा तो कई बार क्या है, मधुमक्खियों की मरने की समस्या भी आती है कि भाई दो चार कॉलोनी खत्म हो गई, तो वो लगभग छह महीने एक साल पहले इनसे काम करे, उसमें वो अच्छे से सीख जाए, उसको अभी उसे शहद उत्पादन नहीं कर, केवल एक साल उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आज की डेट पे मैंने मधुमक्खी खरीदी है तो अगली इसी डेट तक मुझे इन्हें जिंदा। जब ये करने में सक्षम हो जाएगा तो वो खुद ही बाकी सब चीजें
1: व्यवहार सीखे उनके साथ में, थोड़ा सा सामंजस्य सीख जाए उनको कि वो किस तरह से व्यवहार करती है। अगर उनसे सामंजस्य आपने सीख लिया तो आप बहुत अच्छा शहद उत्पादन कर सकते हैं। बहुत ही काम की बात आपने कही है कि समय देना पड़ेगा थोड़ा सा और उसके बाद आप बहुत अच्छा मधुमक्खी पालन सीख सकते हैं। अब शहद तो हमारे किसान भाई ले लेते हैं, लेकिन क्या शहद के अलावा भी मधुमक्खी पालन से हम उत्पाद निकाल सकते हैं, कितना मुनाफा कमा सकते हैं हमारे किसान भाई?
2: अभी के समय शहद तो हम बाय प्रोडक्ट के रूप में मानते हैं, लोग शहद को कोर प्रोडक्ट मानते हैं, हमारे हिसाब से तो वो बाय प्रोडक्ट, इसीलिए क्योंकि मधुमक्खी के परिवार से सबसे अच्छी चीज एक पॉलन परागकण, जो फूलों में परागकण होते हैं, मधुमक्खियां उसे भी एकत्रित करती है, शहद और परागकण दोनों को मिला के वो अपने बॉडी में डालती है, उसे खाती है। तो पॉलन भी हम परागकण को भी एकत्रित करते हैं, इसके अलावा प्रोपोलिस, फर पॉलिश जो एक अलग अलग प्रकारों के झाड़ों के रेजीन होते हैं उसे एकत्रित करके अपने हाइव में लाती है, जो बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी का होता है। बहुत सारे आयुर्वेदिक क्रीम्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, टूथपेस्ट वगैरह, इनमें इसका उपयोग किया जाता है फर पॉलिश का। वैसे बी वैक्स, आज के टाइम में जितनी भी आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाएंगे, अगर आप किसी

0: नेचुरल क्रीम की बात करेंगे, अगर वो नेचुरल है तो उसमें बी वैक्स ही होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। इसके अलावा बी वेनम आज के समय में लगभग 1 करोड़ 26 लाख रुपए के जी जाता है। उसके अलावा आप जो हाइव होता है अलग से एक पूरे परिवार बना के भी आप मधुमक्खी बेच सकते हैं। रॉयल जेली पैदा होता है उसमें, उसका भी बहुत अच्छा मार्केट है।
1: तो बहुत सारे उत्पाद हैं जो मिल सकते हैं हमारे किसान भाइयों को, और वो बाजार में बेचकर उनकी बहुत अच्छी आय मिल सकती है। अब बात होती है कि मधुमक्खी पालन भी एक कृषि कार्य ही है, तो जैसे अन्य फसलों में बीमारियां होती हैं और परेशानियों का सामना किसान भाइयों को करना पड़ता, मधुमक्खी पालन में भी होता है, तो कैसे हमारे किसान भाई इससे निपटें?
0: देखिए, मधुमक्खी पालन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, जितनी भी बीमारियां आती हैं, उनके निदान केवल दो है।
1: जी
0: सबसे पहले परिवार को सुदृढ़ बनाए रखना, मधुमक्खियों की संख्या हमेशा अच्छी बनी रहे, वो हम अगर देख लेंगे तो किसी प्रकार की बीमारी हमारे परिवार में, मधुमक्खी के परिवार में नहीं आएगी। दूसरा, साफ सफाई, हमेशा साफ सफाई हमारे हाइव में। कई कई लोग क्या करते हैं, आज खरीद लिया, एक साल तक उसे खोल के ही नहीं देख रहे, तो अंदर मोम गिरते रहता है, छोटे छोटे दूसरे कीड़े वो मोम खाने के लिए आ जाते हैं। उसके अलावा जो छिपकलियां होती है, स्नैक होते हैं, ये भी हाइव के आसपास आके बैठ जाते हैं, मक्खियों को खाते रहते हैं। येलो जैकेट ततैया जो होता है वो खा लेता है। एक विशेष कीट हमारे यहाँ जो वैक्स मूथ होता है, जब साफ सफाई ना हो और हमारी मधुमक्खियों की संख्या कम हो जाए तब वैक्स मूथ बहुत ज्यादा अटैक करता है बारिश के समय। इसके अलावा कुछ और माइट्स हैं जो हमारा व्रोवा माइट्स के नाम से एक जानी जाती है, एक राइन माइट है, इस प्रकार की है। एक दो पक्षी भी है जो परेशान ज्यादा करते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, एक ग्रीन बी ईटर है और एक ब्लैक ड्रैगो करके पक्षी आते हैं। ये दो भी अपने हाइव के आसपास कॉलोनी बना, अपना भी घोंसला बना लेते हैं और मक्खियों को खाते हैं। तो इन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक प्रॉपर ट्रेनिंग हम हमेशा किसी भी अच्छे संस्थान से ले ले। हमारे मध्य प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना है जो मधुमक्खी पालन पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन है जो भी मधुमक्खी पालन पे काम कर रहा है।
1: बिल्कुल, तो थोड़ा सा प्रशिक्षण के साथ काम करेंगे तो उनको सारी समस्याओं से निजात मिल सकता है, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। क्या भारत सरकार, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB की तरफ से भी क्या मधुमक्खी पालकों को विशेष योजनाएं सब्सिडी हैं?
0: बिल्कुल, मधुमक्खी पालन के लिए नेशनल बी बोर्ड, मधुमक्खी पालन के लिए मध्य प्रदेश और पूरे अलग जितने भी स्टेट है सभी जगह फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में मैं खुद प्रवीण रघुवंशी, मेरी कंपनी ही नेशनल बी बोर्ड के बिहाफ पे ट्रेनिंग कराती है, जो जिसमें किसान का रहना खाना और ट्रेनिंग पूरी मुफ्त रहती है, इसमें कोई भी खर्चा नहीं लगता है। उसके अलावा नेशनल बी बोर्ड के बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, 5 लाख से लेके 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट हैं जो वो किसान या किसान समूह के लिए बनाता है। 5 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट है जो बी वेनम थेरेपी सेंटर है कि भाई हनी बीस की थेरेपी होती है, पहले प्रशिक्षण ले लें उसके बाद थेरेपी सेंटर चालू कर लें। लगभग 20 लाख का इनका एक प्रोजेक्ट है जिसमें ब्रीडिंग सेंटर बनाना है, किसान को वो पहले सीख जाए, ब्रीडिंग सेंटर बनाए, ब्रीडिंग सेंटर बना के 20 को ब्रीड करके नेशनल बी बोर्ड के अदर स्टार्टअप्स जो रहते हैं उनको वो बेचे। तो नेशनल बी बोर्ड इसी में बीच में हो जाता है कि आप पैदा करो, हम आपके पास के 20 को बिकाएंगे। वैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी कुछ स्कीम है बी कीपिंग की, जिसमें अभी मध्य प्रदेश सरकार में लगभग 40% सब्सिडी है। साथ में खादी ग्राम उद्योग है, ये आपको अलग अलग समय में प्रोग्राम होते हैं तो 5 हाइव या 10 हाइव लगभग 80% सब्सिडी के आसपास देता है उसमें।
1: बिल्कुल, तो कहना चाहिए कि सरकार भी आपके साथ है, बस करने की जरूरत है, आपके अंदर एक हिम्मत आनी चाहिए। चलते चलते क्या संदेश हमारे किसान भाइयों को?
0: चलते चलते सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के एक मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे आसपास के एरिया में जब भी हम मधुमक्खी पालन करें या हम मधुमक्खी पालन ना भी करें तो भी जो पेस्टिसाइड है या इंसेक्टिसाइड है उसका अंधाधुंध उपयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि हम नुकसान देने वाले कीट को तो उससे मार ही देते हैं, साथ में हमारे पौधों में जो पॉलिनेशन करने वाले हैं, दूसरे कीड़ों को खाने वाले जो इंसेक्ट्स हैं, उन सभी को भी हम वो पेस्टिसाइड से या कीटनाशक से मार देते हैं। तो कभी भी जब हमारी फसल फूल पे हो कभी भी हमें किसी प्रकार का भी इंसेक्टिसाइड नहीं डालना है। अगर आपने उस समय डाला तो आपका उत्पादन लगभग 20-50% तक गिर सकता है।
1: बहुत ही सार्थक जानकारी मधुमक्खी पालन से आय सृजन के बारे में आपने हमें दी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
2: भैया। अपन जा एक बातचीत सुन रहे थे मधुमक्खी पालन से आय सृजन। श्री प्रवीण रघुवंशी से बातचीत कर रही थी रानी रैकवार। भैया, हमारे भारत की यही एक खासियत है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें लगाई जा सकते हैं। कैसे के हमारे देश में वातावरण हर प्रांत हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग है, जहाँ की मिट्टी अलग अलग है और जहाँ सदा 100 मौसम नहीं रहे, मतलब मौसम भी साल में बदलत रहते हैं और बई हिसाब से जहाँ फसलें उगाई जात रहते हैं। ऐसे देश की महिमा अगर गा के सुनाई जाए तो बड़ो आनंद आते है। सुनते हैं एक जो बढ़िया मीठो नो देशभक्ति गीत रई सिंह यादव और साथियों के सुरों में।
3: कद

0: गुजारो ए सोनो नो भारत हमारो में देश है मियारो ए सोनो नो भारत हमारो।
1: भैया वे अपन ने जो बड़ो मीठो देशभक्ति गीत सुनो गा रहे थे रईस सिंह यादव और साथी। भैया जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे देश की जो खासियत है कि जहाँ में मट्टी बहुत अलग अलग है, साल भर में 3 से 4 मौसम बदलते हैं, इन मौसमों के हिसाब से फसलें उगाई जाते हैं, और जब अब आवे वालों टाइम ठंड के मौसम को है तो अब भारत में लगभग लगभग हर प्रांत में एक फसल लगाई जाती है, मीठी मीठी स्ट्रॉबेरी। मध्य प्रदेश में भी स्ट्रॉबेरी की खेती अब बहुतायत में हो रही है, बहुत सारे किसान भैया स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। अब हम आपके लाने स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में भी बताए देते हैं कि आप अपने खेत के छोटे से हिस्सा में स्ट्रॉबेरी की खेती करके कैसे लाभ कमा सकते हैं। भैया स्ट्रॉबेरी की खेती करने से पहले किसान भैयों के लाने बहुत सारी शुरुआत करने पड़ते हैं, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करने पड़ते हैं। कैसे के स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करने से पहले पौधों की गुणवत्ता, जलवायु, सिंचाई, रोग प्रबंधन, उत्पादन लागत और बिक्री के बाजार

0: प्रकार की जानकारी ले वो बहुत जरूरी है। तो भैया स्ट्रॉबेरी की खेती की जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ, सुनाते हैं।
1: नमस्कार किसान भाइयों, तो स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही ठंडी जलवायु का पौधा है जो फल के रूप में स्थापित है और बहुत छोटे क्षेत्र में लगा के भी इकाई क्षेत्र में किसानों को ज्यादा उपज और ज्यादा लाभ दे सकने वाली फसल है जो बहुत कम अवधि में तैयार होती चली जाती है। तो ये खेती पहले जो है हिमाचल प्रदेश तक ही सीमित थी जो ठंडी जलवायु के क्षेत्र थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो लोगों को स्वाद मिला और जो उसका स्वभाव है जितना मीठापन है, इसकी वजह से ये बहुत दिनों दिन डिमांड बढ़ाते हुए उत्तर भारत में काफी रूप में स्थापित हो चुकी है। किसानों ने इसमें बहुत उगाने में सफलता पाई है। मध्य प्रदेश में भी काफी सारे ठंडे क्षेत्रों में ये फसल जो है वो अपने आप में उत्पादन देके सफल बना रही है। तो इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच जो है वो 5.5 से 6.5 का होना चाहिए। इसमें उठे हुए बेड बना के खेती करी जानी चाहिए जिसमें पौधे से पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर की हो। और जो इसकी वैरायटी है वो उसमें नाबिया स्ट्रॉबेरी की, चैंडलर, कैमारोजा, विंटर डॉन, स्वीट चार्ली ऐसी वैरायटी हैं जो ज़्यादा बड़े फल और मीठे फल देती हैं जिसकी बाजार डिमांड बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अक्टूबर से नवंबर का जो महीना रबी मौसम की शुरुआत के साथ शुरू हो रहा है, इस टाइम में इसकी रुपाई जो है उठे हुए बेड में करनी चाहिए। अगर संभव बन सके तो कहीं ग्रीन हाउस में करें ताकि चिड़ियों से बचाव हो, ड्रिप इरिगेशन की टपक सिंचाई प्रणाली का प्रयोग हो, मौसम का हो, रेडिएशन का हो, कीड़ों से बचाव हो जाए जहाँ पे जो है इसके फलों को खाए नहीं, और मल्चिंग जैसी विधि अपनाकर आप फल को जमीन पे लगने सड़ने से बचा सकते हैं जिसमें फल की क्वालिटी लगातार बनी रहती है। तो इसमें आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास जैसी फंगस मारने वाली फंजीसाइड का प्रयोग करें जैविक, और बिबेरिया बेसियाना या मेटराइजा मैनिसोपली जैसे या नीम ऑयल जैसे कीटनाशक का प्रयोग करें जिससे मधुमक्खियां ना मरें और बाकी कीड़ों ने जो है इस फसल को नुकसान ना पहुंचाएं। तो ऐसी फसल जो है पौधे पे 250 से 500 ग्राम तक का फल उत्पादन देती है जो एक एकड़ में 15 से 20 टन तक का उत्पादन देता है। किसान चाहें तो इसको खुद ही बाजार में ले जाएं, छोटे जैसे मशरूम के पैकिंग होती वैसे बेचें, या आइसक्रीम में, जैम में, होटल मिठाई उद्योग में देकर इसके लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद
0: भैया। अभी अपन जा स्ट्रॉबेरी की खेती के ऊपर एक लघु वार्ता सुन रहे थे, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शुभम कुमार कुलश्रेष्ठ। जैसे कि भैया आज की किसान वाणी में हमने बात करी है पॉली हाउस की, शेड नेट तकनीक की, मधुमक्खी पालन की हमने बात करी है, स्ट्रॉबेरी की हमने बात कर ली है। मनो, जिस सबरे काम करबे किलाने, कृषि में हमें सफल होबे किलाने, हमें अपनी जो बहने हैं उनको सहयोग हर हाल में चाहिए पड़त है। और यही मारे सरकार ने एक योजना शुरू करी है जेखो कृषि सखी योजना नाम दौगव है। कृषि सखी योजना ग्रामीण महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षित करके उन्हें किसानों तक कृषि संबंधित जानकारियां और सेवाएं पहुंचावे वाली कृषि पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में तैयार करबे की पहल है। भैया कृषि सखी का है जा एक बार ऐसे समझ सकते हैं, प्रशिक्षित कृषि सखी गांव में किसानों की मदद करेंगी, जैसे मृदा परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य संबंधित सलाह देंगी, प्राकृतिक एवं टिकाऊ खेती की जानकारियां देंगी, बीज बैंक और बीज प्रबंधन की जानकारियां देंगी, जैविक बायो इनपुट तैयार करबे और बाकी उपयोग की जानकारियां देंगी, फसल उत्पादन और कीट प्रबंधन संबंधित मार्गदर्शन देंगी किसानों के लाने, पशुधन प्रबंधन की प्राथमिक जानकारी इनके लाने हुई है जो किसानों तक साझा करेंगी, किसानों के खेतों पर प्रशिक्षण प्रदर्शन आयोजित करेंगी, फसल बीमा केसीसी आदि से संबंधित सहायता, विभिन्न कृषि योजनाओं के लाने किसानों से जानकारी और डेटा एकत्रित करबे को काम भी जे कृषि सखी बहने करेगी। और हाँ, जो केवल सामान्य स्वयं से भी काम नहीं है, प्रमाणित कृषि सखी को विभिन्न कृषि योजनाओं के अंतर्गत करे गए कामों के लाने निर्धारित संसाधन शुल्क या मानदेय मिल सकत है। मध्य प्रदेश उन 12 राज्यों में शामिल है जहाँ कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत कर दी गई है। तो हमारी जो बहने हैं वे भी कृषि सखी बने, आय अर्जित करें और कृषि के विकास में अपनी महती भूमिका अदा करें। और अब चले चले तो मंडी के भाव की जानकारी दे दे। कल यानी 22 सितंबर 2026 को मध्य प्रदेश की प्रमुख इंदौर मंडी में अनाजों के भाव जाहे हिसाब से थे। चना को न्यूनतम भाव 4,820 रुपया, अधिकतम 9,000 रुपया। डालर चना न्यूनतम 3,000 रुपया, अधिकतम 8,905 रुपया। तुअर को न्यूनतम भाव तो इंदौर मंडी में कल 5,305 रुपया, अधिकतम 6,695 रुपया। ज्वार न्यूनतम 2,031 रुपया भाव से बिकी, अधिकतम भाव 2,272 रुपया। और सोयाबीन को भाव तो न्यूनतम 1,620 रुपया, अधिकतम 6,040 रुपया प्रति क्विंटल। ये थे मंडी के भाव। अब चलवी की बिरिया हो गई है, मिले कोई और कार्यक्रम में। तब तक के लाने अपने कृषि मित्र मनोज सक्सेना का दियो आज्ञा, स्वीकार करो दो हाथ जोड़े की राम राम।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त। और लो पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच
2: है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम किसान वाणी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। विषय है गांव की बदलती तस्वीर।
2: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के आठवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा गांव की बदलती तस्वीर। इसमें भाग ले रहे हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और वरिष्ठ पत्रकार और कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 25 वर्षों का जन सेवा का सफर पूरा हुआ है। इसमें 3 टर्म उनके लगभग 13 साल मुख्यमंत्री के तौर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर का रहा है और पिछला 12 साल देश के प्रधानमंत्री के तौर पर काफी अनुभव भरा रहा है। इस दौरान गवर्नेंस में काफी परिवर्तन हुए, आम जनता तक काफी लाभ की योजनाएं लाई गई हैं। इसी के तहत जन सेवा से देश सेवा सीरीज के तहत आज हम आपके सामने उपस्थित हैं और हम बात करेंगे कि पिछले लगभग 12 वर्षों में देश के गांवों में क्या कुछ बदलाव आया है और वो बदलाव से जो ग्रामीण है हमारे हैं वो कितने लाभान्वित हुए हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डीएस मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत मिश्रा साहब आपका।
4: धन्यवाद।
3: और साथ में हमारे साथ एसपी सिंह भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा साहब आपके पास ही आता हूँ, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है सेक्रेटरी के तौर पर, केंद्र में काम करते हुए, राज्य में काम करते हुए आप बारीकी से समाज के अंतिम वर्ग के लोगों के साथ न जुड़े रहे बल्कि आपने काम किया। पिछले 12 वर्षों में अगर हम गांव की बात करें, क्योंकि गांव जो है भारत की विकास यात्रा में हमेशा से केंद्र में रहे हैं, तो पिछले 10-12 वर्षों में क्या कुछ गांव में आपको परिवर्तन देखने को मिला?

0: सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, न केवल हर टोले को सड़क जोड़े, बल्कि वहाँ पे जो बाजार है, वहाँ का जो स्कूल है, वहाँ का जो मंडी है, हर एक को गांव की सड़क ले जाकर के जोड़ दे। हर व्यक्ति को जो कि गरीब आदमी है उसके पास मकान नहीं है, हर एक के लिए आवास हो। जो जल है वो जल हैंडपंप से नहीं बल्कि हर घर में जल पहुंचे, यानी हर घर में नल हो और हर नल में जल हो। गांव में एक बहुत बड़ी समस्या लोगों को होती थी कि अब उनकी जो खेत बाड़ी है तो वो तो खसरा खतौनी था उनके पास
1: जी,
0: लेकिन जहां वो रहते थे उसका उनकी आबादी के इलाके का कोई भी स्वामित्व नहीं था। अब घरौनी जो स्वामित्व योजना है उसके तहत उनके घर का भी एक रिकॉर्ड हो और उसके माध्यम से अगर वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उनको लोन भी मिल सकता। तो एक पूरी पूरी सोच में परिवर्तन आ गया। मैं कहूंगा आप स्वच्छ भारत मिशन में जैसे पहले
1: जी,
0: अब मैं तो बहुत नीचे लेवल से SDM से लेकर के मैं उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी तक रहा, पहले हम थोड़े से शौचालय बना देते थे, ये कहते थे गरीबों को शौचालय मिल जाएगा, और शौचालय जहां बनता था वहां कोई भूसा रख रहा है, कहीं कोई बकरी बांध रहा है, कुछ और काम कर रहा है। अब लोगों के सोच में सुधार हो गया, मैंने एक प्रकार से जन आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो कार्यक्रम चला
1: जी,
0: उसमें 100% शत प्रतिशत सारे के सारे गांव हमारे ODF ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। उसके बाद ODF प्लस हो गए। अब वहां पे वेस्ट के मैनेजमेंट की भी बात हो गई, वो भी काफी काम हो गया। अब वहां पे जो ग्रे वाटर होता है, जो उपयुक्त पानी होता है, उस पानी को भी उपयोग करके उसका लाभ लेने के लिए इसके बारे में, तो ये मुझे लगता है कि एक आमूलचूल परिवर्तन
1: जी।
0: और अभी मुझे लगता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का पिछला 10-12 साल का जो ये परिवर्तन आया है, अब आने वाले समय में इसको लेकर के जैसे अब डिजिटल व्यवस्था भी गाँव में हो गई है, अब इसको लेकर के पूरी आर्थिक व्यवस्था जो गांव की हमारे एक आदर्श गांव बन सके उसके बारे में बड़ा काम होने वाला है।
1: मिश्रा साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से क्या परिदृश्य में बदलाव आया है उसको चित्रित किया है। सिंह साहब आपके पास आते हैं, सोच में बदलाव आया है, और जब सोच बदलती है तो समाज बदलता है, और हम जानते हैं कि जब समाज बदलता है तो पूरा का पूरा देश बदलता है। जैसा मिश्रा साहब ने बताया कि दरअसल अब फोकस जो है केवल ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ही नहीं है कि एक दो सामान लग गया और हमने कह दिया कि जी वहां पर नल पहुंच गया या वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच गई या बिजली विद्युतीकरण हो गया। दरअसल जीवन की गुणवत्ता और बेसिक सर्विसेज का सबको एक्सेस मिले, सबकी वहां तक पहुंच हो और वो उनके उपयोग में आए, यहां तक मामला पहुंचा है। आपने कई गांवों का दौरा किया है, रिपोर्टिंग के दौरान किया है और संपर्क में रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो गुणवत्ता में परिवर्तन आया है गांवों में लोगों की लाइफस्टाइल में, उससे देश को आगे बढ़ने में कितनी मदद मिली है?
2: देखिए, देश में ग्रामीण विकास हर सरकार की प्राथमिकता में रहा होगा, लेकिन सोच का जैसे भी मिश्रा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो सोच में परिवर्तन आता है कि आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, सरकार कैसे पहुंचे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में गांव गरीब ही रहा है। गरीबी क्यों है और गांव की स्थिति क्या है? गांव उसे कहते थे जो कनेक्टिविटी का अभाव हो, जहां पे पक्की छत वाले किसी के पास घर न हो, मतलब बुनियादी सुविधाओं का एक तरह से अभाव होता था। उन सारे अभाव किया, उस जो अंतर है उसे कैसे पाटा जाए, ये काम बखूबी उन्होंने किया है। चाहे वो कनेक्टिविटी के अभाव में आप कह सकते हैं कि सूचना का प्रसार हुआ हो, इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, सड़कों के थ्रू, ग्रामीण सड़कें, हमें लगता है कि कोई गांव अब नहीं बचा है। 2028 तक ये प्लान बना है कि हर छोटे बड़े जहां कहीं भी हो, एक तो पुरानी सड़कों का उन्नयन हुआ, नई सड़कें बनी, हर गाँव और हर कस्बा और हर बस्ती को जोड़ने का काम किया। दूसरा काम की जो बुनियादी सुविधाएं गाँव को चाहिए होगी वो होती है हर सिर को पक्की छत, यानी हर एक को मकान देना, मकान किसे देना, जो मकान पक्का मकान न बना सके, ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उन्हें चिन्हित करके वहां तक ये लाभ पहुंचाना। दूसरा, मकान भी कैसा हो, मकान पहले भी इंदिरा आवास योजना के नाम पर मकान बना करते थे, अब मकान कैसे बनता है, मकान की वो बुनियादी सुविधाएं, उनको पानी की सुविधाएं, हैंडपंप से नहीं, नल के जल, जल जीवन मिशन इसका एक सबसे नायाब उदाहरण है, जो हर घर तक नल से और जिसमें शुद्ध पानी पहुंचाया जाए, तो एक तो हैंडपंप से मुक्ति मिलेगी और हर घर तक नल जाएगा। दूसरा, हर घर में लट्टू जले, लट्टू का मतलब बल्ब जले, यानी बिजली जाए, और हर घर तक बिजली जाएगी तो गांव में बिजली हो, यानी वो पूरा गांव विद्युतीकरण हो जाएगा। इसी तरह से स्वच्छता सबसे बड़ी समस्या गांव की थी स्वास्थ्य को लेके, और स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा जो कारण था खराब होने का, बीमारी होने का, गरीब होने का, कुपोषण सबसे बड़ी वजह थी, स्वच्छता का अभाव, शौचालय का अभाव। तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक शौचालय बनाने का काम और उस शौचालय का प्रयोग करना, ये जो प्रवृत्ति में बदलाव, हमारे मिश्रा जी ने बहुत सही कहा कि प्रवृत्ति और सोच में जो बदलाव आया, हैबिट लोगों की चेंज हो गई कि नहीं हमें बाथरूम में जाना है, हम शौचालय जो हमारे लिए बनाया गया, जो हमने बनाया अपने लिए, उसका उपयोग किया।

0: जाए, लोगों को यह बताना कि इससे कितना फायदा है, इसके न होने से कितना नुकसान हो रहा था। दूसरा, पानी, जल जनित बीमारियों का प्रकोप होता था, खास तौर से इस मौसम में देखिए तो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार का एक जो टाइफाइड मतलब जल जनित बीमारियों का एक तरह से प्रकोप होता था, अब उसमें कमी आई है। इवन देन कि लोगों के रोग नहीं होगा, कुपोषण नहीं होगा, तो गरीबी नहीं आएगी, गरीबी की बड़ी वजह यही सब थी। तो गरीबी को कम कैसे किया जाए और गांव को कैसे उन्नत बनाया जाए, और हर घर में जो माँ बहनें खाना बनाया करती थी वो उपले से, लकड़ी से, यानी धुआं, तो धुआं रहित चूल्हा यानी कुकिंग गैस LPG हर घर तक सिलेंडर पहुंचाना, उज्ज्वला योजना, ये ऐसी योजना है जिससे माँ बहनें आज अगर कहें तो दिल से धन्यवाद देती है इस सरकार को। महिलाओं के लिए शौचालय और खाना पकाने के लिए उनको स्वच्छ गैस, जो LPG कनेक्शन और सिलेंडर मिला है, ये दो चीजें अगर कहें तो महिलाओं का उत्थान हुआ, सशक्तिकरण हुआ, उन्हें काम मिला। दूसरी चीज की आप कहेंगे कि मनरेगा जैसा काम गांव में, हर गांव में गरीब से गरीब, जो सबसे निचले तबके पे जिसे कोई काम नहीं मिल सकता है या कोई काम करना चाहता है लेकिन उसके हाथ में काम नहीं था, गांव के लोगों के साथ है कि खेती के बाद कोई काम नहीं है, भूमिहीन मजदूरों के लिए तो और भी मुश्किल है, कोई उसके लिए काम नहीं है, ऐसे में उन्होंने क्रिएट किया, इस सरकार ने उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को काम दिया जाए, यही मनरेगा के तौर पर एक योजना लाई गई।
1: बिल्कुल, इन सब विषयों पे सिंह साहब हम अलग से बात करेंगे। आप दोनों ने एक 360 डिग्री पिक्चर, जो गाँव की सोच में बदलाव आया है, लोगों की जो प्रवृत्ति में बदलाव आया है, इस पर हमने चर्चा की। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, इस पर थोड़ी डिटेल में अब हम चर्चा करेंगे। दरअसल ग्रामीण भारत में खुले में शौच की समस्या जो थी, केवल एक स्वच्छता का विषय नहीं थी, बल्कि स्वास्थ्य, महिलाओं की गरिमा और बच्चों के भविष्य से भी जुड़ी हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने ग्रामीण जीवन में कहें तो एक तरीके से बिहेवियरल और सोशल चेंज पैदा किया है, इसे आप कैसे बताएंगे?
2: बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2014 का वो दृश्य याद करी, जब उन्होंने कहा था कि पूरे देश को हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150 साल जब मनाएंगे जन्म दिवस का, तो सबसे बड़ी उनके लिए श्रद्धांजलि होगी कि हम देश को स्वच्छ कर दें, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए। और तब लोगों को लगा था कि ये संभव ही नहीं है। आज आप देखिए, लगभग 12.2 करोड़ से ज्यादा जो है शौचालय गांव-गांव में बने हैं, करीब 3 लाख से ज्यादा कम्युनिटी शौचालय, जहाँ पे कम्युनिटी का होता है उसके बने हैं। आज न केवल शौचालय ही नहीं बने बल्कि शौचालय का उपयोग हो रहा है, मैंने लोगों के व्यवहार में, विचार में उनके परिवर्तन आए कि हम शौचालय बनेगा तो उससे क्या लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज आपने कहा गरिमा, जो हमारी माताओं बहनों को सड़क पे जाना पड़ता था, खेतों में जाना पड़ता था, उनको सांप से डर है, कोई उनकी सुरक्षा, उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा से उसको कॉम्प्रोमाइज है, रात के शाम के वक्त या सुबह के वक्त वो जाती थी, दिन भर अपने पेट में उस मल को रखती थी जिससे बीमारियां फैलती,
1: पीड़ा में रहती थी।
2: तो आप सोचिए कि उसको लेकर के ऐसी तमाम सारी स्टडीज हैं जो स्टडी कराएंगे, उसके बाद अब लगता है कि इससे जो है हमारे जो मृत्यु दर है बच्चों का, चाइल्ड डेथ के बारे में, 5 साल के डेथ के बारे में, लोगों के पोषण के बारे में, हर चीज में सुधार हुआ है। जो हमारी डायरियल डिजीजे थी, इतने सारे बच्चों का डेथ होता था उसमें, जो मैंने वाटर बॉर्न डिजीजेज हुआ करती थी क्योंकि उनका जो फीकल स्लज था वो उससे मिल जाता था, तो उन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा लोगों को लाभ मिला है। अब जो इसके बाद सरकार ने न केवल ODF किया, 100% गांव तो ODF हो गए, ODF प्लस, यानी उसको शौचालय न केवल बने बल्कि शौचालय का उपयोग भी हो, और उसके ऊपर जाकर के जो वेस्ट का मैनेजमेंट, आज हर गांव में वेस्ट मैनेजमेंट, जो वहां पे ग्रे वाटर है, ग्रे वाटर जिसमें तमाम सारे मच्छर पैदा होते हैं, इसको लेकर के मलेरिया से लेकर के तमाम किस्म की बीमारियां होती हैं, डेंगू की बीमारी होती है, उससे लोगों को निजात मिले। तो ये पूरा का पूरा एक स्वच्छता का अभियान जो चला, लोगों के लिए अकल्पनीय है कि ऐसा सक्सेसफुल कार्यक्रम हमारे देश में चलाया गया और उसका रिजल्ट सबके सामने है।
1: बिल्कुल, स्वच्छता मिशन के साथ साथ सिंह साहब अभी आप जल जीवन मिशन की भी बात कर रहे थे कि सिर्फ एक हैंडपंप गाड़ देना, किसी गांव में ही जल पहुंचाना नहीं था, लंबे समय तक ग्रामीण महिलाओं और परिवारों के लिए रोज पानी लाना जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा था, इसमें चुनौतियां थी और बहुत वक्त भी उनका बर्बाद होता था। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक जल नल से पहुंचाने के प्रयास ने ग्रामीण परिवारों, खास करके महिलाओं के जीवन को बहुत आसान बनाया है। और गांव में हर घर में नल कैसे पहुंचा है और हर नल में जल कैसे आया है, आइए सुनते हैं जल जीवन मिशन पर एक रिपोर्ट।
3: श्रोताओं, बेहतर जीवन की शुरुआत कई छोटी छोटी जरूरतों से होती है, इनमें सबसे जरूरी है पीने का साफ पानी। गांव में लंबे समय तक बहुत से परिवारों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। खासकर महिलाओं को घर के लिए पानी लाने में काफी समय और मेहनत लगती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य है हर ग्रामीण परिवार के घर तक नल से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल पहुंचाना। आसान भाषा में कहें तो पहले जिस पानी के लिए परिवार को घर से बाहर जाना पड़ता था, उसे नल के जरिए घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जल जीवन मिशन केवल पाइप बिछाने की योजना नहीं है, इसका उद्देश्य गांवों में पानी की नियमित और सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए गांवों में पानी के स्रोत, पाइपलाइन, पानी की टंकियों और दूसरी जरूरी सुविधाओं को विकसित किया जाता है। श्रोताओं, घर में नल से पानी आने का मतलब केवल सुविधा बढ़ना नहीं है, इससे परिवार का समय भी बचता है। बच्चों को पानी लाने के बजाय पढ़ाई और दूसरी गतिविधियों के लिए समय मिल सकता है। महिलाओं की रोजमर्रा की मेहनत कम हो सकती है और परिवार को घर के पास पानी उपलब्ध हो सकता है। इस काम में गांव के लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदाय पानी की व्यवस्था को बनाए रखने और उसकी निगरानी में भूमिका निभाते हैं। यानी पानी की सुविधा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि गांव के लोगों की भी साझा जिम्मेदारी है। हर घर बेहतर जीवन की बात करें तो इसके साथ कई दूसरी योजनाएं भी जुड़ी हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गांवों में स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांवों को बेहतर सड़कों से जोड़ने का काम करती हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण और ज्योतिग्राम जैसी पहलें बिजली की पहुंच और आपूर्ति को बेहतर बनाने से जुड़ी हैं। वहीं स्वामित्व गांवों में लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति से जुड़े अधिकारों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की दिशा में काम करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर केंद्रित है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास पर जोर देता है। श्रोताओं, इन प्रयासों का उद्देश्य अलग अलग जरूर है लेकिन लक्ष्य एक ही है, गांव में रहने वाले परिवारों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके जीवन को आसान बनाना। जब घर तक साफ पानी पहुंचे, गांव तक सड़क पहुंचे, बिजली मिले, स्वच्छता की सुविधा हो और लोगों को अपनी संपत्ति तथा सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिले तो गांव का जीवन भी तेजी से बदलता है। यही है हर घर बेहतर जीवन की भावना, जहां विकास का मतलब केवल बड़ी इमारतें या बड़े शहर नहीं बल्कि गांव के हर परिवार तक जरूरी सुविधाओं की पहुँच भी है।
1: आपको क्या लगता है कि नल का कनेक्शन देना तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ही, उसके साथ नियमितता और पर्याप्तता के साथ गुणवत्ता वाला पानी भी उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी सफलता रही है सरकार की। अब जल जीवन मिशन के सामने क्या कुछ बड़ी चुनौती है या अगला स्टेप क्या है?
0: देखिए, पानी पहुंचाना एक है लेकिन पानी तो पहले भी लोग पिया करते थे, बिना पानी के तो कोई जी नहीं सकता। पानी पहले भी पहुंचता था लेकिन शुद्ध पानी पहुंचाना और पर्याप्त पानी पहुंचाना, जितनी जरूरत है एक व्यक्ति की 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। और नल से जब पानी जाएगा टैंक में चढ़ के वो साफ होगा और स्वच्छ पानी जब लोगों के घर तक पहुंचेगा तो उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर होगी, स्वस्थ होंगे वो। मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो जल जनित बीमारियां होती हैं, जो पानी जम जाता है उससे मच्छर पैदा होते हैं और पानी में कुछ ऐसी चीजें चली जाती हैं, ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरियल और फंगल चीजें चली जाती हैं, अगर आपके पेट में चली जाए तो डायरिया हो जाए, ढेर सारे तरह के रोग होंगे। और अगर विपत्ति आनी है और गरीबी आनी है जिसको कहते हैं ना, तो वो उसके लिए अगर रोग हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए तो वो अपने आप गरीब हो जाता है, गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा। तो अगर स्वास्थ्य को ठीक कर दिया गया तो एक पानी शुद्ध दे करके इस सरकार ने लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है इस सरकार ने, कि कम से कम बीमारी नहीं होगी और गरीबी से निजात मिलने में होगा। दूसरा, बच्चे कुपोषण के कार नहीं होंगे और हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, हमारे ग्रामीण बच्चों की उत्पादकता बढ़ेगी, हमारी सोच बढ़ेगी। तो जो ये सोच थी सरकार की पानी को लेके, वो सोचिए कि 81% गांव तक, इतना बड़ा देश जिसमें 6.5 लाख से ज्यादा गांव हो और अगर देखा जाए तो बस्तियों को अगर गिनती कर लिया जाए तो हैबिटेट्स को तो ये करीब 10 लाख के आसपास संख्या होगी, और जरा समझिए 2.5 लाख के आसपास पंचायतें हैं और इनमें 81% 82% लोगों तक नल का सप्लाई की लाइन बिछ गई और हमें लगता है कि 70% से 75% तक पानी सप्लाई भी होने लगा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में हम सबको पानी नल से देने लगेंगे। नल कहने में बड़ा आसान सा दिखता है लेकिन कितना खर्च हुआ होगा, कितनी बड़ी सोच रही होगी। और इसका प्रयोग प्रधानमंत्री ने, जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्रित्व काल में अपने गुजरात में इन्होंने इसको लागू करके देखा, जहां पर वाटर डिफिसिट स्टेट्स है, जहां पर पानी की कमी, पीने की पानी की कमी, सिंचाई की कमी, हर तरह के पानी की कमी थी, शुद्ध पानी जल की तो बड़ी मुश्किलें थी। उस स्टेट को नर्मदा बांध से सरोवर इतने बड़े बड़े बांध बने और नदियों में जो बरसात का पानी उसे रोक रोक करके जगह जगह चेक डैम बना के वहां से बिजली पैदा करना, पानी को साफ करना, टैंक तक पहुंचाना और साफ कर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना, लोगों के खेत तक पानी पहुंचाना, यानी कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है गांव की। तो गांव को लेके जो कांसेप्ट हमारे प्रधानमंत्री का है वो हमें लगता है कि बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा नेता मिला है। अभी एक बात और कह रहे थे मिश्रा जी, मैं कहूं देश का नेता खुद झाड़ू लेके अगर मैदान में उतर जाए कि सफाई मैं करूंगा तो यह देश स्वच्छ ही होगा। और देखिए कितनी सफाई हो गई कि कोई व्यक्ति जरा सा भी हिचकता नहीं सफाई करने में। आप जरा गाड़ी में आप कहीं चल रहे हो, बिहेवियर चेंज कैसे आता है, हमें नहीं लगता कि आप कोई चीज एक कागज का टुकड़ा भी एक खिड़की से नीचे कोई फेंकता हुआ मिल जाए, अगर कोई फेंकता हुआ मिल जाए तो पीछे वाली गाड़ी जाकर के उसे रोकती है क्यों ऐसा किया, उसे अपराध बोध होता है। इस तरह की सोच में परिवर्तन, प्रधानमंत्री या इस देश का जब नेता इस तरह का बिहेव करता है, इस तरह का लीड करता है तो आम जनता तक बात पहुंचती है और लोग उस पर अमल करते हैं।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है सिंह जी ने, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आज हम ये नजारा नहीं देखते कि गाड़ी से किसी ने केले का छिलका फेंक दिया, किसी ने कुछ फेंक दिया। तो ये स्वभाव में जो परिवर्तन आया है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या हित में नहीं है आम जनता के, ये बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज है। और साथ में मिश्रा जी आपसे महत्वपूर्ण सवाल अब मुझे ये पूछना है कि 2047 में हम विकसित भारत का लक्ष्य देख रहे हैं, उसे प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं और गांवों की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है। बिजली गांवों में पहुंचाया जाना, क्योंकि डिजिटाइजेशन हो चुका है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, अगर बिजली पहुंचाने की सोच सरकार की आज से 10 साल पहले नहीं होती तो आज शायद गांव में हर हाथ में मोबाइल नहीं होता। तो बिजली की उपलब्धता गांवों के सामाजिक और आर्थिक जीवन को किस तरीके से बदला है, इसे आप कैसे देखते हैं?
2: देखिए इसके लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी आगे दोबारा मैं फिर आपको ले जाऊंगा 15 अगस्त के स्पीच में जो उन्होंने कहा था कि देश में ऐसे तमाम सारे गांव हैं जो आज भी जो सरकारी डेफिनेशन है उसके मुताबिक वहां पे बिजली नहीं पहुंची है, तो कुछ जगह तो बिजली पहुंच भी नहीं सकती, इतनी दुरूह जगह पे पड़े हुए, तो उसके तो हमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की जरूरत है जहां पे बिजली नहीं थी और उसको अप्रैल 2018 तक सब जगह 100% बिजली पहुंचा दी गई। अब सवाल है बिजली पहुंचाना सरहद में, उससे क्या गांव में बिजली लोगों को मिलने लगती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। कुछ लोगों के पास बिजली का जब खंभा ले जाकर के उनको अपने घर में बिजली लेने के लिए, गांव में कुछ दो चार लोग जो संभ्रांत लोग हैं उन लोगों के पास बिजली पहुंच जाती है, बाकी सब लोग इससे वंचित रहते हैं। एक पूरी मुहिम चली सौभाग्य योजना, उस सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचाना, जैसे हर घर में नल और हर नल में जल है तो हर घर में बिजली और हर बिजली में से बल्ब उसको जलेगा, माने हर घर में जो बच्चे, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, देखे छोटे बच्चे थे हम ढिबरी में पढ़ते थे
1: जी,
2: लालटेन में पढ़ते थे, अब लालटेन ढिबरी से पढ़ने से पढ़ तो लेते थे लेकिन हमारी आंखों में नुकसान पड़ता था, जितना हम पढ़ सकते थे बहुत जल्दी थकान हो जाती थी, उतना नहीं पढ़ सकते थे कि उसकी उतनी पर्याप्त रोशनी नहीं है। अब लोगों को गांव-गांव में घर घर में बिजली पहुंचाना और वहां पे लाइट हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इंचित किंचित कहीं जो बचे हैं, जो लोग नहीं सामने आएंगे, उनको RDSS योजना में कहीं कहीं उनकी पूरी हो जाएगी। और ये उपलब्धि केवल पढ़ने के लिए नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम बिजली गांव में पहुंचाते हैं आप ये समझ लीजिए कि वो हमारा इंडस्ट्री 1.0 था, 2.0, 3.0, मतलब वो अगले लेवल पे जो ग्रामीण उद्योग है वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे। जब घर में बिजली पहुंचेगी तो तमाम सारी और चीजें जो हमारे सुख सुविधाएं की चीजें हैं, क्यों शहरी इलाके में लोग रहे उनके लिए अगर उनको टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध हो, उनको जो है अन्य सुविधाएं जो बिजली चलती है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, गांव में क्यों नहीं उपलब्ध हो? बच्चे जो तमाम सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब बिजली पहुंच गई तो वहां के माध्यम से आज डिजिटली बहुत सारा जो कार्यक्रम होता है वो सारे के सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अब गांव में जो PSC है वो गांव के PSC को सीधे कनेक्ट करके उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो बिजली ने पूरी जिंदगी में सुधार कर दी, ग्रामीण व्यवस्था सुधार कर दी और ये हमारा जो लाभ मिला। और मुझे लगता है इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है जो गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने वहां एक ज्योतिर्ग्राम योजना
1: जी जी ज्योतिर्ग्राम,
2: उस ज्योतिर्ग्राम योजना में क्या किया उन्होंने कि ग्रामीण का जो एग्रीकल्चर का फीडर है उसको जनरल फीडर से अलग कर दिया। और फीडर के अलग करने से क्या हो कि बिजली का सही प्रकार से आप उपयोग करने लगे, उससे आपको घर भर में बिजली जो है जो 8-9 घंटे मिलती थी वो 20-21 घंटे बिजली मिलनी चालू हो गई, तो बिजली की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। आज तो बहुत सारा जो बिजली के नाम पे आज सोलर लाइट तो इतना उपयोगी हो गई गांव-गांव में, जो है गांव में सोलर लाइट उपयोगी, पहले हम लोग जो सोलर से केवल कुछ कुकिंग का काम कर लेते थे, सोलर के कुछ लैंप को लालटेन के तौर पे उसका यूज कर लेते थे, आज सोलर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हथियार बन गया। सोनभद्र जिला जो है इतना ज्यादा दूर दूर तक वहां पे गांव फैले हुए, बहुत सारे जगह बिजली के खंभे वहां नहीं पहुंच सकते, पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, काफी उसमें एक्सपेंस होगा, बट सोलर के पहुंच करके सोलर के माध्यम से बहुत सारी चीज कर सकते हैं, वो गोबर गैस को यूज करके इसको कर रहे हैं, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव जो हमारे लोगों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
1: सिंह साहब, जैसा अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 13 वर्षों का उनका वहां का अनुभव रहा, उससे उस अनुभव को जो उन्होंने यहां पर कई योजनाओं में लागू किया है, एक गवर्नेंस के तौर पर कहें, योजनाएं बनाकर कहें, उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि स्वच्छता हो गया, पानी मिलने लगा, बिजली पहुंच गई, लेकिन गांव की एक्सेसिबिलिटी अगर सड़क ना रहे प्रॉपर तरीके से तो फिर कैसे काम चलेगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गांव को बाजार से जिसने जोड़ने का काम किया, इसके बारे में आपकी क्या राय?
0: देखिए, गांव की सबसे बड़ी मुश्किल, मैंने कहा ना, सबसे बड़ी कठिन परिस्थिति थी कनेक्टिविटी का अभाव, चाहे सड़कों का अभाव हो चाहे संचार साधनों का अभाव रहा हो, ये दोनों अभाव से कटा हुआ जो एरिया होता था हम उसे गांव बोल दिया करते थे। तो जो कनेक्टिविटी को तैयार करने का सबसे बड़ा मुद्दा था, हमारे 2000 में ही अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ग्राम सड़क योजना करके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना करके योजना चलाई थी, और उसे जो 1, 2, 3, 4 चरणों में ये पूरे देश में बनी, आज कह सकते हैं कि करीब करीब 7-8 लाख किलोमीटर से ऊपर की बन चुकी है हमारी सड़कें। तो जरा समझिए कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी सड़कों का जाल बिछ गया, उससे फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि गांव में जो खेतिहर किसान, छोटा किसान है, मान लीजिए थोड़ी सी सब्जी उगा लिया, थोड़ा दूध या कुछ और अपना तैयार कर लिया, और जो ऐसी चीजें जो बाजार में बिक सकती हैं, तो वो अपनी साइकिल पर, अपनी मोटरसाइकिल पर, अपने संसाधनों से, अपनी गाड़ी से, रिक्शे से, जो भी उसके पास साधन है, या किराए के ट्रैक्टर से, वो बाजार को पहुंचा लेता है, तो उसको एक काम मिल गया। दूसरा सबसे बड़ी फायदा यह हुआ कि स्वास्थ्य का, मिश्रा जी ने कहा कि अभी तो डिजिटली कनेक्ट होकर के हम कहीं से भी कनेक्ट होकर के हमें सुविधाएं मिल जाती हैं। हम कहते हैं कि गांव का आदमी, मुझे वो दिन याद है कि जब लोग बीमार होते थे तो सड़क नहीं होती थी, तो अब चारपाई पर लेकर के जो भी अस्पताल या डॉक्टर होता था उससे इलाज कराते थे। आज स्थिति नहीं है, आज स्थिति यह है कि आप किसी भी 100-200 किलोमीटर तो बड़ी आसानी से आप यात्रा कर ही सकते हैं, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, क्योंकि सड़कों की गुणवत्ता इतनी बढ़िया है कि हमें लगता है कि जो ये PMGSY की सड़कें हैं वो किसी भी शहर की सड़क से कमजोर नहीं है, क्योंकि जो इसका मानक है बनाने का वो बड़ा सख्त है। जो एजेंसी बनाती है उसी को 10 साल तक के लिए मेंटेनेंस का भी होता है, उसका पेमेंट रोक लिया जाता है, कुछ तभी दिया जाएगा जब वो मेंटेनेंस कंप्लीट करेगा, मेंटेनेंस का हिस्सा भी उसका जोड़ दिया जाता है। यानी इतनी वैज्ञानिक तरीके से ये सिस्टम बनाया गया है कि उसमें बेईमानी की चांसेस बहुत कम है।
1: आपने मिश्रा जी देखा होगा कि लोगों के पास अपनी संपत्ति होती है, अपना जमीन होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स उनके पास बहुत स्पष्ट नहीं थे, तो स्वामित्व, गांव में संपत्ति का अधिकार, स्वामित्व योजना जो है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।
2: देखिए, स्वामित्व योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि गांव में जो खेती वाली जमीन होती है उसका तो खतौनी है, खसरा है, उसका नक्शा बना हुआ है, अब तो आज वो सारा डिजिटाइज भी हो गया है, लेकिन जो आबादी की जमीन थी, आबादी की जमीन का कोई भी रिकॉर्ड किसी के पास नहीं था। नतीजन लोगों की आपस में लड़ाई होती थी, मैं तो देखता था फौजदारी होती थी, आज उनको इंडस्ट्री लगानी है, घर पे अपने कोई नया काम करना है, तो उसके लिए उनके पास अगर रिकॉर्ड नहीं है तो फिर वो बैंक से लोन भी नहीं ले सकते हैं। आज जो देखे जैम का जो सबसे बड़ा जो ट्रेनिटी आई है, तो जनधन योजना में हर आदमी का अपना खाता हो गया है, लेकिन खाते में बैंक वाला आपको लोन नहीं देगा आपका रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जो प्रारंभ किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व की योजना, जिसको हम लोग घरौनी भी कहते हैं, खतौनी कहते हैं जो खाता से हो गया, घरौनी कहते हैं घर से हो गया, इसमें ड्रोन के द्वारा सर्वे करके पूरे गांव का सर्वे कर लेते
1: हैं, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल,
2: बिल्कुल बिल्कुल, ड्रोन से सर्वे करते हैं, वहां पे नीचे हर एक का जो लाइनिंग खींच देते हैं उसका सर्वे करते हैं, उसकी फिर ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं, और ग्राउंड ट्रूथिंग करने के बाद गांव सभा का मीटिंग बुला करके वहां पे सबको बुला करके दिखाते हैं, और दिखा कर जब सब सर्टिफाइड हो गए तो उसके बाद उनके जो है इसके जो स्वामित्व के जो डॉक्यूमेंट है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में जब मैं मुख्य सचिव था इसको मैंने बहुत टॉप प्रायोरिटी में लिया। आज अगर देखें कि पूरे देश भर में लगभग 3 करोड़ के आसपास, 2.7 करोड़ के आसपास जो आज रिकॉर्ड लोगों को बढ़ चुके हैं, जिसमें से केवल उत्तर प्रदेश में ही केवल 1 करोड़ से ऊपर रिकॉर्ड बढ़ गए। उत्तर प्रदेश में ऑलमोस्ट मैं कह दूंगा 90% हमारे गांवों में इसका काम पूरा हो चुका है, इसके जो रिकॉर्ड लोगों को बढ़ गए हैं या बढ़ रहे हैं, तो इसका जो लाभ आने वाले समय में, क्योंकि हमारे गांव की व्यवस्था जो आपने कहा कि शहरों से लोग जाकर के गांव में रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छी जलवायु है, शुद्ध जल है, शुद्ध पानी है, शुद्ध वातावरण है, और वहां रह करके आप अपनी जिंदगी का एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। वहां पे भोजन के लिए भी आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक फूड आज आपको मिलेगा। आज जो गांव और शहर को जो जोड़ा जा रहा है, जो कि दो शहर हमारे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, शहरों की जरूरतें बहुत बढ़ रही हैं, तो वहां पे अब गांव में ऐसे प्रोडक्शन होने लगे जो कि शहरों की आवश्यकता है। अगर होटल में कोई या वहां पे रेस्टोरेंट में अगर कोई किसी प्रकार की सब्जी का एग्जॉटिक उसका यूज होता है, अब वो गांव में उसका प्रोड्यूस होने लगा। गांव में जो आबादी कम हुई उनको शहर में जाकर उनको नौकरी मिल गई, लेकिन वो गांव से गांव में प्रोडक्शन करते हैं उसको शहर में ले जाकर उसको बेच देते। तो ये इसमें जो स्वामित्व योजना जो है, जो घरौनी योजना, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे ग्रामीण भाई बहनों को मिला है,
1: और खास करके महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर।
2: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है या प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, उसमें पहला नाम मैंने मकान की मलकिन तो महिला ही है, उसके बाद पुरुष का नाम है, तो महिला का नाम सबसे पहले रहता है।
1: सिंह साहब, हम पीएम जनमन की बात अब आपसे करेंगे। दरअसल भारत के कुछ सबसे वंचित समुदायों तक बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाना अभी भी चुनौती रही है। पीएम जनमन ने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी पीवीटीजी के विकास के लिए किस तरीके से नीतियां बनाई, किस तरीके का अप्रोच किया?
0: प्रधानमंत्री ने देखा कि वो वंचित क्षेत्र, वो क्षेत्र जो दूर दराज में बसे हुए हैं, जिन दुर्गम क्षेत्रों में जिनका कोई माई बाप नहीं है, जिनका कोई ध्यान नहीं रखने वाला था, सरकार तो बहुत दूर की बात, सरकारी अफसर वहां जाने को राजी नहीं, कोई भी आदमी जाने को तैयार नहीं। अब ये दिल्ली के नजदीक आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मेवात का क्षेत्र है, हरियाणा में कोई वहां टीचर जाने को तैयार नहीं होता, कोई मतलब ऐसे क्षेत्रों में जिनका खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में, ऐसे जिलों को, ऐसे ब्लॉकों को, ऐसे गांवों को प्रधानमंत्री ने बाकायदा चिन्हित कराया। हर कलेक्टर से रिपोर्ट मांगा कि ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव और ऐसे ब्लॉक कहां कहां हैं जहां पे सुविधाओं का, खासतौर से बुनियादी सुविधाओं का जहां अभाव हो, ऐसी जगहों को चिन्हित करने के बाद वहां पर स्पेशल मुहिम के तौर पर स्पेशल अभियान चला के उन सुविधाओं को बहाल कराने का काम कराया है प्रधानमंत्री ने। जितनी योजनाओं की हम लोगों ने चर्चा की है, चाहे वो नल से जल हो, बिजली की सप्लाई हो, ये सारी चीजों की उपलब्धता कैसे वहां तक पहुंचाई जाए, ये सुविधा उनको विशेष अनुदान के तौर पर, किसी की कटौती नहीं की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल तौर पर दिया, और वहां पर ऐसे कलेक्टर्स और ऐसे अधिकारी लगाए गए जिनको बाकायदा दिया गया टारगेट की इन एरिया का हमको हर हाल में बेहतर स्थिति चाहिए, ये कम से कम देश के बाकी हिस्से के बराबर के लोगों तक पहुंचे, और इसका इतना बढ़िया रिजल्ट है कि इससे एजेंसी आएगी यहां पर, कभी रिसर्च होगा तो लोग सोचेंगे भला बताइए पहले सुदूर गांव तक ये सुविधा पहुंच गई, ये इस देश में भी संभव है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होगा नेता होगा वही पहुंचा सकता, उसकी सोच पहुंचा सकती है।
1: मिश्रा जी से मैं यही सवाल पूछता हूं कि आप अपनी जमीनी अनुभव को बताएं।
0: बिल्कुल,
1: पीवीटीजी के लिए
2: नहीं, पीवीटीजी देखिए इट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब अगर हम ट्राइबल्स की देखें तो हमारी अनुसूची जो है उसके मुताबिक 705 ट्राइबल ग्रुप्स है, इनमें से 75 ऐसे पीवीटीजी जो कि हमेशा हर चीज से वंचित रहे, चाहे उनकी शिक्षा हो, उनका स्वास्थ्य हो, किस्म की बीमारियों से जूझते रहे, स्वास्थ्य हो, उनके लिए आवास हो, उनका न्यूट्रिशन हो, उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हो। उत्तर प्रदेश में, मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत कम ट्राइबल्स है, ज्यादा ट्राइबल तो हमारे उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहां पे ज्यादा ट्राइबल्स, राजस्थान में ट्राइबल्स है, उत्तर प्रदेश जैसे जगह में भी ऐसे तमाम किस्म के जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, ये जो 75 ग्रुप सेलेक्ट किए गए इनके बारे में इनके एक फोकस अटेंशन सरकार का, ताकि इनको 100% सेचुरेट कर दे, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो पढ़ा लिखे ना हो, किसी को जो है स्कूल ले जाता, कोई ऐसा ना हो जिसको स्वास्थ्य की वजह से समस्या हो, उनकी जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो, तो हर चीज को पूरा तरह से एड्रेस किया गया। इनकी कनेक्टिविटी भी नहीं थी, मैंने एक तरफ पीएम का
4: अख्तर को फिल्म है रॉक ऑन, जावेद अख्तर के लिखे स्क्रिप्ट की धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और अदनान सामी के स्वर में लकी फिल्म का गीत। अदनान सामी के लिए संगीतबद्ध किए इस गीत को लिखा है समीर ने।

और अब सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम का अंतिम गीत जय वीरू फिल्म से। इसे गाया है मेका सिंह और राजा हसन ने, बोल सबीर के है संगीत बप्पी लहरी का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73,581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशि बिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत के निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर करके ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
2: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोग करता है। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
1: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
3: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक है उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
2: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए आईगोट प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
5: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
0: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
6: The character of war.
7: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
6: With the changing character of war.
0: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया।
8: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
9: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
8: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
10: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
8: आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
11: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
8: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
12: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
13: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
12: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्केट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
8: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में ऋषि बिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। बेस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हैं तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने हैं। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
14: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत के निर्माता भी हैं और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प या

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की भुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैं उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1939 में हुआ है, आज के शहर बेंगलुरु में। उनका परिवार अफगानिस्तान के गजनी शहर से आके हिंदुस्तान में बसा हुआ है। ये परिवार पठान वंश से ताल्लुक रखता है। उनकी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु में हुई और वो जब मुंबई घूमने आए तो यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री से काफी मुतासर हुए और उन्हें भाग्यवश फिल्म दीदी में सेकंड लीड रोल करने का मौका मिला। फिरोज खान ने शुरुआत में कई छोटी मोटी फिल्मों में किरदार किए। एक अंग्रेजी फिल्म टार्जन कम्स टू इंडिया, इसमें भी उन्होंने काम किया था, जिसमें उनकी नायिका थी सिमी ग्रेवाल। 1965 में उन्हें फणी मजूमदार साहब ने ऊंचे लोग इस फिल्म में हीरो का रोल दिया। इस फिल्म में दादा मुनि और जानी राजकुमार थे। इनके होते हुए भी फिरोज खान ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। ये फिल्म हिट हुई और इस फिल्म का चित्रगुप्त साहब का संगीत भी बड़ा ही सुमधुर बन पड़ा है। इसका जादू आज भी चाहने वालों के सर चढ़ के बोलता है।

दोस्तों इस फिल्म के हिट होने के बाद भी फिरोज खान ने छोटे बजट की फिल्मों में काम करना जारी रखा। सैमसन, चार दरवेश, एक सपेरा एक लुटेरा ऐसी ही कुछ फिल्में थी।

1965 में रामानंद सागर की सागर आर्ट के बैनर तले फिल्म आई आरजू। इसमें भी फिरोज खान ने सेकंड लीड रोल किया था और इस फिल्म ने भी सफलता के झंडे गाड़े और फिर एक बार फिरोज खान ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया था। 1969 में बीआर फिल्म्स का बड़ा शाहकार पर्दे पर आया आदमी और इंसान। सायरा बानो, धर्मेंद्र, मुमताज और फिरोज खान की इसमें मुख्य भूमिकाएं थी।

0: आदमी और इंसान फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए फिरोज खान को अपनी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल। फिरोज खान ने अपना फिल्मी करियर 1960 से शुरू किया फिल्म दीदी के साथ। 1975 तक कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, नाम किया। मैं शादी करने चला ये फिल्म आई थी 1962 में। इसी साल यानी 1962 में आई थी रिपोर्टर राजू।
1: रात झूमती, रात झूमती, दिल को झूमती, दिल को झूमती।

1966 में आई थी फिल्म मैं वही हूँ। इस फिल्म का जो रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना है जो फिरोज खान पर फिल्माया गया है बड़ा ही हसीन बन पड़ा है।

फिल्म सफर का निर्माण किया था मुशीर रियाज ने। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर इसमें मुख्य भूमिकाओं में थे। फिरोज खान ने भी इस फिल्म में शेखर का बड़ा ही अहम रोल किया था। उन पर फिल्माया गया ये गाना भी आज तक सुनने वालों की पसंद में शामिल है। उनके साथ पर्दे पर थी शर्मिला टैगोर। गीत इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का और आवाज मुकेश की।

सन 1971 में आई थी फिल्म उपासना। संजय खान अर्थात अब्बास अली खान जो कि उनके भाई हैं और मुमताज की इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थी। इस फिल्म का मुकेश का गाया उन्हीं पर फिल्माया गया ये गाना भी आज तक उतना ही पॉपुलर है। उनके साथ नजर आती हैं मुमताज।

0: सिंगा।
1: दोस्तों, फिल्मी दुनिया का एक अलिखित नियम है, जिस रोल में शुरुआती फिल्म में आप नजर आते हैं वैसे ही रोल आपको मिलते चले जाते हैं। फिरोज खान के साथ भी ऐसा ही हुआ, पर फिरोज खान ने अपने को लीड रोल में लाने के लिए कड़ी मशक्कत मेहनत की और एक दिन उनकी ये मेहनत रंग लाई। सफर, शंकर शंभू, प्यासी शाम, गीता मेरा नाम और खोटे सिक्के जैसी छोटी बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी के रंग भरे और अपनी किस्मत का सिक्का चमकाया। इस दौरान अपने छोटे भाई संजय खान के साथ भी उन्होंने तीन फिल्में की, उपासना, मेला और नागिन। 1972 में फिरोज खान ने अपना एक बैनर बनवाया, एफ के इंटरनेशनल। इसी के बैनर तले फिल्म बनाई अपराध। अपनी मन मर्जी से इस फिल्म की कहानी, लोकेशन का चुनाव उन्होंने किया और बड़ी ही उम्दा फिल्म बनाई जिसके गाने आज भी हिट।
2: हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने।

0: भी सयाने हैं हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने।
1: इस दौरान वो और बैनरों में भी नजर आए। रविकांत नगाइश द्वारा निर्देशित फिल्म काला सोना में भी उन्होंने बड़ा ही उम्दा रोल निभाया है। 1975 में फिरोज खान ने एक जबरदस्त शाहकार दिया धर्मात्मा। ये पहली ऐसी फिल्म है जो अफगानिस्तान में शूट हुई। इस शानदार फिल्म ने उन्हें बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अदाकार जबरदस्त सफलता दिलाई।

दोस्तों, फिरोज खान सही मायनों में एक अजीम फनकार थे। रोल चाहे कोई भी हो, उसमें वो जान फूंकते थे। वो एक स्टाइलिश अदाकार थे। काउबॉय वाले किरदार उन्होंने ही हिंदी सिनेमा को दिए हैं। कई फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया, जैसे कि धर्मात्मा, जांबाज, यलगार, कुर्बानी, दयावान जैसी फिल्में उन्होंने अपने प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाई। प्रेमगन, जानशीन ऐसी भी कुछ फिल्में उन्होंने बनाई हैं। वो एक उच्च कोटि के निर्माता निर्देशक साबित हुए हैं। लगभग 5 दशकों तक का उनका फिल्मी सफर रहा है।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने के स्टाइलिश अभिनेता फिरोज खान पर। आलेख और स्वर अशोक सुनावणे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब वक्त है फिल्मी नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आनंद उठाते हैं इस कार्यक्रम का।

देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ

2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: कभी तो हंसाए।
1: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
2: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े। सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
1: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। देश में सुगम आवागमन, बेहतर शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, बढ़ते रोजगार और व्यापक व्यापार को मजबूत बनाती है उचित परिवहन व्यवस्था, जिसे आसान बनाने का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। मध्य प्रदेश में गांव-गांव, पंचायत-पंचायत तक सार्वजनिक परिवहन को स्मार्ट, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मोहन यादव सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत अगले एक वर्ष तक 15,000 से अधिक बसों का संचालन करने के साथ लगभग 255 सिटी रूट, 3,000 इंटरसिटी रूट और 436 अंतरराज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे।
1: जनता के हितों का साथ सरकार भी खड़ी और समाज के साथ आपके अपने परिवहन ऑपरेटर भी खड़े, सबका मिला जुला मॉडल सुगम परिवहन सेवा निश्चित रूप से सबकी पूर्ति करेगी।
0: सभी वर्गों के कल्याण का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 सितंबर 2026 को 400 से ज्यादा बसों के साथ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। आइए लोक परिवहन की आवश्यकता की पूर्ति करते इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत के निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश के हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व तो किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल एमएस राजा सुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिनियम प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:55 पर अपने बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद।